मीडियम वेव 205.74 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संबत 1948 के आषाढ़ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 हो रहे हैं। आरंभ होती है आज की हमारी सभा।

0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 5:55 हो रहे हैं। खेत खलिहान कार्यक्रम में प्रस्तुत है वार्ता। विषय है धान के बीजों का चयन।
1: सभी जानते हैं कि धान हमारे देश की एवं हमारे राज्य की महत्वपूर्ण फसल है और इसकी महत्ता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने भी इसको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अनेक वर्षों में इसको अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया है। इसका उत्पादन देश के लगभग सभी राज्यों में किया जाता है और हमारा ये बिहार राज्य इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि धान हमारे भूमि में उपलब्ध आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी हेतु मिट्टी जांच बहुत जरूरी है। उसी के अनुसार हम अपना पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं। किस्म का चयन, किस प्रकार की हम किस्म इसमें प्रयोग करें, इस तकनीक में संकर धान का प्रदर्शन बेहतर पाया गया है, इसलिए इसकी सिफारिश की जाती है क्योंकि संकर धान में अधिक कल्ले निकलते हैं और अधिक उत्पादन देने की क्षमता होती है और प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग वो कर सकते हैं। साधारणतया विभिन्न क्षेत्रों में उगने वाले अधिक पैदावार देने वाली किस्मों को SRI द्वारा उगा सकते हैं। अच्छी फसल के लिए स्थानीय एवं लोकप्रिय किस्म को भी उगाना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलते हों। बीज दर का अगर हम बीज की बात करते हैं तो 1 एकड़ धान के क्षेत्रफल के लिए 2 किलो बीज अच्छा स्वस्थ बीज का उपयोग करना है। निम्नलिखित पद्धतियां अपनाकर स्वस्थ एवं समुचित बीजों का चयन करें। फर्स्ट जो प्रथम करते हैं, बीज को पानी में डुबो करके डुबोने के लिए लगभग 1.65 किलो नमक को 10 लीटर पानी में मिलाकर नमक का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। ताजे अंडों को नमक के मिश्रण में डालने से अगर अंडा तैर रहा हो तो नमक के मिश्रण की सांद्रता बीज डुबाने के लिए ठीक है। यदि अंडा नीचे रह गया तो नमक डालकर मिश्रण की सांद्रता नमक डालकर बढ़ा सकते हैं जिससे कि हमारा अंडा तैरता रहे। पौधशाला के लिए चयन किए गए बीजों को नमक के मिश्रण में डालना चाहिए। बीजों को घोल में अच्छी तरह मिलाएं और ऊपर तैरने वाले बीजों को अलग निकाल कर रख देना चाहिए क्योंकि इन बीजों की क्षमता, अंकुरण क्षमता और जीव जो वाइबिलिटी है वो कम होती है, इसलिए इनको ऊपर से उतार कर अलग रख देते हैं। नीचे बचे हुए बीजों का चयन करना चाहिए और उन्हें अच्छी प्रकार साफ पानी में 2-3 बार धो लेना चाहिए ताकि नमक का हिस्सा उस बीज में न रहे। अब बीज भिगोना, कैसे हम बीज को भिगोएं? अच्छे साफ सुथरे बीजों को 12 घंटे तक पानी में भिगोने के बाद पानी से निकालकर भीगी हुई बोरी में डालकर 24 घंटे तक किसी छायादार स्थान में अंकुरण के लिए रख देना चाहिए। अंकुरित बीजों का छिड़काव, पौधशाला की जो क्यारियाँ हमको बनानी हैं उस क्यारी में 2 किलोग्राम अंकुरित बीज के छिड़काव करने से पहले 4 भागों में बाँट लें और 1 भागों को छिड़काव करना चाहिए। बीज का छिड़काव शाम में करना चाहिए ताकि बीज सूख न जाए। बीज की बुआई पश्चात अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद की हल्की परत उसके ऊपर डाल देनी चाहिए। इसके ऊपर धान का पुआल क्यारी के ऊपरी पहली परत में बिछाएं ताकि बीजों को सीधी धूप और चिड़ियाओं से सुरक्षित रख सकें। प्रतिदिन सुबह शाम कैन की सहायता या छिड़काव जो स्प्रेयर होता है उसकी सहायता से पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। मुख्य खेत की तैयारी, जहाँ पर हमको पौध रोपना है उस खेत की तैयारी हम कैसे करें? इस पद्धति में परंपरागत पद्धति के समान ही मुख्य खेत की तैयारी की जाती है, लेकिन खेत को समतल रखना अति आवश्यक है। खेत तैयारी से पहले खेतों में लगभग 4 टन गोबर की सड़ी गली खाद या कंपोस्ट खाद 1 एकड़ में डालकर मिट्टी में मिला देना चाहिए। खेत की जुताई 2 बार करके उसमें पाटा चला दें ताकि खेत समतल हो जाएँ, खरपतवार मिट्टी में मिल जाएँ। खेत तैयार करते समय अच्छी जल प्रबंध के लिए सिंचाई एवं जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि अगर अधिक बारिश हो गई तो उस बारिश के पानी का जल निकास भी उचित प्रबंध होना चाहिए। मुख्य खेत में मार्किंग करते हैं। इस विधि में पौधों की दूरी एवं कतार से कतार की दूरी समान होती है और प्रति वर्ग मीटर 16 पौधे ही लगाए जाते हैं। मार्कर की सहायता से रोपाई के लिए हम 25x25 की दूरी पर निशान लगा दिया जाता है। प्रति पौधा प्रतिरोपण, पौध प्रतिरोपण के लिए खड़े पानी की आवश्यकता नहीं होती। खेत की तैयारी के 24 घंटों के भीतर रोपण करना चाहिए। इस पद्धति में 8 से 12 दिन का पौधा रोपा दिया जाता है। जब पौधों में 2 या 3 पत्ते निकल जाते हैं, 2 या 3 पत्ते, इस विधि में पौधों को बीज के साथ रोपण आवश्यक है। खेत में डाले गए निशान की प्रत्येक चौकड़ी पर 1 पौधे को कम गहराई पर रोपा जाता है। पौधों को पौधशाला

0: से निकालने के लिए आधे घंटे के भीतर रोपनी कर देनी चाहिए।
1: अभी आप खेत खलिहान कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे थे गुरु शरण पवार की पूर्व प्रसारित वार्ता। विषय था धान के बीजों का चयन। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने ही वाले हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार
2: का इंद्रप्रस्थ चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 6 बजने को है। अब समाचार होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्करे तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:05 हुए हैं। चिंतन मनन में आइए सुनते हैं चिंतन सच्चा अद्वैत पर। वाचन स्वर अमित कुमार का है।
4: वेदांत भारतीय दर्शन का सिरमौर है। इसकी मुख्यतः दो शिक्षा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्ममेव नापरः, अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव एवं ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। दूसरा, सर्व खलु इदम ब्रह्म, अर्थात सभी चराचर जगत में एक ही ब्रह्म का वास है। यह दर्शन अपने समय में एक सर्वोच्च सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित रहा था और इसके प्रतिपादक शंकर की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक बार की बात है, अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक आचार्य आदि शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ पूजा अर्चना हेतु काशी के पवित्र मणिकर्णिका घाट की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई सिंह अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने निकला हो। पूरे रास्ते लोग महागुरु और उनके शिष्यों की चरण वंदना कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। शंकर सबों को अद्वैत एवं एकत्व की शिक्षा दे रहे थे। इसी बीच सामने एक चांडाल आ गया और उसके साथ थे 4 काले काले कुत्ते। यह देख शंकर का हृदय वितृष्णा से भर गया। उन्हें डर लगा कि चांडाल और कुत्ते के स्पर्श से वे अपवित्र हो जाएंगे। वे अपना अद्वैत दर्शन भूल गए और जोर से बोल पड़े, अरे चांडाल, रास्ता छोड़, दूर हट। शंकर की बात सुनकर चांडाल की आंखों में चिंगारी कौंध गई। वह शंकर के ठीक सामने आकर दृढ़तापूर्वक खड़ा हो गया और बोला, हे सन्यासी, आप किसे दूर हटने कह रहे हैं? आप किसके स्पर्श से भय से कांप रहे हो? शंकर कुछ उत्तर देते उसके पहले पुनः चांडाल ने कहा, सुना कि आप अद्वैत के प्रतिपादक हैं, जिसके अनुसार संसार के कण कण में ब्रह्म का वास है, तो फिर कौन कहां से हटे? यदि जीव एवं ब्रह्म में भेद नहीं है तो चांडाल और सन्यासी में कैसा भेद, कुत्ते और मनुष्य में कैसा भेद? चांडाल की बातें शंकर के मन मस्तिष्क एवं हृदय में गहराई से उतर गई। उन्हें अपने अद्वैत दर्शन के सैद्धांतिक कथनों की व्यवहारिक व्याख्या मिल गई। वे तत्क्षण चांडाल के चरणों में गिर पड़े और उन्हें अपना गुरु मान लिया। सचमुच प्राय महान आदर्शवादी सिद्धांत भी महज वाकजाल या बौद्धिक व्यायाम भर बनकर रह जाते हैं, लेकिन कोरे सिद्धांत से अधिक व्यवहार का महत्व है, शुष्क ज्ञान से अधिक कर्म का महत्व है। यही कारण है कि बाद के दिनों में स्वामी विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत की व्यवहारिक व्याख्या की। उन्होंने जोर देकर कहा कि वेदांत महज एक कोरा आदर्शवादी

0: बौद्धिक सिद्धांत मात्र नहीं, वरन एक जीवंत व्यवहारवादी कर्म दर्शन है। विवेकानंद के शब्दों में वेदांत का ज्ञान दीर्घकाल से गुफाओं और वनों में कैद रहा है। अब यह भार मेरे ऊपर पड़ा है कि उसे निर्वासन से निकालूं और पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन में पहुंचाऊं। अद्वैत का ढोल हर स्थानों पर, बाजारों में, मैदानों में गूंजेगा।
1: अभी आप चिंतन मनन में सुन रहे थे चिंतन सच्चा अद्वैत पर, वाचन स्वर मनीष कुमार ठाकुर का था। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। निवेदित है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले देश वंदना।

अभी आपने वंदना कार्यक्रम के आरंभ में समूह स्वर में देश वंदना सुनी। अब आइए परम पुरुष परमात्मा के शरीर धारण कर मानव लीला के क्रम में उनकी बचपन की बाल लीलाओं का दर्शन करते हैं। उनके इन बाल लीलाओं का वर्णन प्रभु तुलसीदास ने अपनी लेखनी में किया है।

ठुमक चलत रामचंद्र, श्री भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन कौन कर सकता है। जब हम सामान्य बालकों की लीलाओं में खो जाते हैं, मन पता नहीं कहाँ किस आनंद में गोते लगाने लगता है, सब कुछ भूलकर बाल लीलाओं में आनंद लेने लगते हैं, तो परम पुरुष परमात्मा की लीला कैसी होगी, ये कल्पना से भी परे है। श्री भगवान का नाम ही तो है जो उनकी लीला, गुण और धाम सारे दर्शनों को उपलब्ध करा सकती है। हमारे अंदर प्रेम, करुणा, दया, सहयोग, सद्भाव की भावना प्रस्फुटित कर सकती है। आजकल संसार में ऐसी विधाएं हो गई हैं, इस तरह के विचार का अत्यधिक प्रभाव हो रहा है कि ईश्वर के नाम जपने से रूढ़िवादिता फैलती है, जबकि सत्य इससे बहुत अलग है। कभी जिन्होंने परमात्मा के गुण, लीला, धाम को सूक्ष्मता से देखने का प्रयास नहीं किया, जिन्होंने कभी प्रयास नहीं किया कि परमात्मा की इन गूढ़ लीलाओं और उनके दर्शनों में क्या विशेष है, उन्हें क्या पता पलेगा। अगर हम कभी किसी ऐसी जगह नहीं गए जहाँ विशेष सुंदरता है, और जो कहे उन्होंने इसका बखान किया, तो क्या हम उनको नाकार दें कि नहीं नहीं वहाँ कुछ नहीं है जिसे हमने कभी देखा ही नहीं। अगर हमें उसकी सूक्ष्मता का दर्शन ही नहीं हुआ, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये चीज़ें सर्वथा रूढ़िवादी हैं और गलत हैं। हाँ, अगर आपने उसमें उतरकर उसे जीने का प्रयास किया, उसके दर्शन को बहुत लालायित हुए, तो शायद आपको त्रुटियां मिलें तो आप उन्हें कह सकते हैं। लेकिन आपने जिनके बारे में कुछ जाना ही नहीं, जिसे आपने कभी देखा ही नहीं, जो आपके विषय की चीज ही नहीं, जिसमें आपकी रुचि ही नहीं, अगर आप उसके बारे में अपने कोई शब्द वक्तव्य व्यक्त करते हैं, तो ये आपकी मूर्खता और आपकी रूढ़िवादिता के अलावा और कुछ नहीं है। अगर परम पुरुष परमात्मा की किन्हीं लीलाओं का वर्णन कोई कहीं पर है, या कोई भक्त, कोई सदहृदय इसमें आनंदित है, तो आप उनको नाकार नहीं सकते हैं। जिस प्रकार आप अपनी जीवन शैली में आनंद में हैं, ऐसे ही परमात्मा के प्रेमी भक्त भी अपने आनंद में होते हैं, और उनका आनंद संसार में सबसे अद्वितीय और अनुपम होता है। वो सच्चा आनंद है, क्योंकि इस कलिकाल में परमात्मा के संग के, उनके नाम के सिवा और कोई दूसरा मार्ग नहीं जिससे शांति, आनंद और सद्भाव की प्राप्ति हो सके।

कली में भगवान का नाम ही कामतरु है, यानी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली लतिका है। उनके सिवा संसार में और कोई दूसरा ऐसा नहीं जो सभी कामनाओं की पूर्ति कर दे।

0: वंदना कार्यक्रम के आखिर में अपने शुभेंदर सिंह और साथियों से क्षमा करें बलवीर सिंह लखा और साथियों से ये शिव भजन सुना। इसके पहले आपने अनुराधा पोजपाल की आवाज़ों में कुछ भजन सुने थे। इसके साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:35 हुए हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज आइए सुनते हैं पार्किंसन रोग विषय पर डॉक्टर पंकज कुमार से कुसुमकर दुबई की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज कुमार, जाने माने न्यूरो सर्जन हैं और यहीं भागलपुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा कॉलेज हॉस्पिटल में पदस्थापित हैं।

0: पंकज जी से आज हम बात करेंगे पार्किंसंस रोग के विभिन्न पहलुओं पर। तो पहले आपका स्वागत है पंकज जी।
1: धन्यवाद।
0: और जैसा कि आप जान ही चुके हैं हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो जानना चाहेंगे ये रोग है क्या।
1: देखिए, पार्किंसंस एक न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी है। डिजेनरेटिव का मतलब है कि ब्रेन में कुछ कुछ सेल्स होते हैं जिनका डिजेनरेशन या जो कमजोर होते जाते हैं,
0: अच्छा,
1: तो काम करना बंद करते हैं, जिससे कि क्योंकि ब्रेन ही हमारा सारा शरीर को कंट्रोल करता है, अतः उसमें बदलाव आना है। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि बैठे हैं उनका हाथ कांप रहा है।
0: हाँ,
1: तो ये एक लक्षण है पार्किंसंस का। चाल चलन में थोड़ा वो धीरे हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, उनको लगेगा कि हम धीरे धीरे चले नहीं तो गिर जाएंगे। जनरली आदमी झुक जाता है, आगे की तरफ मुड़ जाता है, उसे बैलेंस नहीं मिलता है, छोटे छोटे कदमों से चलने लगता है। तो ये सब लक्षण जो है ये पार्किंसंस के लक्षण है।
0: तो ये किस उम्र में पाए जाते हैं
1: लक्षण? ये भी उम्र के साथ ही बढ़ता है, 40 साल के बाद ही शुरुआत होती है इसकी।
0: अच्छा।
1: और ये भी जेनेटिकली ससेप्टेबल लोगों में ज़्यादा होता है। एक डोपामिन ब्रेन में एक सब्सटेंस होता है, उसकी डिफिशियंसी या उसकी कमी से ये रोग शुरू होता है
0: जी। तो जब युवा अवस्था है तभी से कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता कि डोपामिन की कमी हो ही नहीं?
1: नहीं, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
0: अच्छा।
1: ये आपको अगर होना है तो ये होगा, ये ऐसा कुछ इसमें हम और आपके हाथ में ये नहीं है
0: जी। तो इसीलिए हम प्राय देखते हैं कि कई बुजुर्ग हैं जो 80 साल के हो गए, ज्यादा कांपते रहता
1: जी,
0: है
1: जी,
0: हाथ या पैर।
1: जी,
0: तो शुरुआती लक्षण जैसा आपने बताया कि आगे झुकना, छोटा छोटा डेग भरना,
1: जी, जी,
0: तो अगर इस तरह के लक्षण किसी व्यक्ति में देखे जाएं तो माना जा सकता है कि पार्किंसंस की शुरुआत हो रही है।
1: जी, ऐसा माना जा सकता है। हालांकि उसमें भी पार्किंसंस सिर्फ और भी कारणों से होता है।
0: हाँ।
1: जैसे अगर खान पान में कोई गड़बड़ है, या अगर वो शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, या लीवर की बीमारी हो सकती है, या जिनको हाइपोथायराइडिज्म भी होता है उसमें भी कभी कभी ये चीज़ होता है। तो ये सब बीमारियों को पहले आप दिखा के रूल आउट कर लें,
0: जी,
1: तभी आप डायग्नोसिस पहुंच सकते हैं कि आपको पार्किंसंस है कि नहीं।
0: हाँ। और यदि किसी को कम उम्र में, मान लीजिए 50 साल किसी की उम्र है,
1: जी,
0: और उस समय ऐसा लक्षण दिखता है और आप उसको डायग्नोज करते हैं और
1: जी,
0: पाते हैं कि इसको, ये तो पार्किंसन की शुरुआत है,
1: जी,
0: तो क्या सलाह देंगे ऐसे पेशेंट को?
1: पार्किंसंस वाले मरीजों को दवा बहुत जल्दी शुरू करनी चाहिए,
0: जी,
1: क्योंकि ये शुरुआती दौर में, अर्ली स्टेज में बहुत अच्छा रिस्पांस होता है दवाओं का इस पर।
0: अच्छा।
1: अगर ये लेट हो जाए तो दवाओं का रिस्पांस बहुत ही कम हो जाता है, लेकिन शुरुआती दौर में इसका बहुत अच्छा रिस्पांस होता है। और जब लेट स्टेज पार्किंसंस हो जाए तो फिर वो ध्यान से रहें, परहेज से रहें, और लोगों को रहना जो घर परिवार वाले हैं इनका साथ दें, इनको सभी चीज़ों में मदद की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनकी सहायता के लिए और लोग भी रहें, तो ये ज़रूरी है
0: जी। जिससे लिखावट तो बिल्कुल खराब हो जाएगी, हाथ चलेगा ही
1: जी, जी जी जी, लिखावट एकदम छोटी होती जाती है। शुरू करते हैं तब ठीक रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे धीरे एकदम छोटी होती जाएगी।
0: अच्छा। वो
1: जी,
0: ये डिजीज के कारण,
1: ये डिजीज के कारण।
0: तो वैसे स्थिति में भी जहाँ की खास करके बैंकों से लेन देन या और
1: जी,
0: उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है।
1: बुरा प्रभाव पड़ता है, सिग्नेचर आपका नहीं मिलेगा, फिर बैंक वाले आपको बार बार परेशान करेंगे।
0: जी जी। तो ऐसी स्थिति में अंगूठा के निशान को ही,
1: जी, अंगूठा के निशान, और एक डॉक्टर से सर्टिफाइड रहे कि हाँ इनको पार्किंसन से, इनको लिखने में दिक्कत हो रही
0: जी,
1: है।
0: जी, ये आपने तो बहुत अच्छी बात बताई।
1: तो वो आप अपना,
0: ऐसे जो बुजुर्ग हैं उनके घर वाले लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, जिनको पार्किंसन हो जाए
1: जी,
0: तो उनको भी खान पान में कुछ ध्यान रखना चाहिए?
1: जी, खान पान तो जैसा मैंने पहले बताया, कोई भी अच्छे फल, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब लेने से इन सब बीमारियों में सहायता जरूर होती है।
0: अच्छा।
1: इसलिए वो खान पान का ध्यान तो हर बीमारी में रखना चाहिए।
0: जी। और इसमें फिजियोथेरेपी से भी कुछ मदद मिलती है
1: जी?
0: क्या?
1: इसमें फिजियोथेरेपी से काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि ये स्टिफ हो जाता है, हमारे हाथ पैर काफ़ी स्टिफ हो जाते हैं, कोई काम करने में नहीं बनता, तो फिजियोथेरेपी से कम मांसपेशियों में जो खिंचाव आ जाता है वो कम होगा, तो वो बीमारी में काफ़ी मदद होती है।
0: जी। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे, जैसा कि आपने समझ लिया लक्षण से और बीमारी को भी, पूरा ख्याल रखें अपने बुजुर्गों का जिनको पार्किंसन हो चुका है, और उनके साथ पूरा सहयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
1: जी, धन्यवाद।
2: अभी आप स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम करें, क्षमा करें, अभी आप स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुन रहे थे भेंट वार्ता, विषय था पार्किंसंस रोग।

0: वेट करता थे। कुसुमाकर दुबे और भेंट वार्ताकार डॉक्टर पंकज कुमार, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र रहे। 6:40 हुए हैं। निवेदित है श्री रामचरितमानस गान। मुख्य गायन स्वर ए हरिहरन और श्रीकांत पारगांवकर का है। संगीत सतीश भाटिया का।
1: एपिसोड नंबर 269 269।

बाली सुग्रीव युद्ध हुआ। बलशाली बाली के सामने सुग्रीव टिक नहीं सका। वो भागकर श्रीराम की शरण जाता है। उन्होंने उसको उत्साहित कर दूसरी बार फूलों की माला पहनाकर भेजा ताकि समान दिखने वाले दोनों भाइयों में उसे पहचाना जा सके। दूर पेड़ की आड़ से श्रीराम बाली की छाती में वाण मारकर उसका वध कर देते हैं। अपने अंतिम क्षणों में श्री राम को समीप पाकर वो प्रश्न करता है, हे प्रभु, आप तो समदर्शी हैं, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, फिर मैं वैरी और सुग्रीव आपका प्यारा क्यों कर हो गया? श्री राम का उत्तर है, हे मूर्ख, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र वधु और कन्या, ये चारों एक समान होती हैं। इन पर बुरी दृष्टि डालने वाले को मारने से कोई पाप नहीं होता।

अभी आप श्रवण कर रहे थे श्री रामचरितमानस गान। कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर और ए हरिहरन। संगीत सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 6:50 हो चुके हैं। कार्यक्रम विवरण, इसके अंतर्गत आइए जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा और उसके प्रसारण समय के बारे में।

0: अब से कुछ देर बाद यानी प्रातः 7 बजे आप सुनेंगे अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसके अंतर्गत आज आप प्लास्टिक मुक्ति दिवस पर हमारी बातचीत सुनेंगे। इसके अलावा रेल आवागमन संबंधित सूचनाएं, मौसम सूचनाएं, अखबारों की सुर्खियां और आज का इतिहास होगा। विशेषकर सुगम संगीत के सेगमेंट रसरंग में आज आप सुनेंगे गोपाल कृष्ण मिश्र को। और 7:20 पर गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम के अंतर्गत ही गांधी कथा में गांधी और ग्राम पंचायत विषय पर डॉक्टर विजय कुमार की वार्ता सुनेंगे। गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम का समय होगा प्रातः 7:00 से 7:55 के बीच। 9:06 पर आप सुनते हैं नगमे नए पुराने कार्यक्रम। 9:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में आज कलाकार हैं विजय कुमार दास। दिन के 10 बजे पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम होगा। 10:30 पर लोकगीत कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे वासुकी प्रसाद यादव। दिन के 11 बजे नई फिल्मों से कार्यक्रमों के तहत आप सुनेंगे फिल्मी नगमे। 11:30 पर फिल्मी नगमों का एक और कार्यक्रम होगा, नाम है गुलदस्ता। दोपहर 12 बजे हमारे शहरी महिला श्रोता बहनों को संबोधित कार्यक्रम आप सुनते हैं नारी लोक। 12:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम प्रस्तुत होता है उमंग। दोपहर 1 बजे लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग में आज आप पवन कुमार को सुनेंगे। 1:30 पर हमारी ग्रामीण श्रोता बहनों को संबोधित कार्यक्रम प्रसारित होगा घर आंगन। 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों का कार्यक्रम चित्रपट से। हमारी ये सभा दोपहर बाद 3 बजे संपन्न हो जाएगी। हमारी सांध्यकालीन सभा पुनः 5 बजे आरंभ होगी कार्यक्रम ईशो भवानी के साथ। संध्या 5:30 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम होगा। संध्या 6 बजे आप सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। 7:10 पर हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता। विषय होगा आंत के विभिन्न रोग कारण एवं निदान। भेंट वार्ता कर होंगे डॉक्टर रत्नेश कुमार, भेंट करता होंगे सचिन कुमार। 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में आज कलाकार होंगे सुरेंद्र कुमार राय। रात्रि 8 बजे फिल्मी नगमों का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रजनीगंधा। रात्रि 8:45 पर हिंदी में, रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में और 9:15 में उर्दू समाचार हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 9:30 पर आज आप सुनेंगे रेडियो साहित्यिक पत्रिका शतदल, प्रस्तुत करता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। रात्रि 10 बजे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज आप श्री केदारनाथ मिश्र का ख्याल गायन सुनेंगे रागपुरिया में। और 10:30 पर आप श्रोता मित्रों के ईमेल्स और पत्रों पर आधारित फिल्मी नगमों का कार्यक्रम होगा पसंद आपकी। अभी आप कार्यक्रम विवरण में हमारे केंद्र से आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा और उसके प्रसारण समयों की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होने ही वाले हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया सानेताकाइची इत्येषा पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादी

0: पादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य द्वाविंशति दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वालोचितवन्तौ। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशांत क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधार स्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढ़ीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां संबद्ध हितानां च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः सुरक्षा आर्थिक भविष्यञ्च सुदृढतया परस्परं सम्बद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इंडो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुम् आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था, वित्तीय निरीक्षणं, संसदीय विशेषाधिकाराः, विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविध पक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते। पंचायती राज मंत्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मंत्रिणां एकां राष्ट्रिय कार्यशालाम् आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंहः, केन्द्रीय राज्य मंत्रिणः प्रोफेसर एसपी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मंत्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेषु केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। सप्तपञ्चाशत् दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्रयात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः 88.3 मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं 40 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में प्रातः के 7 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।

0: नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, और इस कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से आज मैं आपका दोस्त रविंद्र। श्रोता मित्रों, समय हुआ है 7:01 और 20 सेकेंड। आज तिथि है 3 जुलाई। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या क्या। सुगम संगीत के सेगमेंट रसरंग में आप सुनेंगे सीमा बनर्जी को। इसके अलावा आप 7:20 पर गांधी कथा में सुनेंगे वार्ता गांधी और उनका ग्राम स्वराज्य। इसके अलावा फिल्मी नगमों की सौगातें भी होंगी। और आज की तिथि यानी 3 जुलाई के बारे में इतिहास में क्या दर्ज है, इस पर भी हमारी नज़र होगी। और समाचार पत्रों की सुर्खियां भी हम आपसे साझा करेंगे। विभिन्न समाचार पत्रों ने किस किस सुर्खी को अपने प्रथम पृष्ठ पर छापा है, और जो विशेष खबरें हैं उसे भी हम शामिल करेंगे, और हमारी बातचीत भी होगी। और बातचीत की शुरुआत करते हैं आज एक ऐसे विषय से जो बहुत महत्वपूर्ण है, और न सिर्फ हमारे जीवन के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए, पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न है जो हमारा योगदान इसमें बहुत अधिक है। हम रोज़ किसी न किसी प्रकार से इसका उपयोग करते हैं, और इसका नाम है प्लास्टिक। प्लास्टिक जो अनेक प्रकार से हमारे लिए ख़तरा है, हमारे लिए अर्थात हम मानव जाति के लिए, या यूं कहें पूरे जीव जगत के लिए और इस पृथ्वी के लिए, क्योंकि प्लास्टिक पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए एक गंभीर ख़तरा है। इसे नष्ट होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, यानी सैकड़ों वर्ष तक ये ख़त्म नहीं होते हैं, सड़ते नहीं। और इसके कचड़े से मिट्टी की उर्वरता घट जाती है, मिट्टी विषैला हो जाता है, और पानी दूषित होता है। प्लास्टिक में मौजूद जो जहरीले रसायन जैसे कि BPA वगैरह होते हैं, वो कैंसर और हार्मोनल इम्बैलेंस यानी हार्मोन के असंतुलन और अन्य गंभीर बीमारियों के कारण बनते हैं। तो प्लास्टिक काफ़ी नुकसानदायक है, और पर्यावरण प्रदूषण और विनाश का इसे हम नींव भी कह सकते हैं। कचरे का ढेर हम देखते हैं कहीं, और वहाँ पर प्लास्टिकों की बहुत बड़ी संख्या होती है। प्लास्टिक का अपघटन नहीं होता, इसलिए ये ऐसा पदार्थ है जो यूँ सालों साल पड़ा रहता है, सड़ता रहता है और दुर्गंध फैलाता है। इसलिए सदियों तक कचरे के रूप में ज़मीन पर पड़ा रहता है, क्योंकि ये अपघटित नहीं होता, और इसके ज़मीन में दबे रहने से मिट्टी में पानी और हवा का संचार रुक जाता है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी प्रभावित हो जाती है। और पॉलीथन और प्लास्टिक के टुकड़े नालियों और सीवरेज सिस्टम को जाम कर देते हैं, जिससे शहरों में पानी भरने की समस्या होती है, और जहरीले और प्रदूषणकारक चीज़ों का बहुत बड़ा फैलाव हो जाता है। अनेक प्रकार से प्लास्टिक हानिकारक है। विषाक्त रसायन जिसे टॉक्सिक केमिकल्स कहते हैं, प्लास्टिक के निर्माण में उपयोग होने वाले जो रसायन होते हैं जैसे बिस्फेनॉल ए, BPA जिसे कहते हैं हम, गर्म होने पर खाद्य पदार्थ या पानी में मिल जाते हैं। इससे थायराइड, बांझपन, कैंसर और मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। और माइक्रोप्लास्टिक की अगर हम बात करें तो इसके जब सूक्ष्म कण होते हैं जो अधिक देर तक गर्म होने पर, सूर्य की रोशनी में रहने पर, या फिर इसके बहुत अधिक सड़ने पर, पुराने होने पर, जब इसके छोटे छोटे कण टुकड़ों में, कणों कणों में विभक्त होकर ये माइक्रोप्लास्टिक इसे कहते हैं, टूट जाता है, तो ये हमारे सांसों के माध्यम से और हमारे खाने पीने के पदार्थों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और फिर हमारे सेल को डैमेज करने लगते हैं, जिससे अंगों का नुकसान होने लगता है। ये बहुत बुरी चीज़ है। हर साल लाखों समुद्री जीव जैसे मछलियाँ, कछुए और पक्षी प्लास्टिक के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। प्लास्टिक से जहरीली हुई जलों में रहने वाले जलीय जीव भी नष्ट हो रहे हैं, और प्लास्टिक के कारण जो पृथ्वी पर मृदा प्रदूषण होता है, इससे भी उस जगह के जीवों का नुकसान होता है। और प्लास्टिक जलने पर जो प्रदूषण फैलता है, हवाएं विषाक्त होती हैं, इससे पक्षियों का नुकसान होता है। प्लास्टिक को भोजन समझकर खा लेने वाले जीव क्या दम घटने से मौत हो जाती है, उनकी पेट में प्लास्टिक भरने से उनकी मौत हो जाती है। और समुद्रों में जो जमा हो रहा है प्लास्टिक, वो जलीय पारिस्थितिक तंत्र जिसे इकोसिस्टम कहते हैं, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और प्लास्टिक को जलाने से डाइऑक्सिन नाम का अत्यधिक जहरीला गैस जो वायु प्रदूषण का कारण बनती है और सांस संबंधी बीमारियां पैदा करती हैं फैलती हैं। तो प्लास्टिक अनेक प्रकार से नुकसानदायक है संपूर्ण सृष्टि के लिए। प्लास्टिक के इस बढ़ते खतरे से बचने की अगर हम बात करें तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक भी आ रहा है जिसका इस्तेमाल बहुत ख़तरनाक है, इससे बचना चाहिए। और रीयूजेबल प्लास्टिक, बार बार उसी प्लास्टिक को अनेक तरह से रिसाइकल करके फिर बनाया जाता है, ये चीज़ें थोड़ी कारगर हैं। इसके विकल्प के रूप में हम अगर कपड़े या जूट के थैले या कागज़ों के जो थैले होते हैं इसको अपने विकल्प के रूप में अपनाएं तो बहुत अधिक सुरक्षा हो सकती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम कहीं पर कोई सामान लेने जाते हैं तो हमारी आदत ये है कि हम पहले से ही इस दिमाग को, इस बात को अपने दिमाग में बैठा कर चलते हैं कि दुकानदार ही कोई प्लास्टिक के बैग में भरकर हमें ये सामान दे देगा, क्योंकि हम अपने घर से कोई थैले या बैग लेकर नहीं जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हमें प्लास्टिक के बैग या थैले में सामान मिलता है और फिर वो घर लाकर फेंक सामान यूज़ करने के बाद वो प्लास्टिक और जो पैकेट होता है उसको हम फेंक देते हैं। तो कल्पना करिए कि दुनिया में कितने घर हैं, कितने लोग हैं और उन सभी की मानसिकता किस तरह से है कि चाहते हैं हम और दुकानों से सामान लेकर आते हैं, दुकानदार ही प्लास्टिक में भरकर हमें दे देगा, हमें अपने घर से कुछ भी नहीं ले जाना है, वहीं उसी बैग प्लास्टिक के बैग में भरकर हम सामान ले आते हैं। पूरी दुनिया के घरों में इस तरह से प्लास्टिक बैग में सामान आ रहे हैं और वो फिर एक बार प्लास्टिक बैग को सामान भर कर लाने के बाद हम फिर उसका कोई उपयोग नहीं समझते और उसे फेंक देते हैं और ये नित्य का कार्यक्रम है और एक दिन में कई बार ऐसा होता है। तो कितनी बड़ी संख्या में प्लास्टिक बैग्स संसार में हमारे लिए ख़तरा पैदा कर सकता है ये सोचा जा सकता है। तो ये छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कोई भी सामान लेने जाएँ तो हमें उन प्लास्टिक के बैग से बचने के लिए अपने घर से कोई झोला या फिर कुछ भी लेकर जाया जा सकता है जिसमें भरकर सामान लाया जा सकता है। और एक एक करके अगर हमारे अंदर ये सोच जागृत हुई तो वो समय दूर नहीं जब प्लास्टिक का उपयोग, प्लास्टिक का चयन बहुत हद तक इसका चलन कम हो जाएगा। आज 3 जुलाई को पूरे दुनिया में मनाया जाता है प्लास्टिक मुक्ति दिवस, प्लास्टिक बैग फ्री दिवस इसे कहते हैं, प्लास्टिक इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे। और इसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाने, लोगों में प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस प्रत्येक वर्ष 3 जुलाई को मनाया जाता है। आज 3 जुलाई है, आज हमने प्लास्टिक मुक्ति पर बात की। कार्यक्रम में आगे है रसरंग और रेल आवागमन संबंधी सूचनाएं, मौसम सूचनाएं। तो चलिए सबसे पहले रेल आवागमन संबंधी सूचनाओं पर ही नज़र डालते हैं। ये सूचनाएं हमें भागलपुर रेलवे स्टेशन के पूछताछ कक्ष से प्राप्त हुई हैं। इसके अनुसार कुछ महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों के समय सारणी के बारे में हमें सूचित किया गया है। गाड़ी संख्या 15553 भागलपुर से जलकर जयनगर जाती है। भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस 7:50 पर प्रातः वेला में अपने नियत समय से भागलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। गाड़ी संख्या 13016 हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस 7:45 पर भागलपुर रेलवे स्टेशन से हावड़ा के लिए रवाना होगी। गाड़ी संख्या 12368 आनंद विहार से भागलपुर आती है। विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने नियत समय से आज 8:15 पर भागलपुर आएगी। ब्रह्मपुत्र मेल भी आज अपने नियत समय से ही भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुँचने की सूचना है। गाड़ी संख्या है 15654 ब्रह्मपुत्र मेल और इसका सही समय है 8:05 और ये 8:05 के आसपास ही भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 15314 जमालपुर से चलकर साहिबगंज जाती है पैसेंजर। 8:37 पर भागलपुर रेलवे स्टेशन से साहिबगंज के लिए रवाना होगी। गाड़ी संख्या है 12335 ये सप्ताह में 2 दिन चलती है रेलगाड़ी। इस रेलगाड़ी का नाम है भागलपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस, भागलपुर से मुंबई जाती है। 8:55 पर भागलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। गाड़ी संख्या 134 03 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस प्रातः 9 बजे भागलपुर पहुंचने की सूचना है इसकी। गाड़ी संख्या 6343-1 साहिबगंज जमालपुर MEMU 9:35 पर, क्षमा करें 9:15 पर भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 13409 मालदा क्यूल इंटरसिटी 9:35 पर भागलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। और गाड़ी संख्या 12367 भागलपुर से चलकर आनंद विहार जाती है विक्रमशिला एक्सप्रेस 11:55 पर भागलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। अभी आप रेल आवागमन संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर रहे थे, ये सूचना हमें भागलपुर रेलवे स्टेशन से प्राप्त हुई थी। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, वक्त है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के उस पार रसरंग में हम सुनेंगे सीमा बनर्जी को।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: हवाई रसरंग में सुनते हैं सीमा बनर्जी को, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला के अंतर्गत। ये रचना जो अभी सुनने जा रहे हैं इसमें आवाज़ सीमा बनर्जी की है और रचना है रामदास मिश्र की।

0: अभी आप रसरंग में सीमा बनर्जी को सुन रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मौसम सूचनाओं से रूबरू हो लेते हैं। ये मौसम सूचना हमें ग्रामीण कृषि मौसम सेवा विभाग सबौर से प्राप्त हुई। इसके अनुसार अगले 5 दिनों के अंदर जिला भागलपुर जिला और इसके आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। हवाओं की रफ्तार 10 से 15 किलोमीटर रहने की संभावना व्यक्त की गई है। तापमान 32 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना व्यक्त की गई है। सापेक्षिक आर्द्रता प्रातः वेला में 80 से 90% तक और संध्या वेला में 25 से 30% तक रहने की संभावना है। गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान और वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की गई है। ऐसे में सावधानीपूर्वक हम अपना कार्य करें और मौसम का ख्याल रखकर ही किसी भी चीज़ के प्रति कहीं अगर जाना हो या फिर कोई काम करना हो तो हम कदम उठाएं तो बेहतर। तो अभी हम मौसम सूचनाओं से रूबरू हो रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में। अब आइए सुनते हैं सीमा बनर्जी से साजू भाई की भक्ति रचना।
1: सत

अभी आपने रसरंग में सीमा बनर्जी को सुना। कार्यक्रम में गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। अब वक्त है गांधी कथा की। गांधी कथा में आ जाइए, सुनते हैं वार्ता गांधी और ग्राम पंचायत विषय पर। डॉक्टर विजय कुमार की ये वार्ता है।

0: श्रोताओं नमस्कार। गांधी कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मानव सभ्यता ने अपने विकास क्रम में कई प्रशासनिक इकाइयों का निर्माण किया। ग्राम इनमें सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। महात्मा गांधी ने इसी ग्राम को भारत के संदर्भ में विकास की मुख्य धुरी माना था। आज हमारी गांधी कथा में इसी से संबंधित वार्ता है, गांधी और ग्राम पंचायत। और इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विजय कुमार।
1: गौरवशाली वैशाली के ऐतिहासिक गणतंत्र ने दुनिया को लोकतंत्र की पहली रोशनी दी थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी ने गांव गणराज्य की इस ताकत को पहचान लिया था। इसी आधार पर उन्होंने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी। ग्राम स्वराज की कल्पना को साकार करने के लिए उन्होंने 1948 में पंचायती राज कानून बनवाए, जबकि 1950 में हमारा संविधान बना, परंतु पंचायती राज संविधान का अंग नहीं बन पाया, वह मात्र नीति निर्देशक तत्व में रह गया। हमारे पुरखों ने ग्राम सभा की कल्पना में गांव को समग्र और सामुदायिक इकाई मानकर किया था। आधुनिक दौर में गांधी के ग्राम स्वराज्य, विनोबा के ग्रामदान, जयप्रकाश के सामुदायिक समाज रचना, डॉक्टर लोहिया के चौखंभा राज, एम एन राय एवं दीनदयाल उपाध्याय के विकेंद्रीकरण, डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक लोकतंत्र तथा मार्क्स के कम्यून की कल्पना को इस कड़ी में हम चिंतन का हिस्सा बना सकते हैं। दरअसल गांधी के अपने विचार बहुत साफ और शुद्ध थे। स्वराज की उनकी अपनी विशिष्ट कल्पना थी। मात्र विदेशी शासन का अंत उनके लिए स्वराज नहीं था। 1909 में अपना बीज ग्रंथ हिंद स्वराज लिखने के पहले ही दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान उन्हें भरोसा हो गया था कि आधुनिक औद्योगिक सभ्यता और संसदीय तंत्र मानव जाति के लिए अनिवार्यतः विनाशकारी अभिशाप है। पंचायती राज और गांधी पर विचार करते समय हमें ग्राम स्वराज पर ही केंद्रित रहना चाहिए। हमें यह साफ हो जाना चाहिए कि गांधी का स्वराज चिंतन मूल रूप में वैकल्पिक सभ्यता की तलाश है। स्वदेशी, स्वावलंबन और विकेंद्रीकरण उसके मूल आधार हैं। ग्राम सभा उसकी प्राथमिक इकाई है, जो पुरातन और पराजय की बुराइयों को ढोने वाला अतीत का गौरवगान नहीं है। सच तो यह है कि स्वतंत्र भारत ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं, बैंकों, औद्योगिकरण, न्यायालयों, शिक्षण संस्थाओं, संसद सहित अनेकानेक संस्थानों को आगे बढ़ाते हुए स्पष्ट कर दिया था कि हम आधुनिक सभ्यता के रास्ते ही मंजिल तय करेंगे। अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि आजादी के पूर्व ही स्वतंत्रता और स्वराज के बीच का अंतर विरोध तीखा हो गया था। परिणाम है कि आजादी के बाद प्रेस, पार्लियामेंट और कचहरी ने कार्यपालिका के साथ अपना स्थान नियामक के रूप में स्थापित कर लिया। आजादी के बाद देश के लिए जो सुझाव तंत्र मंत्र और यंत्र के रूप में गांधी ने सही समझा था, वह पीछे छूट गया। 14-15 अगस्त 1947 की रात्रि में संविधान सभा हॉल में पंडित जवाहरलाल जी ने कहा कि भारत की सेवा का मतलब है उन करोड़ों लोगों की सेवा जो वंचित हैं। इसका मतलब है गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसरों की असमानता को खत्म करना। हमारे युग के महानतम व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हर आंख से आंसू पोंछने की है। यह हमारी क्षमता से बाहर हो सकता है, लेकिन जब तक आंसू और तकलीफें हैं हमारा काम खत्म नहीं होता। आजादी की कई दहाइयां बीतने के बाद भी हमारे देश में गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसरों की असमानता खत्म नहीं

हो पाई है। आजादी के बाद हुआ विकास जिन विचारों, तंत्रों और यंत्रों के आधार पर खड़ा हुआ वह जग जाहिर है, जो गांधी का रास्ता नहीं था। इसे पंडित जी ने भी 1964

0: वरक्षी निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए। गांधी शासन और शोषण विहीन अहिंसक समाज के पक्षधर थे, शायद वे यहाँ मार्क्स के साथ खड़े थे। मार्क्स भी वर्गविहीन राज्यविहीन अहिंसक समाज चाहते थे। राज्य वर्ग शासन शोषण के अंतर संबंधों को इस आलोक में देखा जाना चाहिए। गांधी के अनुसार आदर्श राज्य में राजनीतिक सत्ता नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि उसमें राज्य का ही अस्तित्व नहीं होता। लेकिन जीवन में आदर्श की पूरी तरह प्राप्ति कभी संभव नहीं होती, इसलिए थोरो का यह कथन ही सत्य है कि सबसे अच्छी सरकार वह है जो कम से कम शासन करे। गांधी ने यह भी कहा कि राज्य संगठित हिंसा है। दोनों कथन ही ग्राम स्वराज संबंधी विचार के प्रस्थान बिंदु हैं। वे सत्ता और संपत्ति को 7 लाख गाँव में बिखेर देना चाहते थे। वे भारत की आत्मा को चंद शहरों के बजाय 7 लाख गाँव में देखते थे। मुट्ठी भर लोगों के बजाय करोड़ों लोगों में सत्ता को बिखेरना चाहते थे। प्रस्थान बिंदु के रूप में ग्राम स्वराज को मानते हुए उन्होंने लिखा, ग्राम स्वराज की मेरी कल्पना यह है कि एक ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र होगा जो अपने अहम जरूरतों के लिए अपने पड़ोसी पर भी निर्भर नहीं करेगा, और फिर भी बहुतेरी जरूरतों के लिए जिनमें दूसरों का सहयोग अनिवार्य होगा वह परस्पर सहयोग से काम लेगा, अर्थात परस्पर अवलंबन के साथ स्वावलंबन की व्यवस्था।
1: वार्ता में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं गांधी का ये प्रिय भजन।

0: कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। गांधी अपने स्वराज्य चिंतन में साफ और शुद्ध थे। वे भारत को शहरों की बजाय गांवों में देखते थे। सत्ता का विकेंद्रीकरण वे करोड़ों लोगों में बिखेरना चाहते थे। आइए गांधी कथा में।
1: अभी आपने गांधी कथा में वार्ता सुनी, गांधी और ग्राम पंचायत। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। अब बारी है फिल्मी नगमों की। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं शिकारी फिल्म के इस नगमे के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने।

अभी आपने सुनाया लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज़ों में शिकारी फिल्म का नगमा। गीत लिखा था फारूक कैसर ने, संगीतबद्ध किया था जी एस कोहली ने। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। अब वक्त है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को टटोलने का। आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों में सबसे पहले दैनिक भास्कर की ये सुर्खी, APF में बेसिक का 12% देना अब जरूरी नहीं, बस 1800 रुपये दें। इसे विस्तार से लिखते हुए अखबार लिखता है, फायदे ये कि इन हैंड सैलरी बढ़ सकती है, पर नुकसान ये कि बचत घट जाएगी। अगर आप वेतनभोगी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए है। अभी तक EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करीब 8 करोड़ कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 12% अंशदान करना पड़ता था और कंपनी के लिए भी इतना ही योगदान करना अनिवार्य था, मगर केंद्र ने 29 जून को नई कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया। इससे पुरानी EPF योजना 1952 की जगह इसने ले ली है। इसके तहत अनिवार्य कर्मचारी योगदान को स्पष्ट रूप से 15,000 रुपये की वैधानिक वेतन सीमा से जोड़ दिया गया है, यानी कि अब कंपनियों के लिए सिर्फ 15,000 रुपये का 12% यानी 1800 रुपये ही EPF अंशदान लेना जरूरी होगा। 1800 रुपये से अधिक योगदान तभी जरूरी जारी रह सकता है जब कर्मचारी स्वेच्छा से ऐसा करना चाहे तो। इसके अलावा अखबार लिखता है, केंद्रीय टीम में फेरबदल की चर्चा, सरकार के मंत्रालय में हो सकती है फेरबदल, केंद्र सरकार से जुड़ी हुई खबर छपी है। इसके अलावा एक खबर छुपी है, शिक्षा विभाग के अवर सचिव 20,000 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार हो गया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने शिक्षा विभाग के वेतन सत्यापन कोषांग के अवर सचिव को 20,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ पकड़ लिया है। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा आज से शुरू होगी और यह सावन पूर्णिमा तक चलेगी। पहला जत्था रवाना। अखबार लिखता है, बारिश से बचने के लिए बालटाल से गुफा तक 12 वाटरप्रूफ डोम। अमरनाथ यात्रा आज से, हर 2 किलोमीटर पर ऑक्सीजन बूथ, दोनों रूटों पर 100-100 बेड के अस्पताल बनाए गए हैं और बालटाल में 30,000 लोग रुक सकेंगे इस सुविधा के लिए, अखबार लिखता है। इसके अलावा नौसेना की ताकत शीर्षक से अखबार लिखता है, प्रधानमंत्री जी 25 जुलाई को करेंगे उद्घाटन। आंध्र का भोगापुरम एयरपोर्ट 290 किलोमीटर प्रति घंटे के चक्रवात झेल सकता है, इस तरह का यह एयरपोर्ट बनाया गया है, इस तरह से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। करीब 2203 एकड़ में बन रहा है। पहले चरण में प्रतिवर्ष 60 लाख यात्री क्षमता होगी। इसके अलावा राज्य से जुड़ी हुई खबरों में, लोक भवन UGC के नए रेगुलेशन को सभी विश्वविद्यालय में लागू करना होगा। अब राज्य में कुलपति प्रोबीसी बनने के लिए अधिसूचना की तिथि से 10 साल प्रोबी प्रोफेसरशिप होना अनिवार्य नहीं, सब कुछ। बिहार के विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्रोबीसी बनने के लिए प्रोफेसर के 10 साल के अनुभव की गणना इसकी अधिसूचना जारी होने की तिथि से नहीं की जाएगी। लोक भवन राज्य के सभी विश्वविद्यालय में UGC के नए रेगुलेशन को लागू करेगा। इसके अलावा भागलपुर से जुड़ी हुई खबर छपी है, भागलपुर के 2 चौराहे के नाम जल्द बदले जाएंगे। गोरट्टा चौक अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक कहलाएगा, वहीं कोतवाली चौक के पूर्वी छोर का नाम परशुराम चौक होगा। इसके अलावा अगर हम देखें अखबारों में, पटना में मेट्रो मलाही पकड़ी तक दौड़ी, मुख्यमंत्री ने मेट्रो प्रीपेड स्मार्ट कार्ड की शुरुआत की, मेट्रो से जुड़ी हुई ये खबर छपी है। इसके अलावा अगर हम देखें, बिना वजह रेफर करने पर 15 अगस्त से रोक, अस्पतालों की रात में निगरानी, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के कई बड़े निर्देश, DM और कमिश्नर करेंगे रात्रि निरीक्षण, जिला अस्पतालों की जवाबदेही बढ़ेगी। ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई खबरों को अखबारों ने सुर्खी बनाई है। इसके अलावा भागलपुर स्टेशन से जुड़ी हुई खबर छपी है, शेड नहीं होने से धूप बारिश में इंतजार करते मजबूर यात्री, रेलवे से जुड़ी हुई ये खबर छपी है। इसके अलावा 100 घरों पर तैनात होंगे 2 सफाई कर्मी, रात्र में मशीन और दिन में झाड़ू से होगी सड़कें साफ,
नगर निगम का फुल प्रूफ सफाई फॉर्मूला हर गली का बनेगा। फिक्स रूट चार्ट पहली बार कड़े सर्विस लेवल एग्रीमेंट के तहत काम करेगी एजेंसी। और अगर हम खेल की खबरों की तरफ नज़र डालें तो खेलों के पन्नों पर क्या विशेष छपा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों से जुड़ी हुई खबरों में। हार्दिक के लिए 7 टीमें रेस में, आपसी चर्चा बाकी, मैनेजमेंट से हो चुकी है बात, सीजन रिव्यू के बाद आगे बढ़ेगी ट्रेड पर होगी बातचीत। हार्दिक पांड्या के आईपीएल टीम मुंबई को छोड़ने की खबर है और इसके लिए उन्हें दूसरी टीमें अपने में शामिल करने के लिए आगे आ रही हैं, इससे जुड़ी खबर अखबारों ने छापा है। इसके अलावा टेनिस से जुड़ी खबर छपी है, 7वीं सीड जोकोविच ने सीत सिपास को सिर्फ 98 मिनट में हराया। विंटेज जोकोविच विंबलडन में 104वीं जीत, लगातार 17वीं बार तीसरे राउंड में पहुंचे। और फुटबॉल से जुड़ी हुई खबर छपी है, 85 मिनट तक 2 गोल से पीछे रहने के बाद जीता बेल्जियम। बेल्जियम गोल्डन जनरेशन की कमबैक हो रही है वहाँ, इस तरह से अखबार लिखता है। 10वीं बार 2 गोल से पीछे रहने के बाद भी किसी टीम को जीत मिली है। सेनेगल की शानदार शुरुआत के बाद लुकाकू का 86वें मिनट में गोल। और फीफा वर्ल्ड कप के सिर चढ़कर बोलते हुए इस फुटबॉल वर्ल्ड कप की कहानी को अखबारों ने विशेष रूप से रंगीन खबरों के रंगीन चित्रों के साथ प्रकाशित किया है। तो ये आज के अखबारों की सुर्खियां थी। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का, अंतराल के उस पार कुछ और नगमे, कुछ और बातें।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अब आइए सुनते हैं ये नगमा।

अभी आपने सुना दिल है बेताब फिल्म का नगमा उदित नारायण की आवाज़ थी। गीत लिखा था रानी मलिक ने और संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। अब वक्त है आज के इतिहास को टटोलने का। आज 3 जुलाई है और आज की तिथि को क्या क्या विशेष हुआ है, इतिहास के पन्नों में क्या विशेष दर्ज है, इसे हम टटोलते हैं। तो हमें मिला कि आज की तिथि को यानी 3 जुलाई को ही भारत और पाकिस्तान के बीच शांति के लिए शिमला समझौता हुआ था। इस पर भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा 1928 में 3 जुलाई को ही रंगीन टीवी दुनिया के सामने आई थी। दुनिया में इससे पहले सादे टीवी का चलन था। लंदन में रंगीन टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया गया था 3 जुलाई 1928 को। इसके अलावा अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिकी क्रांतिकारी सेना के कमांडर का पद संभाला था 1775 में 23 जुलाई को। और फ्रांसीसी खोजकर्ता सैमुअल डी चैम्पलेन ने कनाडा के क्यूबेक शहर की नींव रखी थी 1608 में 3 जुलाई को। इसके अलावा आज अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है, जिस पर कार्यक्रम के आरंभ में हमने बातचीत की थी। इसके अलावा सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति आंद्रेई ग्रेमिको का निधन हो गया था 1989 में 3 जुलाई को। और 2017 में अचल कुमार ज्योति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए थे आज की तिथि को यानी 3 जुलाई को ही। और अगर हम 3 जुलाई को जिनका जन्मदिन है, जिनकी जयंती है, उनके बारे में बात करें तो प्रसिद्ध भारतीय महिला निशानेबाज आरती सिंह राव का जन्मदिन है 1979 में 3 जुलाई को उनका जन्म हुआ था। इसके अलावा प्रसिद्ध समाजसेवी स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद हंस मेहता का जन्म हुआ था 1897 में 3 जुलाई को। और दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग के अध्यक्ष श्री रामचंद्र दत्तात्रेय रानाडे, उनका जन्म हुआ था 1886 में 3 जुलाई को। देकेंद्र सिंह महावीर चक्र से सम्मानित वीर भारतीय सैनिक, उनका भी जन्म हुआ है 1969 में 3 जुलाई को ही। और निधन की अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध भारतीय कोरियोग्राफर थे सरोज खान, 2020 में 3 जुलाई को उनका निधन हो गया। इसके अलावा सुदर्शन अग्रवाल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल थे, उनका निधन हो गया 2019 में 3 जुलाई को। और भारतीय सेना के उच्च अधिकारी जो भारत और पाकिस्तान के प्रथम युद्ध 1947-48 में शहीद हुए थे, मोहम्मद उस्मान, उनका भी निधन हो गया था 3 जुलाई 1948 को। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री केदार पांडे का निधन हुआ था 3 जुलाई 1982 को। और प्रसिद्ध भारतीय हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का निधन हो गया था 1996 में 3 जुलाई को। और मनोज कुमार पांडे परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक, उनका करगिल युद्ध के दौरान उनकी शहादत हो गई थी 3 जुलाई 1999 को। अभी आप आज के इतिहास को हमारे साथ सुन रहे थे। आज 3 जुलाई के इतिहास के पन्नों में क्या क्या विशेष रूप से दर्ज है, कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। अब एक और बहुत ही प्यारा सा नगमा ये सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है सच्चा झूठा।

ये खनकता हुआ सा नगमा अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें थी। गीत लिखा था इंद्रवर ने, संगीत बद गया था कल्याण जी आनंद जी ने। सच में ऐसे नगमे ऐसे जिसके एक एक शब्द जैसे हमारी ही जुबान से बोली जा रही हो, ऐसे जैसे अपनी ही भाषा हो। क्या खूब कलाकारी कलम से इंद्रवर साहब की और संगीत रचना ऐसे ही उम्दा कल्याण जी आनंद जी का, और आवाज़ लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी का तो कहना ही क्या। इस खूबसूरत नगमे के साथ ही अब आज के विक्रमशिला कार्यक्रम का वक्त अब समापन तक आ पहुंचा। हमारे पास अब और अधिक वक्त नहीं कि हम आपसे और कोई बातचीत कर पाएँ, लेकिन इतनी बातचीत तो ज़रूर करते जाएं कि आज 3 जुलाई है और हमने कार्यक्रम के आरंभ में ही आपसे इस बारे में बातचीत किया था

प्लास्टिक का उपयोग हमारी तरफ से जितना कम हो पाए हमारे लिए और हमारे इस पृथ्वी के लिए इतना ही अच्छा, क्योंकि प्लास्टिक बहुत खतरनाक है हर तरह से पूरी पृथ्वी के लिए। पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं उनके लिए, प्रकृति के लिए, वायुमंडल के लिए, हर प्रकार से प्लास्टिक बहुत जहरीला है। और आज 3 जुलाई को पूरी दुनिया में प्लास्टिक मुक्ति दिवस मनाया जाता है, तो ऐसे में जागरूकता ज़रूरी है, इसके प्रति हमारा संज्ञान लेना ज़रूरी है, जिससे हमें प्लास्टिक से होने वाले नुकसान से राहत मिले। तो हमारे तरफ से प्रयास ज़रूर होना चाहिए, हम सोचें कौन कौन से ऐसे उपाय, कौन कौन से ऐसे तरीके जिससे हमें प्लास्टिक के उपयोग से निजात मिल सकती है, या कम से कम हम उपयोग करें। तो ये बहुत गूढ़ और बहुत उपयोगी चिंतन हम आपके साथ साझा किए हुए अब आपसे अनुमति लेने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन इससे पहले ही आपसे अपना पता साझा करते चलें, जिस पर आप हमें अपने सुझाव, शिकायत, प्रशंसा, कुछ भी जो कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में हो हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर। हमारा पिन कोड है 8120001। और अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं, हमारी मेल आईडी नोट करें, हमारी मेल आईडी है phair@gmail.com। अब आज के गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम को समेटने की अनुमति चाहता है रविंद्र इस वादे के साथ कि कल प्रातः 7 बजे फिर से हम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज के गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम को दीजिए विदा। नमस्कार।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रातः 11 बजने ही वाले हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के

0: पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
1: बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बाद मौसम की, उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,

0: हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास से रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान की प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi strongly condemn terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations. Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about parties' organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins from both Pehelgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei to skip father Ali Khamenei's funeral over security fears. Spain beat Austria 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup. And BCCI announces schedule for India's 2-match test series against Sri Lanka to be played from the 15th to the 27th of next month. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council Monitoring Team report of 29 July 2025 mentioning the resistance front. We have a report.
3: Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Sanae Takaichi also strongly condemned the terrorist attack in Delhi on November last year. The two leaders called for the perpetrators, organizers and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups and entities including Al-Qaeda, ISIS, Lashkar-e-Tayyaba, Jaish-e-Mohammed and their proxies. The two prime ministers stressed the need for resolute action to eliminate terrorist safe havens, dismantle terrorist financing networks and their nexus with transnational crime and halt the cross-border movement of terrorists. Towards the shared goal of a resilient and prosperous Indo-Pacific, the two prime ministers reiterated their commitment to advancing cooperation among like-minded countries. They welcomed the steady progress under the Quad framework and reaffirmed their commitment to enhancing practical cooperation. Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
2: India and Japan have reaffirmed the shared commitment to the salience of economic security as one of the foundational pillars of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. The India-Japan Joint Declaration on Economic Security Cooperation said the economic security partnership is underpinned by mutual trust, shared values and aligned interest, and is a recognition that the prosperity, security and economic futures of the two sides are deeply intertwined. It added that this declaration is a recognition that the synergy between the updated free and open Indo-Pacific and the mutual and holistic advancement for security and growth across regions, Mahasagar initiative, provides both sides with the required impetus to furthering economic security cooperation. Election Commission of India, ECI, has sought responses from rival factions of All India Trinamool Congress, AITC, regarding competing claims about the party's organizational elections and authorized signatories. We have a report.
4: The Election Commission said in a statement that it has written separate letters to Mamata Banerjee and party leader Ritobroto Banerjee regarding the claims and counterclaims by both factions with respect to organizational elections and authorized signatories of the AITC. The Commission said both sides have been directed to submit their responses by 5:30 p.m. on Monday. The development comes amid a dispute within the Trinamool Congress over the party's organizational structure and the authority to act on its behalf before the Election Commission. Such disputes are governed by the Election Symbols, Reservation and Allotment Order, under which the Commission examines rival claims, supporting documents and submissions from the contending factions before taking a decision where necessary. The ECI has not expressed any view on the merits of the rival claims and has sought written responses from both factions before proceeding further in the matter. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
2: Iran's Supreme Leader Mujtaba Khamenei will not attend the funeral of his father, former Supreme Leader Ali Khamenei, due to security concerns. According to the current leader's representative in India, Ayatollah Hakim Ilahi, threats and surveillance risks made it unsafe for the leader to appear in public. Early on Wednesday, Iran's Foreign Minister Sayyed Abbas Araghchi issued a sharp warning to the United States. In a social media post, Araghchi urged President Donald Trump to restrain its close ally Israel from threatening Iran after Israeli Defense Minister Israel Katz said that Iran's Supreme Leader Mujtaba Khamenei was marked for death. He said any threat against Iran's leadership would receive a strong response. Iran is scheduled to hold funeral ceremonies for former Supreme Leader Ali Khamenei from July 4th to July 9th in Iran and Iraq. Governor of Bihar, Lieutenant General retired Syed Atta Hasnain and Minister of State for External Affairs Pavitra Margarita will visit Iran today to attend the funeral ceremony of late Supreme Leader of Iran Grand Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Minister of External Affairs said the high-level representation in the ceremony underscores the importance of civilizational ties, including people-to-people connection between the two countries, providing a robust foundation to political and economic

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हमनसब सनाए तकाईची ने हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी इंतखाबात और दस्तखत करने के मजाज ओहदेदारों के बारे में पार्टी के हरीफ ग्रुपों के दावों के सिलसिले में दोनों ग्रुपों से जवाब तलब किए हैं। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हो गई है। ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपने वालिद आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम में शिरकत नहीं करेंगे। स्पेन ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है और बीसीसीआई ने अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हमनसब सनाए तकाईची ने पाकिस्तान से फैलाई जाने वाली सरहद पार की दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। 16वीं भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। दोनों लीडरों ने पिछले साल 29 जुलाई की अक्वामे मुत्तहिदा

0: सलामती कौंसिल की निगरानी टीम की रिपोर्ट का भी नोटिस लिया है, जिसमें रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के ग्रुप का तस्करा किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: दोनों वज़राए आज़म ने पिछले साल 10 नवंबर को दिल्ली में दहशतगर्दाना हमले की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि इस काबिले मजम्मत हरकत के लिए जिम्मेदार इसकी साजिश रचने वालों और सरमाया फराहम करने वालों को बिला ताखिर कानून की गिरफ्त में लिया जाए। उन्होंने अलकायदा, दाइश, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और उनकी ज़ेली तंजीमों समेत उन सभी दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया जो अक्वामे मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल हैं। दोनों वज़राए आज़म ने दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के खात्मे, दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने के नेटवर्क को ख़त्म करने और दीगर मुल्कों में जराइम के साथ उनकी साजबाज नीज सरहद पार से दहशतगर्दों की नकल व हरकत रोकने के लिए पुख्ता कार्रवाई की ज़रूरत पर भी जोर दिया। एक मजबूत और खुशहाल भारत बहरुल काहिल खित्ते के मुश्तरक मकसद के ताल्लुक से दोनों वज़राए आज़म ने हम ख्याल मुल्कों में इश्तराक को बढ़ाने के अपने अहद को दोहराया। उन्होंने क्वाड फ्रेमवर्क के तहत लगातार पेशरफ्त का खैर मकदम किया और अमली तआवुन बढ़ाने के अपने अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई इस्तेहकाम को मजबूत बनाने और अमन व खुशहाली को फ़रोग देने की खातिर आसियान के मेम्बर मुल्कों के साथ इश्तराक की अहमियत को भी उजागर किया। दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: भारत और जापान ने दोतरफा खुसूसी क्लीदी और आलमी साझेदारी के एक बुनियादी सतून के तौर पर इक्तसादी सिक्योरिटी की अहमियत के तई अपने मुश्तरका अहद का इआदा किया है। इक्तसादी सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक के बारे में भारत जापान मुश्तरका ऐलानिये में कहा गया है कि इक्तसादी सिक्योरिटी साझेदारी बाहमी एतमाद, मुश्तरका अकदार और मुतालिका मफादात पर मबनी है और इससे इस बात की अक्कासी होती है कि दोनों मुल्कों की खुशहाली, सलामती और इक्तसादी मुस्तकबिल मजबूती के साथ बाहम मुंसलिक हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि यह ऐलानिया इस बात का भी मजहर है कि जदीद तर्ज पर ढाले गए आजादाना और खुला भारत बहरुल काहिल नीज मुख्तलिफ खित्तों में सिक्योरिटी और तरक्की के लिए बाहमी और जामे इकदामात के दरमियान तालमेल से तरफेन को इक्तसादी सिक्योरिटी इश्तराक मजीद बढ़ाने के लिए मतलूबा जहत मिलती है। दोनों मुल्क 5 अहम शोबों में दोतरफा इश्तराक को मुस्तहकम करेंगे, जिनमें सेमीकंडक्टर, अहम मादनियात, इंफॉर्मेशन और मवासलाती टेक्नोलॉजी, माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और दवासाजी के शोबे शामिल हैं। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी इंतखाबात और दस्तखत करने के मजाज ओहदेदारों के बारे में पार्टी के हरीफ ग्रुपों के दावों के सिलसिले में दोनों ग्रुपों से जवाब तलब किए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: इंतखाबी कमीशन ने एक बयान में कहा है कि उसने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी चुनाव और दस्तखत करने के मजाज पार्टी के अहलकारों के बारे में दोनों हरीफ ग्रुपों के दावों और उनके जवाबी दावों के ताल्लुक से ममता बनर्जी और पार्टी की एक और लीडर रीता ब्रता बनर्जी को अलग अलग मुरासले भेजे हैं। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि दोनों फरीकों के हिदायत दी गई है कि वो पीर को शाम 5:30 बजे तक अपने अपने जवाब पेश करें। पार्टी के तंजीमी ढांचे और उसके काम करने की अथॉरिटी के मामले पर तृणमूल कांग्रेस का तनाजा इंतखाबी कमीशन के सामने चला गया है। इस तरह के तनाजात में चुनाव निशान अलॉट करने से मुतालिक हुक्म के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके तहत इंतखाबी कमीशन हरीफ ग्रुपों के दावों, मुतालिका दस्तावेजात और दलाइल का जायजा लेने के बाद ही कोई फैसला करता है। दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी वजूहात के सबब अपने वालिद साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम में शामिल नहीं होंगे। भारत में मौजूदा लीडर के नुमाइंदे आयतुल्ला हकीम इलाही के मुताबिक खतरात और नजर रखे जाने के खदशात के सबब उनका शामिल होना गैर महफूज हो सकता है। इससे कबल बुध के रोज ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने अमरीका को शदीद वार्निंग जारी की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर उन्होंने जोर दिया कि वो अपने करीबी इत्तेहादी इसराइल से ईरान को धमकाने से गुरेज करने को कहें। इसराइल के वजीर दिफा इसराइल कास्ट की जानिब से ये कहे जाने के बाद कि ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई की मौत यकीनी है, ईरान के वजीर खारजा ने सख्त रद्दअमल जाहिर किया था। उन्होंने कहा कि ईरानी क़यादत को किसी भी खतरे का शदीद जवाब दिया जाएगा। ईरान और इराक में 4 से 9 जुलाई तक साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम अदा की जाएंगी। बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल

0: रिटायर्ड सैयदता हसनैन और खारजी उमूर के वजीर ममलकत पाबित्रा मार्गरेटा ईरान के रहबर आला आयतुल्ला सैयद अली खामनाई की आखिरी रसूम में शिरकत के लिए आज ईरान जाएंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि आखिरी रसूम में उनकी मौजूदगी तहरीबी राबतों की अहमियत को उजागर करती है जो अवाम से अवाम के दरमियान राबतों समेत दोनों मुल्कों के माबैन सियासी और अकतसादी राबतों को एक मुस्तहकम बुनियाद फराहम करेगी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला आज कोलकाता में मगरबी बंगाल असेंबली के नए मुंतखब अरकान के लिए दो रोजा तरबती प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इसका मकसद नए मुंतखब अरकान को कमेटी निजाम, माली निगरानी, पार्लिमानी मुराद और कानून साजी में उभरते हुए डिजिटल पहलुओं समेत पार्लिमानी और कानून साजी के कामकाज के मुख्तलिफ उमूर से रोशनास कराना है। पंचायती राज की वजारत आज नई दिल्ली में पंचायती राज के रियासती वुजरा की कौमी वर्कशॉप का इनेकाद करेगी ताकि 16वें मालियाती कमीशन की सिफारिशात पर तबादला ख्याल किया जा सके। इस वर्कशॉप की सदारत पंचायती राज महकमे के मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे जबकि इसमें रियासती वजीर ममलकत प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल भी मौजूद रहेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू और कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हो गई है जो 57 दिन तक जारी रहेगी। उम्मीद है कि मुल्क भर से लाखों अकीदतमंद पवित्र अमरनाथ गुफा के इस सफर में शामिल होंगे। अकीदतमंद तकरीबन 3,888 मीटर की बुलंदी पर वाकई पवित्र अमरनाथ गुफा जाकर भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं और फितरी तौर पर बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन करते हैं। ये यात्रा रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ 28 अगस्त को खत्म हो जाएगी। हमारे नवनिगार ने बताया है कि आज सुबह ख्वातीन और बच्चों समेत 4,800 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल यात्रियों का पहला जत्था नुनवन और बालतल के बुनियादी पड़ाव से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। मजीद तफसील हमारे नवनिगार से।
1: बम बम बोले और हर हर महादेव के नारों के बीच आज सुबह हजारों की तादाद में यात्री अमरनाथ जी की मुकद्दस गार की तरफ रवाना हो गए। 57 रोजा इस यात्रा के दौरान लाखों यात्री नुनवन पहलगाम और बालतल के रास्तों से सफर करके बाबा बर्फानी के यहाँ अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर हुक्काम ने तिब्बी कैंपों, आरामगाहों, लंगर खानों, पीने के पानी की सहूलियात जैसे जामिया इंतजाम किए हैं। दरियासना यात्रियों का दूसरा काफिला आज सुबह जम्मू से रवाना हो चुका है और तवक्का है कि ये काफिला आज से पहर वादी पहुंच जाएगा। आकाशवाणी खबरों के लिए मैं श्रीनगर से इशफाक शाह।
0: यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की जानिब से ड्रोन और मिसाइल के बड़े हमलों में 27 अफराद हलाक और दीगर 90 जख्मी हो गए हैं। कीव में खासतौर से रिहायशी इमारतों और शहरी बुनियादी ढांचे को 30 मकामात पर नुकसानात की खबर है। रूस की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि यूक्रेन की जानिब से उसके शहरी बुनियादी ढांचे पर तवील सिलसिले के हमलों के जवाब में बुध की रात ये हमले किए गए। थाईलैंड में शुमाल मशरकी मुगदहन सूबे में 11 साल के एक लड़के ने एक पिकअप ट्रक यात्रा के लिए जाने वाले राहिबों के एक ग्रुप से टकरा दिया। इस वाकये में 9 राहिबों की मौत हो गई। 13 दीगर जख्मी राहिबों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है और इनमें से 3 की हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस के मुताबिक मस्कूरा लड़के को हिरासत में ले लिया गया है। जनूब मगरबी मानसून दिल्ली में मजीद आगे बढ़ गया है। ये गुजरात के कुछ और हिस्सों, उत्तर प्रदेश के बकिया हिस्सों, मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों की जानिब भी बढ़ रहा है। मौसमियात के महकमे ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मगरबी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बहुत शदीद बारिश और कहीं बहुत ज्यादा शदीद बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली में मतला अबरारूद रहने के इम्कान के साथ साथ दिन में हल्की बारिश हो सकती है। खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान इंग्लैंड जनूबी अफ्रीका को 40 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। यह मैच लंदन के किंगस्टन ओवल में खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से एनसी ब्रंट ने सबसे ज्यादा स्कोर किया। उन्होंने 47 गेंदों पर 75 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 129 रन ही बना सकी। एनसी ब्रंट को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आलमी कप का फाइनल मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इतवार को लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा। फीफा आलमी कप में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। यह मैच कैलिफोर्निया के इंग्लवुड में लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेला गया। स्पेन की तरफ से 36वें मिनट में माइकल ओयार्ज़बल ने पहला गोल किया, जबकि मैच के 66वें मिनट में पेड्रो ने दूसरा और 79वें मिनट में माइकल ओयार्ज़बल ने एक और गोल करके स्पेन की जीत में अहम रोल अदा किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। ये मैच आइंदा माह की 15 से 27 तारीख तक खेले जाएंगे। इफ्तिताही टेस्ट मैच आइंदा माह की 15 तारीख से गाल बैन अल-अक़वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच आइंदा माह की 23 तारीख से कोलंबो के सिन्हालीस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। ये सीरीज आईसीसी आलमी टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का एक हिस्सा है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
2: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के भारत जापान मुश्तरका इक्तसादी फोरम से खिताब करने को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि भारत और जापान ने इक्तसादी तहफ़ मसनू जहानत AI दिफा और सेहत से मुतालिक शोबों में दस्तखत किए हैं। भारत अपनी रिफाइनरी की सलाहियत में तेजी के साथ तोसी कर रहा है। अगले साल भारत में रिफाइनरी की सलाहियत 300 मिलियन मैट्रिक टन तक बढ़ने का इम्कान है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी के इस बयान को आज के अखबार ने नुमाया किया है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने मुल्क भर के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डों पर एबोला वायरस की जाँच के लिए AIR सुविधा पोर्टल 2.0 का किया आगाज। इस खबर को आज के सभी अखबारों ने खसूसियत के साथ जगह दी है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हम मनसब सनाए तकाईची ने हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी इंतखाबात और दस्तखत करने के मजाज ओहदेदारों के बारे में पार्टी के हरीफ ग्रुपों के दावों के सिलसिले में दोनों ग्रुपों से जवाब तलब किए हैं। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हो गई है। ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपने वालिद आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम में शिरकत नहीं करेंगे। और स्पेन ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मेरे वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: दिनांक 2 जुलाई से 8 जुलाई तक राज्य भर में मनाया जा रहा है बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं।
5: बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है अब भ्रष्टाचार के खिलाफ।
4: भ्रष्टाचार की शिकायत टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें या संपर्क करें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अथवा विशेष निगरानी इकाई कार्यालय में।
5: भ्रष्टाचार मुक्त बिहार।
4: निगरानी विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 अगस्त से अनुमंडलीय और जिला अस्पताल से उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में अनावश्यक रेफरल पर रोक लगाने के निर्देश दिए। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। और मौसम विभाग ने आज पटना सहित प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने 15 अगस्त से अनुमंडलीय और जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज और उच्च स्वास्थ्य संस्थान में अनावश्यक रेफरल पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को अनावश्यक रेफरल की प्रवृत्ति पर रोक लगाने और इसके लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए हैं। श्री चौधरी ने अस्पतालों में नर्सों की पदस्थापना पर विशेष ध्यान देने और उन्हें यथासंभव उनके गृह जिलों में पदस्थापित करने पर विचार करने के भी निर्देश दिए। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि प्रदेश में विकसित भारत जी रामजी योजना के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को अब 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जा रही है। पटना के अधिवेशन भवन में योजना की औपचारिक शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी मजदूर को आवेदन के 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं दिया गया तो सरकार उसे अपने कोष से बेरोजगारी भत्ता देगी। उन्होंने कहा कि अकुशल मजदूरों की दैनिक मजदूरी को 255 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये रोजाना कर दिया गया है। श्री कुमार ने कहा कि अकुशल मजदूरों का मस्टर रोल बंद होने से 15 दिनों के अंदर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है तो बकाया राशि पर 0.05% प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि मनरेगा की अव्यवस्थाओं और खामियों को दूर करने के मकसद से विकसित भारत जी रामजी योजना को लाया गया है। इससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को फायदा मिलेगा।
1: जिस तरीके से मनरेगा को भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना दिया गया था, ये तमाम चीजों को खत्म करने की सोच के साथ और सही मायनों में जो लाभार्थी हैं उनको इस योजना से जोड़कर इसका लाभ मिले, इस सोच के साथ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लंबे समय से इस योजना पे कार्य हो रहा था, इसको लाया गया है, इसको लागू किया गया है। मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में इसका लाभ भी देश की एक बड़ी आबादी को देखने को मिलेगा।
0: इस बीच केंद्रीय मंत्री श्री पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात कर राजगीर में दो युवकों की हत्या और आरा में भरत तिवारी मुठभेड़ मामले की जानकारी दी। श्री पासवान ने इन मामलों में निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने का आग्रह किया है। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त

0: आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। कार्यशाला में पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिसके लिए स्वयं सृजित राजस्व जुटाने को बढ़ावा दिया जाएगा। यह कार्यशाला राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने, कार्यान्वयन चुनौतियों पर चर्चा करने और वित्त आयोग के अनुदानों के प्रभावी उपयोग के लिए व्यावहारिक रणनीतियों का आदान प्रदान करने का मंच भी प्रदान करेगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने केंद्र सरकार से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए 1,120 करोड़ रुपये की मांग की है। श्री तिवारी ने इस संबंध में नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने इस प्रस्ताव पर शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि राज्य के लिए विशेष बजट के आवंटन से विद्यालय शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि गंगा नदी का कायाकल्प एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों, वैज्ञानिक संस्थानों और स्थानीय समुदायों के बीच लगातार सहयोग से यह महती कार्य किया जा सकता है। गंगा नदी के लिए बनाई गई एम्पावर्ड टास्क फोर्स की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री पाटिल ने यह बात कही। बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि अब तक 43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुमानित लागत वाली 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 363 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत 21,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। राज्य निर्वाचन प्राधिकरण ने 37 पैक्स चुनाव के लिए प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके अनुसार 6 जुलाई को प्राथमिक कृषि साख समिति स्तर पर प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 8 जुलाई को जिला सहकारिता पदाधिकारी की ओर से सूची निर्वाचन पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। दावा आपत्ति और अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया 23 जुलाई तक पूरी होगी। इधर पटना जिले के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। उपचुनाव में 3,79,000 मतदाता भाग लेंगे। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि उपचुनाव के लिए पटना सदर के भूमि सुधार उप समाहर्ता राघवेंद्र प्रताप सिंह को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है। उपचुनाव के लिए 6 से 13 जुलाई तक नामांकन लिए जाएंगे। मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। अंतिम संस्कार का कार्यक्रम कल से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यगत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
1: बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: मौसम विभाग ने आज पटना सहित प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व हिस्सों में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ वज्रपात की आशंका है।
2: दिनांक 3 जुलाई राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर मॉनसून की सक्रियता से पिछले 24 घंटों के दौरान पटना, बक्सर, सारण, वैशाली, बेगूसराय और खगड़िया समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर के अधवारा में सबसे अधिक 86.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश होने से अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 36.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सीवान का जीरादेई सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रेलवे बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी है। बोर्ड के अनुसार 4098 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इधर बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट पद की कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा 28 जुलाई को होगी। निगरानी जांच ब्यूरो ने शिक्षा विभाग के वेतन सत्यापन कोषांग में तैनात अवर सचिव अमोद मिश्रा को 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इधर पटना पुलिस ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन और GST के फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के मामले में 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 14 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, कई पासबुक, 6 लाख से अधिक नकद और 7 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। शिवहर जिला प्रशासन ने शिवहर थाना अध्यक्ष सहित जिले के 4 थानों में नए थाना अध्यक्ष पदस्थापित किए हैं। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने नव पदस्थापित पुलिस कर्मियों को 24 घंटे के अंदर योगदान देने का आदेश दिया है। शेखपुरा जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 333A बरबीघा क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का काम आज से शुरू हो गया है। अनुमंडल पदाधिकारी प्रियंका कुमारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अतिक्रमण से यातायात संचालन, सड़क सुरक्षा और आम जन की परेशानियों को दूर करने के मकसद से यह कार्रवाई की जा रही है। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 105 ग्राम मादक पदार्थ भी बरामद किया है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट से भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा बिहार। भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री, विधायक और अफसर नपेंगे। दैनिक जागरण ने राज्य में टोल टैक्स से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, सड़कों की चौड़ाई के अनुसार लगेगा टोल टैक्स, अब तक 50 सड़कें चिन्हित। दैनिक भास्कर ने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव से जुड़ी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, बांकीपुर से जन सुराज के पी के खुद लड़ेंगे चुनाव, भाजपा से नीलू रेस में सबसे आगे। प्रभात खबर लिखता है, नीट जेईई में बोर्ड परीक्षा के अंकों पर मिल सकता है 50% तक वेटेज। आज अखबार का शीर्षक है, पटना मेट्रो का मलाही पकड़ी तक परिचालन शुरू। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, 14 अगस्त तक 1 करोड़ लोगों की

होगी टीबी स्क्रीनिंग। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 अगस्त से अनुमंडलीय और जिला अस्पताल से उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में अनावश्यक रेफरल पर रोक लगाने के निर्देश दिए। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज्य मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। और मौसम विभाग ने आज पटना सहित प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आपने सुना आयशा फिल्म कनक माँ, जावेद अख्तर ने इसे लिखा था, संगीतबद्ध किया था अमित त्रिवेदी ने, आवाज़ अनुषा मणि की थी। कार्यक्रम है नगमे नए पुराने, अब आइए सुनते हैं ये नगमा।

अभी आपने सुना बादशाह फिल्म का नगमा। शाहरुख और अभिजीत की आवाज़ें थीं। गीत लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीतबद्ध किया था नू मलिक ने। नगमा नए पुराने कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है। मेरे अपने फिल्म से आनंद बख्शी ने इसे लिखा है। किशोर कुमार और मुकेश की आवाज़ें हैं और संगीतबद्ध किया है सलिल चौधरी ने।

अभी आप सुन रहे थे कबीरदास की भक्ति रचना। कार्यक्रम है सुगम संगीत, कलाकार हैं विजय कुमार दास। अब आइए सुनते हैं इनसे मलूक दास की ये भक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम, कलाकार हैं विजय कुमार दास। अभी आपने इनसे मलोक दास की यह भक्ति रचना सुनी है। अब आइए सुनते हैं गोपाल सिंह नेपाली की यह गीत रचना।

कार्यक्रम सुगम संगीत के आखिर में आइए सुनते हैं महादेवी वर्मा की ये गीत रचना। कलाकार हैं विजय कुमार दास।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत कार्यक्रम, कलाकार थे विजय कुमार दास, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में दिन के ठीक 10 बजे हैं। प्रस्तुत है पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम के तहत कुछ फिल्मी नगमे। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आदमी खिलौना है फिल्म के इस नगमे के साथ।

अभी आपने आदमी खिलौना है फिल्म का नगमा सुना। अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ें थीं। गीत समीर ने लिखा था, संगीत बद्ध किया था नदीम श्रवण ने। कार्यक्रम है पुरानी फिल्मों से।

पुराने फिल्मों से कार्यक्रम की दूसरी प्रस्तुति थी लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म गाइड से। अब आइए सुनते हैं राजपूत फिल्म का ये नगमा। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब की है।

अभी आपने ये खूबसूरत नगमा सुना है फिल्म रोए राजपूत से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और साथियों की थी। गीत आनंद बख्श ने लिखा था, संगीत बद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम है पुरानी फिल्मों से।

अब आइए सुनते हैं आशा फिल्म का नगमा। आवाज एक बार फिर से मोहम्मद रफी साहब की।

अभी आपने मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में आशा फिल्म का नगमा सुना। अब आइए सुनते हैं दुश्मन फिल्म का नगमा। आवाज़ लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है। गीत आनंद बख्श ने लिखा है, संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: पुराने फिल्मों से कार्यक्रम के आखिर में आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म जीने की राह का ये नगमा सुना। इसके साथ ही पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम का आज का सफ़र हुआ पूरा। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है लोकगीत कार्यक्रम। कलाकार हैं बासुकी प्रसाद यादव। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में इनसे आइए सुनते हैं कुछ शिव भजन।

बेका माल देखली हो कमाल देखली।

अभी आप लोक गीत कार्यक्रम में वासुकी प्रसाद यादव को सुन रहे हैं। इस शिव भजन को सुनने के बाद अब आइए इनसे सुनते हैं ये गोदना गीत।

एक तो मथवा पे है ले डलिया वा ठुमकी के चाल चले ब्रज के नगरिया ठुमकी के चाल चले ब्रज के नगरिया हिलत डोलत में पाई।

श्याम यहाँ गोपियन के टोलिया, देखी श्याम यहाँ गोपियन के टोलिया, कहले गोदना कहले गोदना, गोदाई ले अपन मन के हो, गोदाई ले अपन मन के हो, गोदाई ले अपन मन

इस पूर्वी के साथ ही आज का लोकगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज इस कार्यक्रम में आपने वासुकी प्रसाद यादव को जुना सुना। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने वाले हैं, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्स और एफएम के 110.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से।

जब सुनी फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म का गीत, आवाजें हैं विशाल मिश्रा और साथियों की।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। प्रसारण आपके सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 11:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम गुलदस्ता।

दोस्तों, आप तो समझ ही गए होंगे, आज का कार्यक्रम हम समर्पित कर रहे हैं महान अभिनेता जो अपने संवाद की अदायगी से मशहूर हुए, जिनका एक शब्द उन्हें मशहूर कर गया और वो शब्द का नाम था जानी। तो आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं महान फिल्मकार राजकुमार के बारे में, जिनको आज का कार्यक्रम हमने समर्पित किया है। आपको बता दें कि आज राजकुमार की पुण्यतिथि है और इसीलिए आज हमने उनको समर्पित किया है आज का हमारा गुलदस्ता कार्यक्रम।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: क्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, त्रिश और बाल्टी बॉय।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।
6: दोस्तों, तो हम बातें कर रहे थे मशहूर अभिनेता राजकुमार की। राजकुमार की जीवन पर अगर नज़र डालें तो उनका फिल्मी नाम था राजकुमार, लेकिन उनका असली नाम कुलभूषण पंडित था। इनका जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान में हुआ था, जो आजकल पाकिस्तान में है। फिल्मों में आने से पहले वो बम्बई पुलिस में पुलिस सब इंस्पेक्टर थे। जानी के नाम से मशहूर राजकुमार ने फिल्मी दुनिया में बहुत सारी फिल्में की और अपने संवाद अदायगी और अपनी अभिनय प्रतिभा के दम पर काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुए। आज भी लोग उन्हें जानी के नाम से ही याद करते हैं। आज का कार्यक्रम हमने उनको समर्पित किया है और आज हम उन्हीं के ऊपर फिल्माए गए कुछ गीत आपको सुनवा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ये गीत जो हमने लिया है फिल्म वक्त से।

दोस्तों, कभी कभी किसी की कुछ बातें आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाती है, और ठीक ऐसा ही हुआ राजकुमार के साथ। जैसा कि हमने आपको बताया कि राजकुमार बलूचिस्तान से स्नातक करने के बाद मुंबई आए और माहिम थाने में वो सब इंस्पेक्टर बन गए और पुलिस की नौकरी करने लगे। आप तो जानते ही हैं, पुलिस के लोग रात्रि में गश्ती भी करते ही रहते हैं। तो एक बार रात्रि में गश्ती के दौरान एक उनके मातहत सिपाही ने उनसे यूं ही कहा कि हुजूर, आप रंगढंग में कदकाठी में किसी हीरो से कम नहीं दिखते हैं। फिल्मों में यदि आप हीरो बन जाएं तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं, और यही बात राजकुमार के दिल को जच गई। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे वहाँ अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार फिल्म स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलराम दुबे कुछ जरूरी काम से आए, उनके वहाँ मुलाकात राजकुमार से हुई। राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से बलराम दुबे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार को अपने फिल्म शाही बाजार में अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की। राजकुमार, जिनके दिल पर सिपाही की वो बातें असर कर गई थी, उन्होंने अभिनेता बनने का तुरंत मन बनाया और तुरंत ही सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दिया और निर्माता की पेशकश स्वीकार कर ली। आइए आपको सुनवाते हैं राजकुमार की एक और फिल्म का ये मनमोहक गीत।

दोस्तों, शाही बाजार फिल्म जो उनकी पहली फिल्म थी को बनने में काफ़ी समय लग गया, और इस दौरान चूंकि राजकुमार ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, उनके लिए जीवन यापन करना भी मुश्किल हो गया। इसी बीच 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीली में उन्हें एक छोटी सी भूमिका मिली, और लेकिन ये फिल्म कब फिल्में पर्दे पर लगी और कब चली गई लोगों को पता ही नहीं चला। इस बीच शाही बाजार भी प्रदर्शित हुई, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह असफल हो गई। शाही बाजार की असफलता के बाद राजकुमार बुरी तरह टूट गए। उन्हें लोगों की आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोग उन्हें ये भी सलाह देने लगे कि आप नायक नहीं खलनायक बन जाइए। 1952 से 57 तक राजकुमार फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। इस दौरान कई फिल्में उन्होंने जरूर की, लेकिन सारी की सारी फिल्में पिट गई। वर्ष 1957 में प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक महबूब खान ने अपनी फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार को गांव की एक किसान की छोटी सी भूमिका दी। हालांकि ये फिल्म पूरी तरीके से अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित थी, लेकिन फिर भी राजकुमार ने अपनी छोटी सी ही भूमिका में लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी। इस फिल्म का गीत जो अभी आपने सुना, इसके बाद राजकुमार धीरे धीरे इस फिल्म की सफलता के बाद फिल्मी दुनिया में स्थापित से हो गए। उन्होंने कई फिल्में की जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब चली। उनकी एक बहुचर्चित फिल्म आई नीलकमल, जिसके गानों ने तो धमाल किया ही, साथ ही इनके अभिनय ने भी इस फिल्म में को प्रदर्शित करने में, इस फिल्म को ख्याति दिलाने में बहुत अधिक भूमिका निभाई। आइए सुनते हैं ऐसे फिल्म का ये गीत।

1991 में प्रदर्शित फिल्म सौदागर में राजकुमार के अभिनय के नए आयाम देखने को मिले। सुभाष घई द्वारा निर्मित इस फिल्म में राजकुमार ने प्रदर्शित फिल्म पैगाम के बाद दूसरी बार दिलीप कुमार के साथ भूमिका अदा की और अभिनय की दुनिया के इन दो महारथियों का टकराव देखने लायक था। राजकुमार का एक डायलॉग, दुनिया जानती है कि राजेश सर जब दोस्ती निभाता है तो अफसाने बन जाते हैं और दुश्मनी करता है तो इतिहास लिखे जाते हैं, इस डायलॉग ने सौदागर की सफलता में अपना योगदान दिया। आइए सुनते हैं इसे फिल्म का ये लोकप्रिय गीत।

आज के दिन राजकुमार गले के कैंसर से ग्रसित होने के कारण हमें छोड़कर परलोक सिधार गए। ये दुनिया जब तक रहेगी, ये बॉलीवुड जब तक रहेगा, राजकुमार अपने अभिनय के द्वारा हम सबों के दिलों में अमर रहेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम राजकुमार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम नारी लो।

0: बहनों श्रीना का प्यार भरा नमस्कार। बहनों प्रकृति में समय समय पर मौसम बदलती रहती है, यानी कि प्रकृति का काम ही है परिवर्तन। और मुख्य रूप से गर्मी सर्दी और वर्षा ऋतु परिवर्तनशील के रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करती रहती है। हर मौसम का हमारे शरीर स्वास्थ्य और दैनिक जीवन पर बहनों अलग अलग प्रभाव पड़ता है, और इसलिए स्वस्थ और सुखी जीवन जीने के लिए मौसम के अनुरूप अपनी जीवन शैली अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले गर्मी के मौसम की बात करें तो इस समय तापमान बहुत अधिक होता है, तेज़ धूप और गर्म हवाएं शरीर को जल्दी थका देते हैं। तो इस मौसम में हल्की और सूती कपड़े पहनें ताकि शरीर को आराम मिल सके और ठंडक भी मिल सके। अधिक से अधिक पानी पीना इस मौसम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फलों का सेवन जरूरी है, और साथ ही दोपहर में तेज़ धूप में बाहर निकलने से बचें। जहाँ तक हो सके शाम को या सुबह में काम निपटाएं, नहीं तो लू लगने का खतरा है। सर्दी के मौसम की अगर हम बात करते हैं तो सर्दी के जो मौसम होते हैं उसमें गर्म कपड़े पहनने चाहिए और पौष्टिक भोजन जैसे सूप दूध मेवे आदि लें। और बहनों पौष्टिक और पोषण युक्त भोजन तो हर मौसम के लिए ज़रूरी है, तो मौसम के अनुसार खान पान का भी ध्यान रखें। सुबह शाम ठंडी हवा से बचना चाहिए और शरीर को गर्म रखना चाहिए। बहनों इस मौसम में यानी कि सर्दी के मौसम में हमें ऊनी कपड़े पहनने चाहिए, सुबह हल्की धूप लेना चाहिए, व्यायाम करना भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। और बहनों वर्षा ऋतु की अगर हम बात करें तो वर्षा ऋतु में जो वातावरण होता है वह ठंड और गर्मी का मिला जुला मौसम होता है। बरसात के मौसम में खासकर साफ़ सफाई बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि बरसात के मौसम में बीमारियां अधिक होती है, तो इस मौसम में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। गंदा पानी और बाहर का खुला खाना खाने से बचें, क्योंकि इस मौसम में बीमारियां बहुत जल्दी फैलने लगती हैं। इस मौसम में वातावरण नम और ठंडा हो जाता है, हमेशा स्वच्छ पानी पीना और आसपास गड्ढों में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए ताकि मच्छरों से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। बहनों मौसम के अनुसार समय पर सोना उठना संतुलित भोजन करना और नियमित व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम मौसम के अनुसार अपने खान पान में बदलाव लाएं तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। तो बहनों यही कहना चाहूँगी कि मौसम के अनुरूप जीवन शैली अपनाना स्वस्थ जीवन की कुंजी है। तो बहनों इसी के साथ हम देते हैं अपनी इस चर्चा को विराम और सुनते हैं कुछ और भी जरूरी बातें।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित। हिंदुस्तान के सहयोग से कुटुंब पंचायत से अनीता कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: मायसेल्फ अनीता कुमारी फ्रॉम कुटुंबा पंचायत डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। मैंने अपने गांव में बहुत सारे काम किए हैं, जैसे WPUS प्रोसेसिंग यूनिट और चाइल्ड एजुकेशन और ओल्ड एज पेंशन, नली गली, छठ घाट निर्माण, वुमेन एजुकेशन। गांव में लाइब्रेरी भी खुलवाई हूँ ताकि जो बच्चे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं और घर में वो लोग को लाइट के बिना सुविधा

0: मिल पाता है, वहाँ बैठ के वो लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और बड़े होकर कुछ बन सकते हैं।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: उपभोक्ताओं तक पहुँचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। परुणा पंचायत से आशा देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
0: गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। मैं जब 2016 में जीती थी तो हम लोग के गाँव में बहुत कठिनाई आती थी कि गली में बहुत कचरा और पानी भर जाता था, रोड नहीं था, नली नहीं था। पहले हम लोग काम किए, इसके बाद देखे कि बहुत लाचार और गरीब जो झोपड़ी में रहते थे उसको रहने का जगह नहीं था और गरीब था, उसको कमाने का कोई खाने का कोई अथी नहीं था। उन लोग हम लोग को काम दिए हैं।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
4: तो बहनों, आपको बताते चले कि आज है शुक्रवार और आज के दिन हम सुनते हैं कार्यक्रम बहनों की पसंद, जिसमें सुनते हैं आप बहनों की पसंद के चंद फिल्मी नगमे। तो पहला गीत पसंद करने वाली बहनों के नाम है साहिबगंज भागलपुर से अनु, नेहा, स्वाति, प्रिया और नमिता। तिलका मांझी भागलपुर से आलिया, सुहानी, रानी और पूजा। गोरहट्टा चौक भागलपुर से रूबी, नगमा और मुमताज। आप सबों की पसंद पर सुनते हैं फिल्म हम है राही प्यार के। गाने के बोल है घूंघट की आड़ से। इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

मैंने वो कार्यक्रम का दूसरा गीत है फिल्म दिल से। गाने के बोल हैं हम प्यार करने वाले। इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल उदित नारायण ने और पसंद करने वाली बहनें हैं मुंगेर से मधु और नेहा, यूनिवर्सिटी रोड भागलपुर से कांति देवी बबीता देवी और आरती देवी, नूरपुर भागलपुर से ममता मिताली और कुसुम।

बहनों, कार्यक्रम का तीसरा गीत पसंद करने वाली बहनें हैं नाथनगर भागलपुर से पिंकी शुभ्रा, निक्की श्वेता, अंकिता और सीमा, चुनिहारी टोला भागलपुर से पूजा, रागनी, मनीषा, सृष्टि और कोमल, चंपानगर भागलपुर से रामेश्वरी, अलका, सोनी, खुशबू और मोनी।

आप सबों की पसंद पर सुनते हैं फिल्म दिल का क्या कसूर का ये गीत। गाने के बोल हैं मेरा सनम सबसे प्यारा है। इस गीत को गाया है आशा भोसले और कुमार सानू ने।

महलो फिल्म है त्रिदेव, गाने के बोल हैं तिरछी टोपी वाले। इस गीत को गाया है अमित कुमार, सपना मुखर्जी और साथियों ने। पसंद करने वाली बहनों के नाम है सोनापट्टी भागलपुर से रश्मि रोमी, हबीबपुर भागलपुर से फातिमा गुंजा, शाहिना और रेशमा, लालखा दरगाह भागलपुर से रोजी रूबी और नाचिया।

आप सुन रहे थे महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम नारी लोक। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
0: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
0: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
0: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा, चलिए श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
2: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है
0: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
2: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
0: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
2: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
0: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
2: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत

0: अणु में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है
1: जी।
0: लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
1: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की। लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
0: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
1: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
3: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
5: हाँ, 2000 साल पहले।
6: नानी माँ?
7: हाँ निधि।
6: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
7: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
6: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
7: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
6: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
7: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
6: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
7: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
6: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
7: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
6: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
7: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
6: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
7: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना?
6: मामा जी, मामा जी।
2: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
6: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है
6: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले। ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
2: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
6: ये किसी खुदरी

0: शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
1: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
2: अच्छा, भोज वृक्ष।
1: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
0: पांडुलिपि, ये हमें कहाँ मिली है?
1: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
0: अच्छा।

0: कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
1: अच्छा,
0: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
1: एपिग्राफ।
0: शाबाश निधि।
1: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
0: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
1: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
2: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
2: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदि,
3: और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
4: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
3: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
4: जी,
3: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रही
4: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
3: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं, कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
5: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कालंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।

0: कि सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। जहे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
1: फिर आगे बढ़ रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
0: मैं आसिफ खान हूं, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूं, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
1: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
0: अच्छा, वाह। और
1: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
0: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
1: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
0: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
1: चल बेटा मोती।
0: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
3: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
4: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कार्यों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
3: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
4: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
2: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
5: अलख निरंजन।
6: साधु बाबा।
5: अब अच्छा,
6: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
5: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं।
6: क्या?
5: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
6: है?
5: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
6: अच्छा?
5: हाँ,
6: बहुत बड़ी फौज है।
5: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
6: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
5: अच्छा,
6: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
5: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
6: बिल्कुल है।
5: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए, तो
6: उसका भी इंतजाम।

0: पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनु, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालूं रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनु।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
3: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
2: अच्छा तो गनु बेटा, तू अपनी कटार मुझे दे।
3: रानी माँ,
4: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।

0: और श्रोताओ, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में दोपहर का 1 बजा है। लीजिए सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज के हमारे कलाकार हैं पवन कुमार राम। आरंभ में आइए इनसे सुनते हैं ये देवी गीत।

0: अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राज भदकाई पंचायत से ओम प्रकाश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: मैं ओम प्रकाश कुमार, ग्राम पंचायत राज भटगाई, और अपने पंचायत के हर दुख सुख में रहे। हमारे पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है, दलित बस्ती बहुत सारे हैं, जहां सड़क नहीं था वहां सड़क बनवाए, स्कूल में चार दीवारी करवाए। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। धन्यवाद।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार हैं पवन कुमार राम। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:10 होने वाले हैं। आइए शामिल होते हैं रांची के प्रसारण सभा में प्रादेशिक समाचारों के लिए, लेकिन पहले सुनिए एक संदेश।
0: अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। छतरहार पंचायत से अनीता मिश्र बनी है यशस्वी मुखिया।
3: अल्ट्राटेक का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि गांव बनेगा तो हमारा देश बढ़ेगा। तो गांव बनाने की जो अहम भूमिका है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का है। चाहे मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन बने, घाट बने, या स्कूल बने, बिल्डिंग बने, अल्ट्राटेक सीमेंट हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि गांव के निर्माण में उसका बहुत योगदान है कि वो लोग सहयोगी बन करके सुचारू रूप से सफल बनाया।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आज पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला, 16वें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों पर होगी चर्चा। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित। सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू। जमशेदपुर हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों सहित 3 नाबालिगों को लिया हिरासत में। विरोध में आज भाजपा के बंद का आदित्यपुर में दिखा व्यापक असर। रिम्स में MBBS, PG और सुपर स्पेशलिटी की सीटें बढ़ाने की तैयारी। आधारभूत संरचना के विस्तार की प्रक्रिया तेज। और लोहरदगा में आज से 26वीं राज्य जूनियर एवं सब जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता शुरू। 700 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार परीक्षा परिणाम उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी आज से 9 जुलाई की शाम 5 बजे तक मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने अभ्यर्थियों से आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में अपलोड करने तथा आवेदन की हार्ड कॉपी 14 जुलाई की शाम 5 बजे तक आयोग कार्यालय में जमा करने को कहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के CCL डकरा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, CCL और केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारी मौजूद रहे। श्री सेठ ने कहा कि इस विद्यालय के शुरू होने से क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा मिलेगी तथा उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार करना चाहूंगा। मुझे याद है चुनाव में मैं आया था, मैंने वादा किया था अब केंद्रीय विद्यालय खुलेगा और उसके बाद 2020 में मैंने प्रश्नकाल में लोकसभा में नई मंत्रा इस केंद्रीय विद्यालय खोलने की आवाज उठाई और उसके बाद ये आश्वासन दिया कि केंद्रीय विद्यालय जरूर खुलेगा।
0: जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में हुई हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों सहित 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। जमशेदपुर के SSP एहतशाम बकारिब ने बताया कि SIP का गठन कर तकनीकी साक्ष्यों और CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
2: 2 जुनूर बालक है, जुनाइल बालक है, अराउंड 16 एंड 17 ईयर्स के है, उन दोनों को है किया गया। अब प्रीवियसली लास्ट टाइम हम लोग 3 लोग को ऑलरेडी जेल भेज चुके हैं, जिसमें एक सोनू सरदार है और एक है राज लोहार और एक बालक जो कि 16 साल का था, वो भी कभी निरुक्त किया गया जुनाइल जस्टिस के तहत।
0: इधर आदित्यपुर में हिमांशु सिंह हत्याकांड के विरोध में भाजपा और समर्थित संगठनों के बंद का आज व्यापक असर देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान आदित्यपुर नगर निगम के मेयर संजय सरदार समेत 40 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। आदित्यपुर नगर निगम के मेयर संजय सरदार ने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य प्रशासन का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित करना है।
3: मशाल जुलूस के स्थल पर उतरे थे रोड पर और आह्वान किए थे आदित्यपुर बंदी का। लोग प्रशासन के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में, हम लोग सरकार को जगाने का कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन हर जगह नाकाम है, इस पर उनका नाकामी साफ साफ दिख रही है और हम लोग स्पष्ट कड़े शब्द से मैं विरोध करता हूं। हत्यारा को अविलंब गिरफ्तार करे, फांसी की सजा दे।
0: रांची में कांके राम मंदिर से प्रोजेक्ट भवन धुरवा तक के मार्ग को अतिक्रमण मुक्त, जाम मुक्त, सुरक्षित, स्वच्छ और हरित बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में इस संबंध में कार्य योजना पर चर्चा की गई। अभियान के तहत सड़क, फुटपाथ, पार्किंग, ऑटो स्टैंड और वेंडिंग जोन का सुव्यवस्थित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने रिम्स में MBBS, PG और सुपर स्पेशलिटी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रस्ताव के अनुसार MBBS सीटें 176 से 250, PG सीटें 180 से 275 और सुपर स्पेशलिटी सीटें 11 से बढ़ाकर 100 करने की योजना है, जिसे केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को भेजा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ी हुई सीटों के अनुरूप भवन, हॉस्टल, प्रयोगशालाओं, उपकरणों, फैकल्टी और अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बोकारो जिले के तेलमुंगा गांव में एक बुजुर्ग दंपति और उनके दिव्यांग पुत्र को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिलाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले का संज्ञान लिया है। परिवार की ओर से पेंशन नहीं मिलने की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच कर पात्र लाभुकों को शीघ्र योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड में चकला कोल माइंस क्षेत्र के दो आंगनबाड़ी केंद्रों का स्वरूप बदला है। यहां बच्चों के लिए स्वच्छ वातावरण, बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और आधारभूत संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्र की सेविका ने बताया कि निजी कंपनी के सहयोग से आंगनबाड़ी की व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
4: अभी जो है वैसा पहले नहीं था। अभी यहाँ पे टीकाकरण होता है, यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ दिया जाता है। हमारी सेंटर में यानी मेरे एरिया में जितना भी लाभुक है टोटल जुड़े हुए हैं। संख्या लगभग यहाँ पे टोटल जनसंख्या का आधार पर 1507 है।
0: श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। भारतीय शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 511 अंक चढ़कर 78,013 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 160 अंक ऊपर आकर 24,336 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,36,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,42,000 रुपए प्रति किलो है। ताइक्वांडो। झारखंड ताइक्वांडो संघ और जिला ताइक्वांडो संघ के तहत 26वीं राज्य जूनियर एवं सब जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता लोहरदगा में आज से शुरू हो रही है, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से 700 खिलाड़ी, प्रशिक्षक, टीम मैनेजर और रेफरी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन उपायुक्त संदीप कुमार मीणा करेंगे और उद्घाटन समारोह में पुलिस अधीक्षक और संघ अध्यक्ष सादिक अनवर रिजवी समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आज पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला 16वें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों पर होगी चर्चा। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित। सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू। जमशेदपुर हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों सहित 3 नाबालिगों को लिया हिरासत में। विरोध में आज भाजपा के बंद का आदित्यपुर में दिखा व्यापक असर। रिम्स में MBBS, PG और सुपर स्पेशलिटी की सीटें बढ़ाने की तैयारी। आधारभूत संरचना के विस्तार की प्रक्रिया तेज। और लोहरदगा में आज से 26वीं राज्य जूनियर एवं सब जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता शुरू। 700 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज के हमारे कलाकार हैं पवन कुमार राम। आइए सुनते हैं इस भाग में ये देवी गीत, लेकिन पहले सुनिए कुछ संदेश।
6: अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राज भदगाई पंचायत से ओम प्रकाश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
7: मैं ओम प्रकाश कुमार, ग्राम पंचायत राज भटगाई, और अपने पंचायत के हर दुख सुख में रहे। हमारे पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है, दलित बस्ती बहुत सारे हैं, जहां सड़क नहीं था वहां सड़क बनवाएं, स्कूल में चार दीवारी करवाएं। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। धन्यवाद।
6: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सही, देश के नंबर।

0: पंचायत डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। मैंने अपने गांव में बहुत सारे काम किए हैं, जैसे WPUS प्रोसेसिंग यूनिट और चाइल्ड एजुकेशन और ओल्ड एज पेंशन, नली गली, छठ घाट निर्माण, वुमेन एजुकेशन। गांव में लाइब्रेरी भी खुलवाई हूँ ताकि जो बच्चे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं और घर में वो लोग को लाइट के बिना सुविधा नहीं मिल पाता है, वहाँ बैठ के वो लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और बड़े होकर कुछ बन सकते हैं।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार थे पवन कुमार राम। प्रसारण आपके सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए ग्रामीण महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम नारी लोक। छवा करेंगे ग्रामीण महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहन का दीपा के नमस्कार। बहन, आजकल दो तीन दिनों से टिपिर टिपिर लेकिन वर्षा हो जा रहलो छे, जेकरो कारण कि गर्मी उमस से तनिसन राहत मिललो छले, लेकिन आई फेनू से गर्मी के रौद्र रूप देखल मिल रहलो छे। लेकिन ई बात से तहू सिनी सहमत जरूर होवो, आजकल मौसम पूरा तरह से उल्टा पुल्टा हो रहलो छे। गर्मी करे छे तब बेतहासा गर्मी, झड़ पड़ लगे छे तब इतने पड़ लगे छे कि बाढ़ के नौबत आबी जाए छे, या जाड़ा जब पड़े छे तब इतने कि हाड़ कपाई दे छे। कहीं न कहीं ई कह सके छे कि मौसम के जे इतना ज्यादा उलट फेर हो रहलो छे, सब जलवायु परिवर्तन के वजह से हो रहलो छे। बहिन, भारत त्योहार के देश छिके, यही से यहाँ जंगल आरु पेड़ के उत्सव मनावे वास्ते भी बहुत त्योहार मनेलो जाए छे। वन का समर्पित एक एहनो ही खास त्योहार छे वन महोत्सव, जे कि हर साल जुलाई माह के प्रथम सप्ताह यानी कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक आयोजित करलो जाए वाला महोत्सव छिके। ये महोत्सव भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण का प्रोत्साहन दे वास्ते आयोजित करलो जाए छे। ये उत्सव के शुरुआत 1950 के कृषि मंत्री कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी ने करला छले। वन महोत्सव सामान्यतः जुलाई अगस्त महीना में मनाई करी का अधिक से अधिक वृक्षारोपण करलो जाए छे। वर्षा काल में ये 4 महीना के पौधा थोड़ा प्रयास से अपनो जड़ जमाए ले छे। बहिन, ये विचार भी मन में आवे छे कि वन महोत्सव मनावे के आवश्यकता ही कहना होले। कहनो परिस्थिति छले कि साधारण सन वृक्षारोपण का महोत्सव के रूप देल पड़ले। संभव छे कि बढ़ता आबादी के आवश्यकता बहुत तरह के जरूरत का पूरा करे वास्ता कटता जंगल प्रकृति के प्रति उदासीनता न ही प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ी दिल के। अनजाने में होलो भूल या फेनू लापरवाही के दुष्परिणाम सामना आते ही मानव मन में चेतना जगले आरु मानव ई करे ला तैयार हो गले। ई बात त सभे जाने छे कि हमरो सिनी द्वारा काटलो गेलो पेड़ पर बहुत तरह के पक्षी के बसेरा होय छले। शाखा, पत्ता, जड़ आरु तना पर बहुत तरह के कीट पतंग परजीवी अपनो जीवन जिए छले। आरु बेतहासा पेड़ के कटाई से बहुत तरह के वन्य प्राणी लुप्त होय गले आरु अभी भी लुप्त होय के कगार पर छे। भूमि के कटाव का रोकय में वृक्ष जड़ ही हमरोसनी के मदद करे छे। वर्षा के तेज बूंद के सीधे जमीनी टकराव का पेड़ के पत्ता खुद पर झेली का बूंद के मारक क्षमता का लगभग शून्य करी दे छे। वन महोत्सव मनावे के आवश्यकता हमरा सिनी का कहना पड़ी रहलो छे। ई प्रश्न के मूल कारण छे गैर वनीयकरण, मानवीय हो या प्राकृतिक। देखलो जाए तब प्रकृति खुद का हमेशा सहजता एलो छे। धरती पर वन के आवरण कितना बढ़लो या घटलो छे, क्षरण में भूमि, कीट, पतंग, वृक्ष, पशु, पक्षी सभे आबी जाए छे। बहिन, वन के क्षरण बहुत प्रकार से होई छे, जेकरा में वृक्ष के काटना, सुखाना, जलाना, अवैध उत्खनन इसनी प्रमुख रूप से छे। गांव,

नगर महानगर के क्षेत्रफल बढ़ी रहलो छे आरु जंगल संकुचित होय रहलो छे। दैनिक जे जरूरत छे होकरो वास्ते लकड़ी के प्रयोग के मांग बढ़ी रहलो छे। बड़ो बड़ो बांध के निर्माण होला सा आसपास के बड़ो वन क्षेत्र जलमग्न होय करी का डूबी चुकलो छे आरु हमेशा वास्ता अपनो अस्तित्व खोई चुकलो छे। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करी का हमरा ऑक्सीजन दे छे। हम असनी शहर सड़क खेत वास्ता हर साल 1 करोड़ पेड़ काटी रहलो छे। अमेजन उत्तराखंड के जंगल कटला सा मानसून भी कमजोर होय रहलो छे। प्लास्टिक गलय नहीं छे बहिन आरु जलाला पर जहरीला गैस निकले छे। कचड़ा के पहाड़ सा मीथेन गैस निकले छे जे कि कार्बन डाइऑक्साइड सा 25 गुना ज्यादा खतरनाक छे। बड़ो बड़ो महानगर में एहनो पहाड़ जरूर दिखी जाए छे। एसी आरु फ्रिज सा निकले वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन परत फाड़ी रहलो छे जेकरा से सूरज के सीधा यूवी किरण आबी रहलो छे। हमरा सिनी का संकल्प लेना होते कि एक पेड़ तक जरूर लगाना छे बहन। नीम आरु पीपल जेहनो पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन दे छे। बारिश के पानी का इकट्ठा करना जरूरी छे तबे पानी के स्तर कम होए सा बचते। बहिन धरती हमरा सिनी का सब दे छे लेकिन हम सिनी होकरा बीमार करी देबे तो हम सिनी कहाँ रहबे। कुल मिलाए करके कहलो जाए तो पेड़ हमरो सिनी के पहलो सांस से लय करी का अंतिम संस्कार तक मदद करे छे बहिन। यही सा पेड़ लगाना बहुत जरूरी छे। तब बातचीत के सिलसिला तभी आरु हेने जारी रहते और हम सिनी एक ठो बढ़िया जहनो मन लुभाए वाला देवी गीत भी सुनबे लेकिन होकरा से पहला ले छे एक छोटो जहनो अंतराल।

0: अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर लोअर पंचायत से ओम राकेश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: यशस्वी मुखिया राकेश कुमार शाह, ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं था, जिसके चलते मेरे यहाँ नागरिकों को बहुत कठिनाई होती थी, प्रखंड जाकर काम कराना पड़ता था। मैंने ग्राम पंचायत में अपने ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया। अब पंचायत सरकार भवन के एक छत के नीचे ही मेरे पंचायत के लोगों का सारा काम हो जाता है। अब प्रखंड जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।

जरूर बहनी सुनिका, सुनिका देवी गीत आनंद आवि गेलो होते। बहिन बेटी तो हमरो सुनिवास तक गौरव छिके, अगर समाज में हुनका पूरा तरह से बराबरी के अधिकार मिली जेते तो उ केकरो सब पीछू नहीं रहते और अपनो माता पिता के नाम भी रोशन करते। समग्र विकास मतलब खाली पढ़ाई नहीं बल्कि शरीर दिमाग हुनर आरु आत्मविश्वास सब कुछ मजबूत करना, बेटी का एहनो बनाना कि वो जिंदगी के हर मोड़ पर अपनो फैसला लिया सका। तो यही से संबंधित एक ठो वार्ता सुन

0: लीजिए, बेटियों का समग्र विकास कैसे करें। वार्ताकार छके प्रगति भारती तो सुने छे।
1: अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। कुटुंब पंचायत से अनीता कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: मैसेल्फ अनीता कुमारी फ्रॉम कुटुंबा पंचायत डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। मैंने अपने गांव में बहुत सारे काम किए हैं, जैसे WPUS प्रोसेसिंग यूनिट और चाइल्ड एजुकेशन और ओल्ड एज पेंशन, नली गली, छठ घाट निर्माण, वुमेन एजुकेशन। गांव में लाइब्रेरी भी खुलवाई हूँ ताकि जो बच्चे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं और घर में वो लोग को लाइट के बिना सुविधा नहीं मिल पाता है, वहाँ बैठ के वो लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और बड़े होकर कुछ बन सकते हैं।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर
3: समग्र विकास का अर्थ है व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास वृद्धि। जिसमें इन तीनों शक्तियों का संतुलित विकास नहीं होता है, उसका व्यक्तित्व अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंचता है। शारीरिक विकास का अर्थ है शरीर का स्वस्थ और सशक्त होना, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के बिना दुनिया के सुख, चैन, धन दौलत किसी काम के नहीं होते। इसलिए कहा गया है, स्वास्थ्य ही संपत्ति है, हेल्थ इज वेल्थ। यदि कोई देश अपना विकास चाहता है तो इसके लिए यह अति आवश्यक है कि वह अपने नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखे। यदि नागरिक स्वस्थ न हो तो कभी खुशहाली नहीं आ सकती, क्योंकि यदि लोग स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो देश के विकास में उनका योगदान क्या होगा। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य की शुरुआत तभी से करनी चाहिए जब शिशु अपनी माता के गर्भ में ही हो। गर्भवती को पौष्टिक भोजन, समुचित आराम के साथ साथ कैल्शियम एवं आयरन की गोली चिकित्सक के सलाह अनुसार लेनी चाहिए। साथ ही शिशु के जन्म के पश्चात उसे स्तनपान जरूर कराना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, माँ का दूध बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी होता है। डेनिश शोधकर्ताओं के मुताबिक स्तनपान करने वाले बच्चे ज़्यादा स्वस्थ और बुद्धिमान होते हैं। बचपन ठीक नींव की ईंट की तरह है। नींव स्वस्थ और मजबूत ना हो तो इमारत की मजबूती पर भरोसा करना व्यर्थ है। बच्चों के जीवन के प्रथम 5 से 8 साल अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः बच्चे को उसकी आयु के अनुरूप शुद्ध और सुपाच्य भोजन खिलाना चाहिए। जिस प्रकार का भोजन बच्चों को दिया जाएगा, उसी प्रकार उसका मन और मस्तिष्क बनेगा। पौष्टिक आहार जितना शरीर के लिए आवश्यक है, उतना ही मानसिक विकास के लिए भी। यदि बच्चों को उचित मात्रा में पौष्टिक आहार का सेवन कराया जाए तो उनके दिमाग का तीव्र विकास होता है। मानसिक विकास में माता पिता और घर के माहौल की अहम भूमिका होती है। मानसिक विकास के लिए बच्चों को अधिक से अधिक प्रसन्न एवं विशुद्ध वातावरण में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए उनका काफ़ी ध्यान रखा जाता है, उसी प्रकार मानसिक विकास के लिए भी बच्चों को एक अच्छा माहौल, प्यार और दुलार की जरूरत होती है। किसी काम के बनने या बिगड़ने पर उनका उपहास या प्रताड़ित न कर उनकी समुचित सराहना को से प्रोत्साहित करना चाहिए। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए पौष्टिक भोजन एवं मानसिक विकास के लिए अच्छे माहौल एवं प्यार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा जरूरी होती है। शिक्षा जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। यह एक व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सहायक होती है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इसके द्वारा लोगों की आर्थिक स्थिति में निरंतर विकास एवं उनके जीवन स्तर में विकास कर समाज में सुख शांति स्थापित करना है। बच्चों के समग्र विकास के इन सभी तथ्यों को मिलाकर देखें तो एक बात समझ में आती है कि हम एक जिम्मेवार अभिभावक की तरह अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। उन्हें अच्छा खाना, अच्छी से अच्छी शिक्षा एवं बेहतर माहौल देने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम इन चीज़ों को बेटियों के समग्र विकास से जोड़ते हैं तो एक स्पष्ट अंतर नज़र आता है कि जितने गंभीर हम घर के बेटों के खान पान, शिक्षा दीक्षा पर होते हैं, उतने बेटियों के लिए नहीं होते हैं। समाज में जिस गर्व से बेटा शब्द बोला जाता है, वो गर्व बेटी शब्द के प्रति

0: नहीं जुड़ता है। दरअसल बात सिर्फ शब्द की नहीं, इसकी जड़ हमारी सोच से जुड़ी हुई है। हमारी पारंपरिक सोच यही है कि बेटा वंश आगे बढ़ाता है, बेटा परिवार चलाता है, बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, जबकि आज की बेटियां इन तमाम दक्यानुषी ख्यालात को गलत साबित कर दिखाया है। फिर भी उनके हक का मान आज भी उन्हें नहीं मिल रहा है। आज भी बेटियों को हम घर का एक अस्थायी सदस्य ना मानकर पराया धन ही मानते हैं, उन्हें बोझ या जिम्मेदारी ही समझते हैं। यदि वो घर के प्रति या अपने अभिभावक के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करती है तो हमें लगता है कि वह बेटों की भूमिका निभा रही है। भारत में लोग धन की प्राप्ति एवं समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, ज्ञान विवेक के लिए माँ सरस्वती की उपासना करते हैं, अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए माँ काली को प्रसन्न करते हैं। लेकिन जब यही देवियाँ लड़की के रूप में उनके घर आना चाहती है तब यह बात उनको नागवार ठहरती है और उन्हें वे गर्भ में ही मौत के घाट उतार देते हैं। देवियां समान ये बच्चियां उनके लिए महज बोझ एक पीड़ा बन जाकर रह जाती है। आज हम चांद से भी आगे जाने की बात करते हैं, दुनिया को मुट्ठी में बंद करने की तकनीक ढूंढ रहे हैं, आधुनिक सोच का ढोल बजाते हैं, लेकिन जब बेटे और बेटी की बात आती है तो सारी उम्मीदें बेटे से लगाते हैं, अपनी सारी जमा पूंजी बेटे की शिक्षा और विकास पर खर्च कर देते हैं, बेटी को पराया धन कहकर उनकी शिक्षा पर अंकुश लगा देते हैं। यह दोहरा मापदंड बेटियों के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं है, जबकि आज शिक्षा और हुनर के बल पर बेटियां भारतीय प्रशासनिक सेवा से लेकर सेना में, शिक्षा के क्षेत्र से लेकर अंतरिक्ष तक में अपना एवं देश का नाम रोशन कर रही है। बालिकाओं के हित के लिए बने योजनाएं और अनेक कार्यक्रम इस बात की पुष्टि करते हैं कि आज अत्याधुनिक 21वीं सदी में भी हम लिंगानुपात से बिगड़ते आंकड़े को सुधार नहीं पा रहे हैं। पोलियो, कैंसर, एड्स जैसी बीमारियों को तो मात दे रहे हैं, किंतु बेटियों के हित में बाधा बनी संकीर्ण सोच को मात नहीं दे पा रहे हैं। हमारे देश में दिन प्रतिदिन कन्या भ्रूण हत्या में बढ़ोतरी हो रही है। सेंटर फॉर रिसर्च के अनुसार लगभग बीते 20 वर्षों में भारत में कन्या भ्रूण हत्या के कारण 1 करोड़ बच्चों जन्म से पहले काल की बलि चढ़ा दी गई है। बेटियों के प्रति अवहेलना की मानसिकता सिर्फ अनपढ़ लोगों में नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे वर्ग में भी व्याप्त है। आज भी संपन्न एवं सुशिक्षित परिवारों में लड़कियों के जन्म होने पर जितनी भी खुशी मनाई जाती हो, लेकिन लड़के की इच्छा उनके मन से खत्म नहीं होती। बालिकाओं के प्रति संवेदनाहीन एवं तिरस्कार जैसी भावना किसी भी देश के लिए चिंताजनक है। भारत सरकार द्वारा देश भर में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा वर्ष 2012 में की। बेटियों के प्रति समाज में जागरूकता और चेतना पैदा करने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि समाज में हर बालिका का सम्मान हो, उसका भी महत्व हो और उसके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए, जिससे प्रत्येक बालिका कुंठा मुक्त एवं सशक्त जीवन जीने का आनंद उठाए। बेशक आज बेटियों के हित में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, किंतु भारतीय परिवेश में बेटियों के प्रति विपरीत सामाजिक मनोवृत्तियों ने बच्चियों के लिए असुरक्षित और असुविधाजनक माहौल का ही निर्माण किया है। योजनाएं तो बन जाती हैं, परंतु उनका क्रियान्वयन जागरूकता के अभाव में सिर्फ कागजी पन्नों में सिमट कर रह जाता है। बेटियों का अस्तित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, सुरक्षा और कल्याण समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता और संकीर्ण सोच की बलि चढ़ जाती है। बेटियों को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे समन्वित प्रयासों के तहत बालिका एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना को सबसे पहले देश के उन राज्यों के उन जिलों में लागू किया गया जहाँ बालिकाओं का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के आधार पर न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना है और इसके लिए बालिका लिंग अनुपात में गिरावट रोकना एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात प्रति 1000 लड़कों की तुलना में 927 लड़कियां थीं, जो 2011 में घटकर 1000 लड़कों की तुलना में 918 लड़कियां रह गईं।
1: बहिन कितना अच्छा जानकारी पैलिए हमर सनी बेटी का समग्र विकास कैसे करें जेकर विषय में बहिन प्रगति भारती द्वारा बहुत उपयोगी जानकारी पैलिए इतना अच्छा जानकारी दे वास्ता बहिन प्रगति भारती का बहुत बहुत धन्यवाद। तक कहने न बहिन एक ठो मनोन सुन लो जाए तो सुने छे।
2: नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से छतरहार पंचायत से अनीता मिश्र बनी है यशस्वी मुखिया।
3: अल्ट्राटेक का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि गाँव बनेगा तो हमारा देश बढ़ेगा तो गाँव बनाने की जो अहम भूमिका है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का है। चाहे मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन बने घाट बने या स्कूल बने बिल्डिंग बने अल्ट्राटेक सीमेंट हमेशा आगे बढ़े क्योंकि गांव के निर्माण में उसका बहुत योगदान है कि वो लोग सहयोगी बन करके सुचारू रूप से सफल बनाया।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया गांव बनेगा देश बढ़ेगा सहयोगकर्ता हिंदुस्तान देश के नंबर।

0: के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से राज भदगाई पंचायत से ओम प्रकाश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: मैं ओम प्रकाश कुमार ग्राम पंचायत राज भटगाई और अपने पंचायत के हर दुख सुख में रहें। हमारे पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है, दलित बस्ती बहुत सारे हैं, जहां सड़क नहीं था वहां सड़क बनवाएं, स्कूल में चार दीवारी करवाएं। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। धन्यवाद
2: बहिन। आज को साथ बस यहीं तक, अगला दिन आरू भी कुछ नया जानकारी के साथ उपस्थित होवे। आपनों से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बहिन दीपा के नमस्कार।
3: दशमलव एक मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में मुख्य रूप से 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा हो रही है। युवा कार्यक्रम विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के लिए उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में एसोचैम, फिक्की, सीएआईटी और सीआईआई सहित प्रमुख उद्योग निकायों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत पारिस्थितिकी तंत्र से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि उद्योग और माय भारत के बीच सहयोग से युवाओं की इस ऊर्जा को राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की ओर निर्देशित करने में मदद मिलेगी। दरभंगा के रैयाम चीनी मिल को फिर से चालू करने के लिए जिलाधिकारी कौशल कुमार ने उच्च स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया है। इस कमेटी में केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, इख पदाधिकारी और जिला संपर्क पदाधिकारी को सदस्य बनाया गया है। यह समिति चीनी मिल को फिर से चालू कराने के उपायों का आकलन करेगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। श्रद्धालु लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यह यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान तेज हवा के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान मुंगेर सदर में सबसे अधिक 20.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भागलपुर जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 31 पर एक बालू लदा हाइवा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियों पर पलट गया। इस हादसे में दो बच्चों समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज भेजा गया है। सीतामढ़ी पुलिस ने रीगा थाना क्षेत्र में ग्राहक सेवा केंद्र से हुई लूट कांड का खुलासा करते हुए 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान एक अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देशी कट्टे, 1 देशी पिस्तौल, 2 कारतूस और लूट में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत सिसोना गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 105 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक और भारी मात्रा में शराब के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर मंडल कारा में बंद एक कैदी की संदिग्ध

परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में कैदी द्वारा आत्महत्या की जाने की बात सामने आ रही है। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीनिया गांव में भूमि विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने NH 327E को जाम कर प्रदर्शन किया। समस्तीपुर जिले के तलसिंह सराय थाना क्षेत्र के चकलोवान गांव से पुलिस ने लूट के मामले में 7 साल से फरार चल रहे एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। दरभंगा में पिछले दिनों एक आभूषण दुकान से लूट के मामले में एसटीएफ की टीम ने मधुबनी जिले के पंडोल से एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शरफुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। वजारत पंचायती राज आज नई दिल्ली में रियासतों के पंचायती राज वजरा के कौमी वर्कशॉप का इनेकाद कर रहा है। पंचायती राज के मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह की सदारत में मुनक़िद वर्कशॉप में ख़ास तौर से 16वीं मालियाती कमीशन की सिफारिशों पर बहस की जा रही है। हमारे नमानिगार ने बताया कि वर्कशॉप के दौरान वजारत मालियात के अखराजात महकमा के जरिए जारी 16वीं माली कमीशन के देही मकामी बल्दियात ग्रांट्स को लागू करने के रहनुमा उसूल पर बहस जारी है। महकमा यूथ प्रोग्राम ने आज नई दिल्ली में माय भारत के लिए सनती तंजीम कॉन्फ्रेंस मुनक़द की। कॉन्फ्रेंस में एसोचैम, फिक्की, CAIT और CII समेत अहम सनती अदारों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का मकसद सनती दुनिया के बहीखाहों को माय भारत सिचुएशनल मिशनरी से वाकिफ कराना और सनती तंजीम, कॉरपोरेट और अवामी जुमरे के अदारों को इस पहल में शामिल होने के लिए मदऊ करना था। मरकजी वजीर खेल डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि सनत और माय भारत के बीच तआवुन से नौजवानों की इस तवानाई को कौमी तरक्याती अहदाफ की तरफ रहनुमाई में मदद मिलेगी। दरभंगा के रैयाम चीनी मिल को फिर से चालू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट कौशल कुमार ने आला सतही जायजा कमेटी की तश्कील की है। इस कमेटी में इक्विटी के रुकन असेंबली मुरारी मोहन झा, जिला कोऑपरेटिव अफसर, जिला एग्रीकल्चर अफसर, गन्ना अफसर और जिला राबता आमा अफसर को मेंबर बनाया गया है। ये कमेटी चीनी मिल को फिर से चालू कराने की तदाबीर का जायजा लेगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल रास्ते से शुरू हो गई है। पूरे मुल्क से लाखों अकीदतमंद 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। अकीदतमंद लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर वाक़े अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने जाते हैं। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन खत्म होगी। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के ज्यादातर हिस्सों में हल्की बारिश की पेशगोई जताई है। इस दौरान तेज हवा के साथ बर्फबारी की भी वार्निंग जारी की गई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान मुंगेर सदर में सबसे ज्यादा 20.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भागलपुर जिले के भवानीपुर थाना हलका के तहत NH 31 पर बालू से लदा एक हाईवा ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियों पर पलट गया। इस हादसे में 2 बच्चे समेत 3 अफराद की मौत हो गई जबकि 12 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज भेजा गया है। सीतामढ़ी पुलिस ने रीगा थाना इलाके में कस्टमर सर्विस सेंटर से हुई लूटपाट का खुलासा करते हुए 5 मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान एक जराइम पेशा ने पुलिस पर फायरिंग करके फरार होने की कोशिश की जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में उसके पांव में गोली लगी। गिरफ्तार मुलजमीन के कब्जे से 2 देसी कट्टे, 1 देसी पिस्तौल, 2 कारतूस और लूट में इस्तेमाल की गई 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अररिया जिला के जौकीहाट थाना हलका के तहत सिसौना गांव में पुलिस ने छापामारी करके 105 ग्राम नशीली अशिया स्मैक और कसीर मकदार में शराब के साथ 2 जराइम पेशों को गिरफ्तार किया है।

मुंगेर डिवीजनल जेल में बंद एक कैदी की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। इब्तदाई जांच में कैदी के जरिए खुदकुशी की जाने की बात सामने आ रही है। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: श्रद्धालु की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
2: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
3: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
1: बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपनी यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीषा।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय

0: दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमेरिकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कारकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए, जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा की नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉर्पोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
3: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज और एफएम के 100

0: पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स।

0: कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश त्रिश और बाल्टी बॉय।
1: अवतार फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की युगल आवाज़ों में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म असली नकली का ये दो गाना।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम चित्रपट से। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद के ठीक 3 बजे हैं। समाप्त होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे इसी मीटर पर हम आपकी सेवा में एक बार फिर उपस्थित होंगे। अभी आज्ञा चाहते हैं।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, मनुष्य स्वभाव से हमेशा सुख की कामना करता है और दुख से दूर भागना चाहता है, लेकिन सच तो यह है कि बिना दुख का अनुभव किए सुख के वास्तविक आनंद को समझा ही नहीं जा सकता। तपती धूप में चलने के बाद ही पेड़ की ठंडी छांव का असली सुख मिलता है। उसी तरह जीवन की कठिनाइयों और दुख से गुजरने के बाद जब सुख का आगमन होता है तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। सुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन का आनंद लेना सिखाता है, जबकि दुख एक मार्गदर्शक है जो हमें भीतर से मजबूत और समझदार बनाता है। तो सुख और दुख की लहरें लिए उसमें गोता खाते हुए आज अपनी सहेलियों से इन्हीं यादों इन्हीं बातों को साझा करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, तो देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, कैसे हैं आप?
0: हम बिल्कुल ठीक हैं। और बताइए आज किस सखी से बात हो रही है हमारी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम है हर्षा खन्ना, वैसे बॉम्बे से हूँ, आजकल मैं अजमेर आई हुई अपने ससुराल, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा फोन लगा है आपको।
0: क्या बात है, तो बताइए हर्षा जी क्या करती हैं आप?
1: देखिए वैसे तो मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं ट्यूटर भी हूँ
0: जी,
1: मैं कविताएं लिखती हूँ और मैं ट्रांसलेटर भी हूँ, मैं इंग्लिश हिंदी मराठी में ट्रांसलेशन करती हूँ
0: जी। ये तो एक बिल्कुल अलग तरीके का काम हो गया, ये उन्हीं के लिए संभव है जो ये दो तीन भाषाओं को बहुत अच्छे से लिख पढ़ सकता है ना?
1: जी जी।
0: तो ये किस तरह से आपने ये सोचा कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए?
1: मुझे ना वैसे भी शब्दों से बहुत प्यार है, और आपको पता है जो हमारा भारत है वो एक बहुत सारी भाषाओं का देश है
0: जी।
1: तो जैसे मैं खुद दिल्ली से हूँ, मेरी शादी जिनसे हुई है वो राजस्थान से है, बॉम्बे में रही हूँ, गुजरात के पास है, तो मैं काफी सारी भाषाएं बोलते मुझे अच्छा लगता है
0: जी जी।
1: इसी तरह से मुझे किसी ने एक बार कहा था कि प्लीज सर मुझे कुछ ट्रांसलेशन चाहिए, तो इंग्लिश हिंदी करते करते मैंने मराठी भी शुरू किया
0: जी।
1: तो मराठी टू हिंदी इंग्लिश भी करती हूँ मैं
0: जी। रेडियो सुनना पसंद करती हैं आप?
1: रेडियो ने तो मतलब बचपन से लेकर अब तक हमें वो रखा है कनेक्टेड सारी दुनिया से, खुशी में भी दुख में भी यही याद आता है।
0: बिल्कुल, और यही सवाल भी मैं आपको करना चाह रही थी कि सुख और दुख को आप कैसे देखती हैं?
1: देखिए अगर फिलोसफिकल उससे कहा जाए तो सुख और दुख जो है वो रात और दिन की तरह है, एक के बाद दूसरा आता ही है, और आपके नजरिए पे भी डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या है। आप महलों में भी दुखी हो सकते हैं और झोपड़े में भी सुखी हो सकते हैं।
0: ये तो बहुत सटीक बात की आपने, और हर वक्त जो भी परिस्थिति सामने आए तो उसको खुशी खुशी अपनाना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: और पॉजिटिव नजरिया रखते हुए हर्षा जी बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? हमें बेहद खुशी है आपसे बात।
1: मुझे ना फिल्म खिलौना का एक गीत जो है सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए
0: जी,
1: वो मैं सुनना चाहूंगी
0: जी जी। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: आलिया बानो बोल रही हूँ, गुजरात से।
0: आलिया बानो गुजरात से?
1: हाँ
0: जी। आलिया बानो, कैसी हैं आप?
1: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और बताइए, क्या चल रहा है इन दिनों?
1: टंकी नवा के पड़ती हूँ, घर पर ही रहती हूँ। घर के जो काम होते हैं ना, छोटे मोटे, वो सब करवा देती हूँ।
0: तो कभी ऐसे बाहर जाना होता है, कहीं घूमने फिरने आप परिवार के साथ भी जाती हैं?
1: हाँ जाती हूँ ना, परिवार के साथ ही।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात
1: हाँ
0: है।
1: लेकिन मेरा हाथ पकड़ना पड़ता है,
0: हाँ वो
1: मुझे
0: तो है।
1: दिखाई नहीं देता है ना।
0: जी, ये तो सहयोग
1: हाँ
0: परिवार का मिलता ही होगा आपको। और ये
1: हाँ
0: मुझे जी
1: मेरी अम्मी है, मेरी दीदी है। मेरी दीदी है ना, मेरी अम्मी, वो
0: जी
1: मेरा बहुत साथ देती है, मेरा हाथ पकड़ती है। मुझे सबसे कल मतलब घर में तो मैं खुद ही चल लेती हूँ। मुझे वॉशरूम मालूम है, सब मालूम है, कहाँ
0: जी
1: जाना है, कैसे जाना है। मैं घर का तो सब जानती हूँ, लेकिन बाहर कहीं जाना होता है ना, तो मुझे ये लोग हेल्प कर देते हैं।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। तो जब आप घर में चलना फिरना कुछ काम करना होता है, तो आप कैसे अंदाजा लगाती हैं? यानी कि आप कदम गिन लेती हैं, या आपको एक रोजमर्रा में आपको एक अंदाज हो गया है कि भाई बाएं तरफ ये है, दाएं तरफ ये है, किस तरह से कर पाती हैं आप?
1: नहीं, मुझे तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो मैं रहती हूँ ना, तो मुझे अंदाजा हो गया है कि किस तरफ क्या है।
0: जी
1: मतलब आना जाना होता है ना मेरा। अभी जैसे कि मैं आपसे जो बात कर रही हूँ ना,
0: जी
1: ऊपर वाले फ्लैट में कर रही हूँ।
0: अच्छा।
1: हमारा एक माले का घर है ना, वहां कर रही हूँ, तो
0: जी
1: मैं
0: जी
1: नीचे से यहाँ भी आ जाती हूँ।
0: अच्छा, मतलब आप पहली
1: चल
0: मंजिल नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और ऊपर ऊपर की मंजिल अपने आप कर पाती
1: हाँ,
0: हैं ये सब?
1: अब थोड़ा आप कर लेती हूँ। एक बार मुझे अगर अंदाजा हो जाए ना कि किस तरह जाना है, किस तरह जाना है, किस तरह आना है, तो मैं अपना आप ही सब कर लेती हूँ।
0: बहुत सुंदर बात है। मुझे ये बताइए आलिया जी, कि सुख और दुख जीवन में तो सबके आते हैं, है ना? कठिनाइयां भी आती हैं, गम भी आते हैं, खुशियां भी आती हैं। आप इसको किस
1: बहुत
0: तरह
1: खुश,
0: से लेती हैं?
1: मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। ऐसे तो ऊपर वाले ने मेरी आंखें छीन ली है मैडम, मुझे बहुत बुरा लगता है कभी कभी, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि जिस हाल में खुदा रखे है, उस हाल में ही रह लेना चाहिए। मैं ऊपर वाले से शिकवा भी करूंगी तो क्या हासिल होगा मुझे शिकवा करके भी। हाँ
0: जी
1: लेकिन ऊपर वाले से मैं दुआ जरूर मांगती हूँ। कभी कभी मुझे रोना भी आ जाता है ईद त्योहार पर, जब सब लड़कियां बॉयफ्रेंडों के साथ, सहेलियों के साथ घूमती है, तो मुझे रोना भी आ जाता है कि मेरे
0: जी
1: साथ ही क्या हो रहा है। लेकिन
0: जी
1: फिर मैं अपने आंख में आंसू नहीं आने देती, ऊपर वाले से शिकवा नहीं करती। मैं ऐसा
0: देखिए
1: सोचती हूँ कि ऊपर वाला जिस हाल में रखे, उस हाल में ही रह
0: जी
1: लेना
0: जी
1: चाहिए।
0: तो ये देखिए कितनी हिम्मत की बात है कि आपके पास आंखें नहीं है,
1: हाँ
0: फिर भी हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हैं। आपकी बातें सुन के
1: हाँ
0: हमें बहुत अच्छा लगा, और हमें उम्मीद है कि हमारी सारी सखियां जो सुन रही होगी ये कार्यक्रम, अगर जिंदगी में छोटी मोटी कठिनाइयां आएंगी तो अब शिकायत तो नहीं करेंगी। लेकिन हम आलिया जी आज जानना चाहते हैं, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैडम, बारिश का मौसम आया है, तो मुझे बारिश का गाना सुना दीजिए। अंदाज फिल्म का, अंदाज
0: अंदाज फिल्म
1: फिल्म
0: का
1: है ना।
0: जी
1: हाँ, आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का।
0: बिल्कुल। तो चलिए सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ पहुंचे आपके पास कॉल का इंतजार करते हुए कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं अमिता बोल रही हूँ, मतलब मेरा कॉल लग गया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।
0: जी हाँ अमिता जी, आपका कॉल लग गया है।
1: जी
0: तो बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं पटना से बात कर रही हूँ।
0: पटना से आप क्या करती हैं, कैसी हैं, क्या जीवन में क्या करती हैं, गृहिणी हैं या कुछ और काम करती हैं?
1: मैं एक लेखिका हूँ।
0: क्या बात,
1: शायरा हूँ
0: जी।
1: जी एक कवित्री हूँ। मेरी किताब भी है लहरें कशिश, मेरा पेन नेम है लहरें।
0: पेन नेम है आपका लहरें?
1: लहरें, और मेरी किताब जो प्रकाशित हुई है उसका नाम है लहरें कशिश।
0: ये बताइए कि किस तरह से शुरुआत हुई आपकी लिखने की?
1: मैं जब 5-6 स्टैंडर्ड में थी तो मुझे कविता पढ़ने का बहुत शौक था और मैं लिखती भी थी
0: जी,
1: थोड़ा बहुत लिखती थी। शुरू में चिड़िया पे, कौवे पे, सब पे लिखती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो थोड़ी और ज्यादा कविता में, शायरी में रुझान आता गया। फिर कुछ शायरों को पढ़ा और फिर धीरे धीरे फिर मेरी डायरी, मेरी कलम और मैं, तीनों शुरू हो गए, साथ बैठ गए। मगर आजकल ये मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ है, तो फिर एक दो कविताएं मैंने डाली तो लोगों को पसंद आने लगी, तो फिर मैं और लिखने लगी, कविताएं भी लिखना चालू की मैंने, शायरी भी, फिर प्रोग्राम में भी जाना चालू किया, होस्टिंग भी करना चालू किया।
0: अरे वाह, तो आपकी रचना तो हम जरूर सुनेंगे। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सुख और दुख, इसे आप किस तरह से लेती हैं जीवन में?
1: देखिए दीपा जी, जैसे हम शुरू से स्कूल में तब हमें पढ़ाया जाता था, तब हम रटते थे सिर्फ सुख और दुख सिक्के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं
0: जी।
1: लेकिन अब जब उसे अनुभव में मैं लेती हूँ तो मैं ये मानती हूँ कि दुख एक ऐसी सीढ़ी है ना जो हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाती है, संवेदनशील बनाती है, और जब हम इस सीढ़ी को पार कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा एक नया जन्म होता है। मैं कहना चाहूंगी कि दुख जो है ना वो अध्याय एक जो इंसान को एक नया जन्म देता है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब आपसे हम एक आपकी रचना भी सुनना चाहेंगे।
1: अब जैसे कि आप मुंबई से हैं और मुंबई की तीन चीजें बहुत फेमस है,
0: तो बताइए वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि मुंबई की प्रसिद्ध हैं?
1: जी, मुंबई की लहरें, मुंबई का वड़ा पाव और मुंबई की बारिश।
0: ये
1: बात क्या मैं सही बोल रही हूँ?
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो
0: जी
1: क्या मैं आपकी मुंबई की बारिश मेरे कुछ सुना सकती हूँ?
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद आप कुछ बूंदे यहाँ भी भेज दीजिए हमारे पटना में।
0: हम तो चाहते हैं हर तरफ बारिश और ये रिमझिम फुहारे हों, पटना में भी बिल्कुल बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन तब तक आपकी रचना को आप विविध भारती की स्टूडियो तक पहुंचाइए।
1: जी बिल्कुल। मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी एक बारिश है।
0: जी,
1: जिंदगी एक बारिश है, झूम कर इसे प्यार कर, मुट्ठी में क्या कैद करेगा, बस बूंद बूंद का एहसास कर। महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, हर दिन को यूं दुश्वार न कर, मुकम्मल होंगे तेरे भी ख्वाब, इतना तू इस पे एतबार कर। क्यों दूर से ही तू तक रहा, क्यों दूर से ही तू तक रहा, हाँ छुपे हैं लहरों में कई भंवर, पर साहिल तू है, किनारा भी तुझ में, अपनी मौजों से बस तू प्यार कर। नींद ही तो टूटती है हरदम, नींद ही तो टूटती है हरदम, ख्वाबों से प्यार बेशुमार कर, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, थम थम के चल पर और इंतजार न कर, पर और इंतजार न कर।
0: बहुत सुंदर, बहुत बहुत
1: हमें
0: उम्मीद है कि जितनी भी हमारी सखियां सुन रही हैं उन्हें भी ये आपकी रचना बेहद पसंद आई होगी, हमें भी बहुत अच्छी लगी, और एक प्रेरणा भी मिल रही है कि हाँ ये लहरें कभी सुख की आती हैं, कभी दुख की आती है। और अब बताइए अमिता जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक पुरानी फिल्म है छोटी सी बात, उसका ये गाना है, न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, ये वाला गाना सुनना चाहूंगी।
0: ये सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम सुनीता अशोक राव देशमुख है। मैं अमरावती जिले से बात कर रही हूँ।
0: अमरावती से सुनीता जी, बताइए सुनीता जी, क्या करती हैं आप?
1: मैं मैम खाना बनाने का काम करती हूँ।
0: अच्छा, यानी टिफिन
1: घर में?
0: सर्विस।
1: हाँ, घर में खाना बनाने को जाती। मैं रोटी ही बनाती सिर्फ। 4-5 घर के खाना बनाती दिन में, फिर बाद में दोपहर में आने के बाद में सिलाई काम करती।
0: अच्छा, यानी आप घर में जाती हैं, दूसरों के घर जाती हैं और वहाँ पे
1: हाँ,
0: जाके।
1: दूसरे के घर जाकर रोटी बेल के आती, फिर
0: अच्छा,
1: बाद में घर का सिलाई काम करती, घर के काम।
0: यानी कि घर में जो लोग व्यस्त हैं वो नहीं अपना समय उतना दे पाते हैं, तो आप ये मदद कर
1: हाँ,
0: देती हैं कि
1: सब
0: आप
1: जॉब
0: जाकर।
1: करने वाले हैं ना यहाँ पे, टीचर
0: जी जी
1: है तो टीचर क्या ही सब काम करती मैं।
0: जी और घर पे आकर के भी आप आराम नहीं करती हैं, आप फिर से बिजी हो
1: नहीं
0: जाती हैं।
1: रुके।
0: जी
1: हाँ बिजी है, पूरा शेड्यूल बिजी है।
0: तो व्यस्त रहना अच्छा रहता है ना। और हमें ये भी बताइए कि दुख और सुख, ये इन दोनों चीजों को आप जीवन में कैसे देखती हैं?
1: मेरे पीछे तो दुख ही दुख है मैडम। अभी कैसा, मेरा भाई और मैं दोनों ही रहते हैं, ज्यादा नहीं टेंशन लेते हैं हम काम का। थोड़ा वो जितना अपने को है, जितने लगते अपने को रोजी,
0: जी
1: उतनी कमाते बस। ज्यादा करके भी अपने तबीयत देखने वाला कोई नहीं है ना पीछे। मेरा भाई और मैं, हम दोनों ही रहते हैं। माँ पिताजी नहीं है, मेरे घर वाले गुजर गए। हाँ तो भाई के ही रहती मैं।
0: तो देखिए, कठिन से कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं, फिर भी आप बिल्कुल खुशी के साथ और
1: खुशी
0: सकारात्मक
1: के साथ
0: सोच रख के
1: बताते
0: आप आगे बढ़ रही हैं, अपने आप को व्यस्त रखती हैं और खुश रहती हैं, दूसरों की भी मदद करती
1: मैम।
0: हैं। और
1: मैं मेरी सहेली के नाम लेती।
0: जी ले लीजिए।
1: हाँ बबीता ठाकुर और एक शहनाज शेख है।
0: जी, उन्हें भी हम नमस्कार करते हैं और चाहेंगे कि अगली बार वो भी हमें कॉल करें। अब बताइए सुनीता जी कि आप कौन
1: हाँ
0: सा
1: हाँ
0: गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैंने साउथर्न फिल्म का कौन सा भी गीत सुना मैम।
0: चलिए तो सुनते हैं आप ही के पसंद का ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म, तो जानते हैं अब किस सखी का लगने वाला है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं गुजरात बड़ौदा से सुहाना बात कर रही हूँ मैडम।
0: सुहाना, क्या बात है, गुजरात से अभी एक और कॉल आया था। आप बताइए क्या चल रहा है जीवन में, कैसी हैं आप?
1: जी मैडम, अभी तो जीवन में सब ठीक ठाक है। बरसात आता है नहीं आता है, बरसात नहीं आता है अभी, गर्मी बहुत है।
0: सुहाना जी देखिए, प्रकृति का नियम है, इतनी गर्मी हमने सही है ना, तो बरसात तो अवश्य आएगी, है ना?
1: मुझे बहुत पसंद है लेडी, और मुझे आपसे बात करने की भी बहुत खुशी लग रही है मैडम। पहली बार बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैडम।
0: जी हम आपकी खुशी
1: बयां नहीं कर सकती।
0: जी आपकी खुशी को हम बिल्कुल समझ रहे हैं, और हमें भी उतनी ही खुशी है जितनी सुहाना आपको खुशी है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैडम आपके पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए।
0: चलिए तो सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं सुशीला महेश्वरी बोल रही हूँ भोपाल से।
0: सुशीला महेश्वरी भोपाल से?
1: जी
0: जी सुशीला जी, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, और आपसे बात हो पाई है तो और अच्छे हो गए हम। अपने बारे में कुछ बताइए सुशीला जी।
1: हाँ मैं घर में रहती हूँ, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ।
0: तो विविध भारती के कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: हाँ जी, और आप लोग की सबकी आवाजें बहुत अच्छी लगती है मुझे।
0: जी विविध भारती से ये प्रेम ही है कि आप और हम जुड़े हुए हैं।
1: सबसे
0: और
1: पहला प्यार विविध भारती हमारे लिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं और अभी तक सुन रहे हैं।
0: जी तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे प्यार से शुरू तेरे प्यार से खत्म।
0: जी
1: ये वाला गाना सुनना है मुझे।
0: जी बहुत सुंदर गीत है, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते, किस सहेली से हमारी बात हो रही है?
1: मैं अंजू बोल रही हूँ, वाराणसी से।
0: वाराणसी से अंजू जी। अंजू जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: वैसे मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, ईयर मेरा जयपुर है, शादी मेरी बनारस हुई है
0: जी।
1: बनारस में हूँ और एक तरह से गृहिणी
0: हूँ। देखिए ना, गृहिणी का काम भी कोई कम नहीं होता। सब तो अपने काम को लेकर के घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पीछे घर को संभालना, घर को देखना, हर चीज की व्यवस्था करना, ये गृहिणी का काम होता है। अब ये भी बताइए मुझे अंजू जी, रेडियो सुनना पसंद है? आप विविध भारती सुनती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, विविध भारती ही सुनती हूँ ज्यादातर।
0: एक मुझे बात बताइए, सुख और दुख, इसको आप किस तरह से लेती हैं?
1: सुख और दुख तो आना जाना लगा ही रहता है हर की जिंदगी में, लेकिन हाँ मैं एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ कि हाँ जब दुख आया तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा, ये पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ
0: जी
1: जिंदगी में
0: जी। तो ये बात हम सबको समझने की और सीखने की है कि भाई अगर एक चीज आई है तो दूसरा भी आएगा, यानी कि दुख अगर आया है तो सुख भी आएगा, है ना जी। और अब जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती है आज?
1: मैं दिल एक मंदिर का गाना है, हम तेरे प्यार में सारा आलम को भेजे।
0: चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, कौन सी सहेली से हमारी बात हो रही है आज?
1: वैष्णवी पांडुरंग मोरे।
0: कहाँ से बात कर रही है वैष्णवी आप?
1: वारंगा फाटा, जिला हिंगोली।
0: वारंगा फाटा से। तो बताइए वैष्णवी, क्या करती हैं आप?
1: मैं पढ़ती हूँ।
0: वैष्णवी, आपने अभी कौन सी कक्षा की एग्जाम दी? सेवेंथ की।
1: हाँ।
0: कैसी हुई परीक्षा आपकी?
1: बहुत अच्छी हुई।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपने जितने कॉन्फिडेंस से ये बोला ना, बहुत अच्छी थी। मतलब कि सारे पेपर्स आपने बहुत अच्छे से लिखे हैं, है ना? तो रेडियो हाँ। सुनती हैं आप?
1: हाँ सुनती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई के अलावा मतलब रेडियो भी सुनती हैं, और क्या करती हैं? क्या क्या शौक है आपके?
1: गाने गाने का भी शौक है, खेलने का भी शौक है।
0: कौन सा खेल पसंद करते हो आप?
1: खो खो।
0: खो खो खेलते हो? तो और भी आपकी सखियां होती होंगी जिनके साथ आप खेलती होंगी खो खो, है ना?
1: हाँ हाँ।
0: फिर घर आकर के शाम को अपना होमवर्क खत्म करना, पढ़ाई करना, ये सब चलता होगा।
1: हाँ।
0: तो वैष्णवी बताओ, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हो आप?
1: छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी।
0: तो चलिए सुनते हैं अनाड़ी फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: विजया रानी से।
0: कहाँ से बात कर रही है विजया जी?
1: अभी तो मैं हैदराबाद में हूँ, लेकिन रहती हूँ मैं पूर्णिया बिहार में, बेटे के पास आई हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। तो विजया जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी में एचओडी के पोस्ट पर मैंने काम किया है। अब मैं 5 साल पहले, आज अब 5 साल पूरा हो जाएगा मेरा, मैं रिटायर हो चुकी हूँ। दर्शन शास्त्र की अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर आप रही हैं?
1: हाँ, और मैंने 42 वर्षों तक महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी की सेवा की है, बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों के साथ रही हूँ।
0: तो विजया जी, मैं ये जानना चाहूंगी, आपने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया होगा, आपने बहुत सारे अनुभव उस वक्त लिए होंगे, तो आपका क्या अनुभव रहा उस वक्त जब आप पढ़ाया करती थी, जब आप कार्यरत थी?
1: तो मेरा अनुभव ये रहा कि मैंने सिर्फ विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट नहीं समझा, उनको मैंने अपनी बेटी की तरह पढ़ाया, जितने बच्चे आते गए सबको, और मैं उनसे हृदय से जुड़ जाती थी। ये मेरी कमजोरी कहिए या जो कहिए
0: जी, ये तो कमजोरी हो नहीं सकती, ये तो ताकत है एक टीचर।
1: और इतना उनको शिक्षा देने के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ मैं उनका पर्सनल प्रॉब्लम भी सुनती थी,
0: क्योंकि आप टीचर,
1: और उनका जो सॉल्व कर सकती थी मैं कोशिश करती थी उसके प्रॉब्लम को सुनूं और उसको उस तरह से मुक्त रखूं जो उनके दिमाग में चल रही है बातें, घर को लेके, अपने माता पिता को लेके, ताकि उसका पढ़ने में मन लग सके, वो अपने आप को कंसंट्रेट कर सके पढ़ाई। हाँ, ये हुआ मेरे साथ। मैंने बच्चों को समय भी दिया, सिर्फ पढ़ाया नहीं
0: जी,
1: और मुझे इसका संतोष है कहीं ना कहीं।
0: बहुत अच्छी बात है, संतोष ही परम धन कहिए या सुख कहिए। साथ में मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप दर्शन शास्त्र की शिक्षिका हैं, तो सुख और दुख को आप किस तरह लेती हैं?
1: तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग ज्यादातर संवेदनाओं के स्तर पर जीते हैं
0: जी।
1: खुशियों के क्षण में भी हम अपना आपा खो देते हैं और दुखों के पल हमें छिन्न भिन्न कर डालते हैं
0: जी,
1: इतना तोड़ डालते हैं कि ताउम्र हम उसके आघात से उबर नहीं पाते
0: जी।
1: सुखों के क्षणों को तो हम भुला देते हैं लेकिन दुख हमारी अंतरात्मा तक झकझोर जाता है
0: जी।
1: अब यहाँ पर मैं रुक कर सोचती हूँ कि सुख दुख के झंझावातों में हम खुद को कैसे नियंत्रित रख सकें
0: जी, यही हम जानना चाहते हैं, और हमारी सखियां भी अवश्य जानना चाहती होंगी कि जब अति कठिन परिस्थितियां आए या बहुत ज्यादा खुशी के पल आ जाएं, तो अपने आप को एक बैलेंस बना के कैसे रखें, और जो आप बताना चाह रही है ना कि नियंत्रण कैसे करें, वो भी बताइए।
1: नहीं ठीक है, तो मेरा मानना है हम लोग सब स्थित प्रज्ञ तो नहीं हो सकते ना, लेकिन हमारा अनुभव कहता है कि न सुख शाश्वत है और न दुख
0: जी।
1: थोड़ा तो हम तटस्थता का अभ्यास करें, न्यूट्रलिटी का, पर न्यूट्रल हो जाए अगर कुछ क्षण के लिए, और यह समझ लें कि सुख और दुख हमेशा नहीं रहेंगे। आज दुखों की घड़ी आई है तो कल सुख भी हमारे द्वार पर आएगा
0: जी, यानी ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए,
1: अपनाना होगा, और जीवन तो निर्झर की तरह बहता ही चला जाएगा और सुख दुख तो उसकी हिलोरे हैं
0: जी। बिल्कुल सही, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में सुख और दुख की परिभाषा समझाने की कोशिश की है विजया जी। तो विजया जी बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज आप?
1: ममता फिल्म का, रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके गली बनके सभा बागे वफा में।
0: तो चलिए सुनते हैं ये आप ही की पसंद का सुंदर गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: किससे बात हो रही है हमारी?
1: शांति राजपूत से जी।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: जबलपुर
0: जी। शांति जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: ठीक हैं जी मैम, आप कैसी हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और क्या चल रहा है इन दिनों, क्या कर रही हैं आप?
1: कुछ नहीं मैम, घर में रहते हैं, घर ही का काम, खाना पीना, हाउस वाइफ घर ही रहते हैं कुछ
0: जी
1: नहीं।
0: हमारी कई सखियां कहती हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, हाउसवाइफ हैं, लेकिन हाउसवाइफ का भी काम बहुत अहमियत वाला होता है। हर काम, हर चीज आपको देखना होता है, हमें देखना होता है ना? जी। घर के काम के अलावा और क्या करना पसंद है आप?
1: और मैं विविध भारती के रात में भी सुनती हूँ, 12-1 बजे लोग सब कार्यक्रम, दोपहर में भी सुनती, सुबह भी सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे।
0: यानी कि घर के काम करते करते आपका रेडियो चलता रहता है?
1: हाँ, मैं चालू कर लेती हूँ मोबाइल से, वो सुनती रहती, काम भी करती रहती।
0: हाँ, तो मन प्रसन्न रहता है और काम भी होता रहता है ना?
1: हाँ जी जी
0: जी। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं दिल के अरमां आंसुओं में बह गए निकाह पिक्चर का।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। सखियों, आज हमने जाना जीवन के दो पहलुओं के बारे में, यानी सुख और दुख के बारे में। कई सारे जज्बात यहाँ पे साझा हुए, कुछ हुई मन की बातें, आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबान। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240024662, अंग्रेजी में 02240024662। एक और नंबर है 02228670288, अंग्रेजी में 02228670288। 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं, उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से हमारी सहयोगी रही भावना सिंदल, संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मनीष वैद्य की कहानी सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी। वाचन स्वर ममता सिंह का है।
1: प्रेम परछाई है, नहीं वो नदी के तटों की तरह है, कभी न मिल पाने को अभिशप्त। प्रेम हमारे भीतर के नमक की तरह है, नहीं प्रेम तेजाब की तरह है, भीतर तक सब कुछ खत्म कर देने वाला। प्रेम कोमल अनुभूति है, नहीं वो विद्रोह का उद्घोष नाद है। लड़की के मन में खलबली मची है, उसके चारों तरफ घुप अंधेरा है। भीतर के अंधेरे में घुल रहा है बाहर का अंधेरा, वो उस अंधेरे की आदि थी, वो इसे जानती थी, वो अंधेरे

0: अंधेरे से नहीं डरती थी, वो किसी से नहीं डरती थी। वो नदी से मछलियां ले आती, शिकार करती और गोफन तान कर ऊंचे पहाड़ों से फल गिरा लेती। नदी की धार के खिलाफ तैरती हुई मछलियां उससे पीछे छूट जाती। वो अलबेली, अल्हड़, चुलबुली और अपनी ही धुन की थी, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग। उसकी सहेलियां भी उसकी तरह नहीं थी, थोड़ी थोड़ी करीब, फिर भी उनकी आपस में दोस्ती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्ती अपनी नानी से थी। नानी थी भी ऐसी, उम्र का फासला उनकी दोस्ती में कभी बाधा नहीं बनता। कभी नानी उसकी उम्र की हो जाया करती तो कभी वो नानी की उम्र में दाखिल हो जाया करती। वो बचपन से ही नानी के पास रहती थी। उसके माँ पिता कई साल पहले चल बसे थे, तब वो बहुत छोटी थी, इतनी कि उसे ठीक से अपने माँ पिता का चेहरा भी नहीं याद। नानी के गांव के ठीक पीछे पहाड़ था, इतना पास कि जैसे गांव उसकी गोद में हो। पहाड़ से कूदती फांती नदी गुस्से में बहुत तेजी से बहती तो कभी मंद मंथर सी थकी मांदी किसी बुढ़िया की तरह। वो एक पहाड़ी नदी थी, पहाड़ों से फिसलकर मैदानों में बड़ी नदियों से मिल जाने वाली। जंगल के बीच चारों ओर गांव कुछ इस तरह ढका था कि बहुत पास आने पर भी उसका कोई चिन्ह नजर नहीं आता था। सागवान, पलाश, तेंदू, महुआ, शीशम के बड़े बड़े पेड़ों और झाड़ी नुमा रास्तों के बीच से यहां तक एक पगडंडी पहुंचती थी। यहां लोगों को रात बेरात चीते नाहर की गुर्राहट भरी दहाड़ सुनाई देती तो कभी रीछ की आवाजें, पर ये लोग उन आवाजों से डरते नहीं थे। वो गांव भी नहीं था, गांव जैसा कुछ था। गांव में बहुत से मकान होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और वे खेती या दिगर काम करते हैं। वहां कुछ दुकानें होती हैं, स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाएं भी हो सकती हैं, पर वो ऐसा नहीं था। वो छोटी सी बस्ती, कुल 20-22 टपरियां होंगी और 100 के करीब लोग। किसी फलिए की तरह गांव बाकी दुनिया से खोया हुआ था। हाँ, सरकारी नक्शे में जरूर जंगल के बीच सुई की नोक की मानिंद था। नदी से कुछ दूरी पर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटे से ओटले पर पत्थर की एक मूर्ति थी। गांव के मंदिरों और दीगर जगहों पर अमूमन कई मूर्तियां हुआ करती हैं, पर ये उन मूर्तियों से बिल्कुल अलग थी। ये एक औरत का बुत था, वो देवी की तरह नहीं थी। देवी की मूर्तियों के हाथों में हथियार या फूल जैसी चीजें होती हैं। ये पत्थर की औरत उसी तरह थी जैसे यहाँ की दूसरी औरतें। बुत में वो मुस्कुराती हुई दिखती, मानो कुछ ही पलों में खिलखिलाकर हंस पड़ेगी। किस राम के इंतजार में है ये पत्थर की अहिल्या? उस लड़की के लिए वो बुत बचपन से ही किसी रहस्य की तरह था। गांव में कोई शादी करके लौटता है तो नए जोड़े को सबसे पहले यही लाया जाता। लाल ध्वजा, घी का दिया, ताजे फूल, अगरबत्ती का धुआं, लोबान का धुआं, नारियल, दानी चुनरी, ढोल ढमाकों के साथ सब यहाँ पूजा करते हैं। उनके साथ औरतों का हुजूम होता। उसने नानी से कई बार पूछा था, नानी हमेशा ही उसे टाल दिया करते। उसे नानी ने कई कहानियां सुनाई, पर ऐसा क्या था इस कहानी में कि उस बुत की बात आते ही वो डरने लगती। किसी अनहोनी की आशंका में उसकी आंखें फटने लगती। नानी उसे बच्चों की तरह अपने अंक में भर लेती और उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाती रहती जब वो डरती। वे शायद तब किसी तूफान से गुजर रही होती, सूखी नदी में तपती रेत का दरिया पार कर रही होती। चंदा नाम था उसका। नानी ने पहली बार उसे देखा था तो सहसा ही ये नाम उसके मुंह से निकल आया था, उसके लिए अतखिला चांद का टुकड़ा। इस तरफ काले लोगों और अंधेरों के बीच रहने वाली नानी को उसकी कंचन सी देह से नया उजाला दिखा था। तब नानी उसकी कंचन काया से डरी थी। उसकी माँ को कहा था, ज्यादा अटोपनी पड़ेगी इसे, सुंदर लड़कियां माँ बाप के लिए परेशानी का सबब होती हैं। हाँ, उसके आने पर आधी रात पीतल की थाली बजाई गई थी। अंधेरी रात में दूर तक थाली की आवाज गूंजती रही। नानी को तब क्या मालूम था कि आगे चंदा को उसे ही अटोपना पड़ेगी और उसे ही अतिरिक्त सावधानी भी रखनी होगी। चंदा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके अनुपात में नानी की चिंताएं भी बढ़ने लगी थी। नानी कहती, ये दूसरों की अमानत है, इसका शादी ब्याह हो जाए तो मेरी चिंता खत्म, फिर मैं चैन से मर सकूंगी। उसने बचपन से बस नानी को ही देखा था, वही उसके लिए माँ बाप थी। उसने अपने बचपन की सारी चाहते नानी को ही पूरे करते देखा था। नानी कभी उस पर चिढ़ जाती तो कुढ़ने लगती, तार सी लंबी हो चली है पर अक्कल बच्चों जैसी, जब देखो घोड़ी जैसी दांत पिलकाती रहती है, उलल बछेरी कहीं की, सारा दिन यहाँ वहां घूमती रहती है। अरे जमाना बहुत खराब है, कल को कुछ हो गया तो कहां मुझ पाऊंगी मैं। पर नानी की डांट जैसे ठंड की धूप, भीतर ही भीतर उसमें अपनेपन की गुनगुनी आंच होती है।
1: नानी

नानी को जैसे तैसे मना ही लेती। कुछ ही पलों में नानी भी भूल जाती तो उसे कब याद रहता। उम्र बढ़ने के साथ लड़की की देह से चंदन की खुशबू का सोता फूटने लगा। वो चंपा की तरह लरजती थी, तितलियों की तरह हल्की होकर फूलों के कानों में कुछ कहती तो वे खिलखिलाने लगते। वो नदी के पास जाती तो नदी उससे अटखेलियां करने लगती। पहाड़ की ओर जाती तो उसकी घाटियों में रंग बिरंगे फूलों का गुलिस्ता खिल उठता। वो खिलखिलाती और हर सिंगार झड़ने लगते। उसकी सांस की लय पर पेड़ सरसराने लगते। वो पूरब की ओर देखती तो धूप खिल उठती। वो जंगल की भाषा जानती थी और जंगल उसकी भाषा पहचानता था।

नानी से कहानी सुने बिना कोई रात वो सोती नहीं थी। नानी गजब की किस्सागो थी। किस्सागो उनकी तासीर में थी। वो ऐसे सुनाती कि चित्र चलने लगते। वे उस समय में दाखिल हो जाया करती मानो किरदार खुद अपनी बात कह रहे हों। नानी की कहानियां जैसे उसकी लोरी थी। नींद की घाटियों में वो उन किरदारों के बीच बहती रहती, घूमती रहती। वे किरदार सपनों में अक्सर उससे बातें किया करते। कई बार ये भी होता कि किरदार उसके भीतर इस तरह बस जाते कि वो उनके प्रभाव से बहुत दिनों तक बाहर ही नहीं आ पाती। तब वो बेचैन सी नदी के तट पर जा बैठती, जैसे नदी से कुछ पूछ रही हो, गुमसुम सी, अनमनी और उदास। भीतर ही भीतर सुलगती हुई घंटों तक इसी तरह बैठी रहती। नानी की कहानी सुनने से पहले दो शर्त होती। शर्त नहीं तो कहानी नहीं। चंदा हर बार ये शर्तें मानती। पहली शर्त थी हुकारा, मतलब हाँ में हाँ मिलाते चलो। जब वे कहानी कहती तो जरूरी था कि सुनने वाला कुछ देर में हाँ हाँ कहता रहे। वे कहती कि हुंकारा टूटा तो कहानी की डोर भी टूटी।

0: जगमग तारे दो तारे नौ तारे सौ तारे जगमग तारे हर तारा है शरारा।
1: नानी अक्सर छोटी कहानी सुनाती थी, पर कभी कभी कहानी लंबी हो जाती। नानी कहती कि ये उसके हाथ में नहीं है कि किसी कहानी को कहाँ खत्म करें, ये तो किरदार ही तय करते हैं, कहने वाले का उन पर कोई जोर नहीं चलता। नानी के देह के स्पर्श की आंच महसूस करती और इस आंच में नानी की तरह वो भी घुलने लगती। नानी की देह में नमक सी खुशबू थी जो उनके किरदारों में से उनमें आई होगी, लोक कथाएं हो या सीता उर्मिला मंदोदरी अहिल्या द्रौपदी कुंती गांधारी राधा और मीरा की कहानी, इनके प्रेम और इनसे किए छल की कहानियां। नानी इस अंदाज में सुनाती कि जैसे इनके दुख उसने अपने ही कलेजे में छुपा रखे हैं। वे कहती किसी समय में स्त्री मुक्त नहीं रही, न तब और न अब, हर दौर में उसे आग से ही गुजरकर परीक्षा देनी पड़ी। यही उसका भाग है, उसे हमेशा प्रेम की जगह छल ही मिला, फिर भी उसने प्रेम का अंकुर कभी सूखने नहीं दिया। अपनी आत्मा को आंसुओं की नमी और दुखों के ताप से उर्वर बनाए रखा। आषाढ़ के आखिरी दिनों की कोई रात रही होगी, ताप और उमस से भरी हुई, हवा जैसे कहीं थम गई थी, आंगन के ऊपर आसमान में तारे ही तारे थे। नानी उस रात उसे उर्वशी पुरुरवा की कहानी सुना रही थी, ईसा से 1600 साल पुरानी कहानी, पुराणों की पहली कहानी, आज से करीब 3500 साल पुरानी। नानी कहानी सुना रही थी, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी उर्वशी। उर्वशी के पास सब कुछ तो था, लेकिन ऐसा सरल जीवन और मनोरम प्रकृति कहाँ। स्वर्ग में नृत्य संगीत और आकर्षण के स्थिर सपनीली दुनिया से अलग, यहाँ धरती पर राग रंग, जीवन संघर्ष, मौसमों की आवाजाही और प्रकृति का पल पल बदलना। उर्वशी को धरती हमेशा लुभाती थी। एक दिन वो धरती की सुंदरता देखने आई और जंगल की झील में अपना अक्स देखने में ऐसी खो गई कि शाम से पहले वापस स्वर्ग लौटना ही भूल गई। धरती के जंगल है ही इतने सुंदर कि कोई भी रम जाए इनमें, चंदा ने हुंकारा भरा। हाँ, ये बात तो है, जंगल है ही इतने सुंदर। नानी ने कहानी को आगे बढ़ाया तो शाम घिर आई, चांदनी रात में झील का सौंदर्य और बढ़ गया। उर्वशी के रूप गंध से जंगल महकने लगा, इससे केसी नाम के राक्षस का पुरुषत्व जाग उठा। उसने उर्वशी का हाथ पकड़ा और उसे जबरन ले जाने लगा। उर्वशी ने सहायता के लिए पुकारा, रात के नीरव सन्नाटे को चीरते हुए स्त्री का आर्तनाद जंगल में दूर दूर तक फैल गया। चंदा ने दोनों हथेलियां अपनी ठोड़ी पर रखते हुए पूछा, अरे फिर क्या हुआ नानी, कोई आया उसे बचाने? नानी ने अपनी आवाज को और भीतर तक ले जाते हुए कहा, हाँ, थोड़ी दूरी पर पुरुरवा शिकार के लिए गुजर रहे थे। पुरुरवा एक प्रतापी राजा था, स्त्री और गरीबों का रक्षक, प्रतिष्ठानपुर का राजपाट होते हुए भी एकदम एकाकी। ओशिन सहित कई रानियां थीं, पर मन की बात कोई नहीं समझ पाती, राग रंग में मन नहीं लगता, तो वो रात को शिकार पर निकल जाता। प्रेम से रीता इंसान कई बार लक्ष्यहीन हो जाता है। केसी राक्षस से भिड़ जाते हैं पुरुरवा और बचा लेते हैं उर्वशी को। चंदा ने चहकते हुए हुंकारा भरा, हाँ ये हुई ना बात नानी। नानी को इस तरह कहानी की शुरुआत में ही चंदा का फैसला देने वाला अंदाज ठीक नहीं लगा, पर वो भी आखिर के सागों थी। उसने अगले ही पल चंदा को फिर से बेचैन कर दिया। नानी ने आवाज बदली और वे कहने लगी, लेकिन यही आता है एक नया मोड़ जो बदलता है पुरुरवा और उर्वशी की जिंदगी को। केसी से छुड़ाने में कई बार पुरुरवा और उर्वशी का एक दूसरे से स्पर्श हुआ, दोनों के भीतर स्पर्श से तरंगित सितार के कई तार छिड़ गए। चांदनी रात के दूधिया उजाले में दोनों की आंखें मिली तो वे एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढने लगे। बरसों की आस घुमड़ आई, अनायास बारिश होने लगी। उस रात दोनों की बरसों से तपती अतृप्त देह अंधेरे और बारिश में एक होने को आतुर थी। दोनों की देह उस बियाबान में अकथ प्रेम की कहानी लिखती रही। चंदा ने हुंकारा देते हुए पूछा, हाँ तो फिर शादी हो गई दोनों की? नानी ने डपटते हुए कहा, अरे ऐसी आसान कहाँ होती है कहानियां चंदा। उर्वशी यहां धरती की नहीं, वो तो स्वर्ग की थी ना। नानी फिर शुरू हो गई, तो सुबह पुरुरवा ने भारी मन से उर्वशी को स्वर्ग भेज दिया। दोनों रीते रह गए, भीतर ही भीतर कुछ खो गया। न पुरुरवा का मन धरती पर लग रहा था और न ही उर्वशी का मन स्वर्ग में। एक का धरती पर राजसी ठाट बाट तो दूसरे का स्वर्गिक आनंद, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रेम में झुलस रहे थे। दोनों अनमन

अनमनी उर्वशी, नानी कुछ कहती इससे पहले ही एक तारा टूटकर जमीन पर आने लगा और नानी ने कहानी वहीं रोक दी। चंदा शर्त से बंधी थी, वो कहानी के इस तरह अचानक बीच में रुक जाने से उदास हो गई, पर कहा कुछ नहीं। उसे पता था कि नानी अपनी शर्त कभी नहीं तोड़ती। अधूरी कहानी उसके भीतर देर तक घुमड़ती रही। नानी को तो नींद आ गई, पर उसकी आंखों में नींद कहाँ। वो सोने की जितनी भी कोशिश करती हर बार निष्फल ही रहती। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चांदनी रात में पीपल के नीचे ओटले पर वो औरत बुत की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा हर औरत एक बुत ही तो है। महज मुस्कुराती हुई, क्या सांस लेना और दिल का धड़कना ही जीवन है। चंदा सोचती तो सोचती रहती देर तक। कोई भंवर उठता उसकी आंखों की झील में, कोई बवंडर उठता उसके मन में, गीली लकड़ी सी धू धू करके उसकी देह सुलगने लगती।

इस वक्त आकाश की याद में है बड़ी शिद्दत से, मानो बीता हुआ सच अभी गुजर रहा हो उसकी आंखों के सामने। वो कहाँ होगा? क्या वो भी उसे याद करता होगा? पता नहीं। यही नदी के किनारे उन्होंने एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों को नदी ने देखा था, पीपल की बुत वाली औरत ने देखा था, पहाड़ ने देखा था और जंगल ने भी। उसने उसे देखा तो वो देखती रह गई। ऐसा कोई इधर उसने कभी देखा नहीं। उसे लगा कि ये जंगल की कोई परी है, किसी ने तन्मय होकर तराशी है उसकी देह। बड़ी बड़ी आंखें, सुतवा नाक, लरजते से नाजुक होठ, सुराही का गला, काले बालों का लहरदार जूड़ा, लाल ओढ़नी, धानी घाघरा, जैसे वन देवी हो या राह में भटकी हुई कोई राजकुमारी। वो खो गया था। वो अब महसूस कर रही थी उसकी आंखें उसे भेद रही हैं, शायद भीतर आत्मा तक।

आंखों में भी इंद्रधनुष तनने लगा था। सपनों से उसके जीवन में उतर रहा था प्रेम, धीरे धीरे अपने अंक में लेती हुई आज थी वहां। वो उस ताप से अपने में ही बिखर रही थी और वो फैल रहा था उसके वजूद में हौले हौले। चंदा तिल तिल आकाश के वजूद में समा रही थी। उसका अपना सब कुछ विलीन हुआ जा रहा था। प्रेम में दो हो ही नहीं सकते, वहां अद्वैत है। आकाश की तरह उसने भी चंदा को अपने में समेट लिया था। आकाश के बिना चंदा, तो चंदा के बिना आकाश कैसा।

आकाश जिसके वजूद में चंदा तिल तिल समा रही थी, वही आकाश दरअसल यहां जंगल बचाने आया था। कुछ लोग जंगल को खत्म कर देना चाहते थे। वो जंगल को उसी तरह रखना चाहता था जैसे जंगल बरसों से था। वो नदी में मछलियों की आवाजाही देखता रहा। चंदा के पैरों को छूते हुए नदी का पानी अपनी धार में बह रहा था। तब से अब तक न जाने कितना ही पानी बह गया होगा इस धार में। वो सोचने लगता है, स्मृतियां दुख से भर देती हैं, जख्म हरे हो जाते हैं। क्यों नहीं भूल पाते हम दुखद स्मृतियों को, मानो कहीं भीतर फंसी रह जाती हैं ये दुखद स्मृतियां। सपनों से जीवन में आया प्रेम कब फिर सपनों में लौट जाता है हम सब

समझ भी नहीं पाते। प्रेम दुर्लभ है, शायद हवा के वर्जित फल की तरह। कुसुम जो चंदा के प्रिय सहेली थी, शुरू से ही इसके खिलाफ थी।

0: पत्ते गिरते हैं तो पीपल उन नंगे दरख्तों पर हंसता है, और जब सारे पेड़ पौधे पर नई कोपले आने लगती हैं तो छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं, तब पीपल के पत्ते झड़ने लगते हैं और सारे उस पर हंसते हैं। चंदा ने हंसते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। आज मैं प्रेम में हूं तो तू मुझे ऊंच नीच समझा रही है, कल जब यही तेरे साथ होगा तब मैं कुसुम ने बीच में ही बात काट दी। ऐसा कभी नहीं होगा चंदा, मैं नहीं पढ़ने वाली तेरी तरह प्रेम रेम के चक्कर में, चंदा ने चहकते हुए कहा था। पगली, कोई सोच समझकर थोड़ी ही प्रेम करता है, ये तो बस हो जाया करता है, प्रेम दिमाग से परे होता है, वो तो मन की किताब में कैद होता है, प्रेम मन में होता है, अनजाने में, जानबूझकर नहीं। चलो चलो, प्रेम अंधा होता है, कुसुम ने कहा। नहीं कुसुम, प्रेम तो आंखें खोल देता है, चंदा बोली। प्रेम संकीर्ण कर देता है, कुसुम बोली। नहीं रे, प्रेम तो संकीर्णता को तोड़ता है, प्रेम सारी हदें तोड़ देता है, प्रेम निस्सीम है, निस्सीम, चंदा बोली। प्रेम समझ को ही खत्म कर देता है, ये एक तरह का पागलपन ही है चंदा। प्रेम जीवन को नए अर्थ देता है, वो दो दिलों को जोड़ता है, ये तो एक अलग अनुभूति होती है। प्रेम हमारे पागलपन का उपचार है, दवा है, प्रेम दवा है। चंदा, प्रेम आग है, आग। कुसुम, आग भी तो जरूरी है ना जीवन के लिए, आग से ही तो अनाज पकता है, आग से ही लोहा ढलता है, आग से ही सोना तपता है, आग नहीं तो जीवन कैसा, हर सर्जन आग की भट्टी से ही तो उपजता है। चंदा, प्रेम अपनों से तोड़ देता है, समझी? नहीं रे, प्रेम किसी को नहीं तोड़ता। कुसुम, जो प्रेम को नहीं समझ पाते वे खुद टूट जाते हैं, प्रेम तो हमेशा जोड़ता ही है। चल हट, तुझसे तो बात करना ही व्यर्थ है चंदा। अरे सिर्फ प्रेम की बात पर ही ना कुसुम, बाकी बातों में तो नहीं। ऐसा इसलिए है कि तूने प्रेम को अब तक सिर्फ दूर से ही देखा है, दूसरों की नजरों से ही ना, उसमें डूबना तो दूर तूने तो छुआ तक नहीं है, फिर उसके बारे में कैसे जान सकती है भला। चंदा उन पलों को शिद्दत से याद करती है तो उसके भीतर यादों की नदी मचलने लगती है, उसे अपने ही तन की खुशबू अब पराई सी लगती है। उसका पुरुरवा भी क्या उसे इसी तरह कहीं याद करता होगा? याद करता होता तो लौट आता अब तक। कभी कभी लगता है कुसुम सही कहा करती है, कभी लगता है उसका मन सही कहता है, अपने ही द्वंद्व में उलझी है वो, पर उसे भरोसा है अपने प्रेम पर, पूरा भरोसा है कि एक दिन लौट आएगा आकाश भी। चंदा और आकाश जब मिलते तो देर तक बातें करते रहते, उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थीं, उनके पास बातों का खजाना था। कभी वे बातें करते हुए जंगल में खो जाते तो कभी पहाड़ से उतरती नदी को देखते रहते, नदी का ये तट उन्हें सबसे अच्छा लगता, उनके पैर नदी के पानी में होते और इस तरह नदी प्रेम को सींचती थी, उनकी बातें नदी में गिरती रहती, नदी उन बातों के टुकड़ों को सहेज लेती, वे चिड़ियों से शब्द लेते, वे पपीहे से प्यास लेते और अपने प्रेम को गाढ़ा होते देख रहे थे।
1: ये रात

आकाश को बुत वाली औरत की कहानी उसने ही सुनाई थी। आकाश का हाथ पकड़कर वो उसे बुत के पास ले गई थी। बुत वाली औरत मुस्कुरा रही थी। आकाश, ये बुत देख रहे हो ना? ये बुत नहीं है, सच की औरत है, इसी गांव की। करीब 400 साल पहले यही इसका घर था। हर दिन नदी के पास की पगडंडियों से पहाड़ की ओर बकरियां लेकर ये निकल जाया करती थी। कभी वो बहुत मीठा गाती थी, पहाड़ पर गाती तो गांव सुनता रहता। उसके गाने में ताकत थी कि गीत सुनते हुए कोई दूसरा काम नहीं कर पाता, जो सुनता वही ठहर जाता। उसकी आवाज में दर्द था, उसके दर्द से भीगे गीत पहाड़ की घाटियों में गूंजते रहते देर तक। नदी के साथ बहते हुए गीत बहुत दूर तक चले जाते। आकाश हतप्रभ था, ऐसा गीत, ऐसा गला कहां से सीखा था उसने? अपने ही दुखों से, अपने ही भीतर से। यह कौन किसको सिखाता है, सब अपने ही भीतर सीखते हैं। कहते हैं वो गले से नहीं गाती थी, अपने कलेजे को ही चीर लेती थी वो, वहीं से फूटता था गीत। चंदा की आंखें बुत पर टिकी थी। ऐसा क्या दर्द था उसका, प्रेम का दर्द, जिसका कोई उपचार उसके पास नहीं था, कोई दवा नहीं थी उसके पास। फिर क्या हुआ, आकाश बेताबी से पूछ रहा था। उसने भी किसी से प्रेम किया था, कहीं से सौदा बेचने यहां आया और प्रेम लेकर चला गया, फिर बरसों तक इधर नहीं लौटा। वो उसका इंतजार करती रही। इंतजार का दर्द सिमट आया था उसके गीतों में।

तो क्या वो फिर कभी नहीं लौटा? क्या वो उसे भूल गया? नहीं, वो उसे अपने देश, अपने गांव ले जाने को लौटा था, पर वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। उसे इस जंगल से इतना प्यार था कि कहीं जाने की बात कभी सोच भी नहीं पाती। हार कर सौदागर ने भी यहीं रहने का फैसला कर लिया। वो बहुत खुश हुई। वो संकोच में थी कि घर वालों को ये सब कैसे बताए। तभी एक किस्सा हो गया। किस्सा? कैसा किस्सा? एक रात नदी के तट पर ठीक यही वे दोनों अपने सपनों में खोए हुए थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने उन्हें यहां इस तरह देख लिया। थोड़ी ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इस तरह किसी गैर पुरुष के साथ? गांव वालों में से किसी एक ने पहला पत्थर उछाला। फिर तो इतने पत्थर चले, कि वही दोनों लहूलुहान हो गए। इतने पत्थर खाकर वे बचे नहीं, वे तो नहीं बचे, लेकिन उनका प्रेम जीत गया था जमाने से, अपने समय से।

उसके बाद गांव में जैसे मुर्दान की छा गई। संकट पर संकट, गांव वाले परेशान। संकट में ही याद आते हैं अपने किए हुए बुरे कर्म। ये उसी औरत की वजह से तो नहीं, पूरे गांव ने नाक घिसी यहां आकर। किसी मूर्तिकार ने उसकी मूर्ति गढ़ी पत्थर में। तब से अब तक इसे लोग देवी की तरह पूजते हैं। लेकिन कुंवारी लड़कियों को यहां नहीं आने देने के पीछे क्या वजह है? डर, प्रेम से। उन्हें लगता है कहीं वे भी प्रेम में न पड़ जाएं। कोई मां अपनी बेटी को यह किस्सा तक नहीं सुनाती कि कहीं उसकी बेटी भी प्रेम न करने लगे। आकाश ने कहा था, तो क्या इन 400 सालों में कुछ भी नहीं बदला? बिल्कुल नहीं। शायद ये दुनिया का पहला ऑनर किलिंग रहा होगा। बहुत देर तक दोनों के बीच सन्नाटा सा रहा। वे भी धीरे धीरे पत्थर के शक्ल में ढल रहे थे। दूसरी रात नानी ने फिर शुरू की थी उर्वशी की कहानी, वहीं से जहां तारा टूटने पर छोड़ी थी। नानी कह रही थी, अनमने से उर्वशी नृत्य नाटिका में लक्ष्मी का अभिनय कर रही थी। उसके ध्यान में पुरुरवा थे। उसने नाटिका में जैसे ही विष्णु की जगह पुरुरवा कहा तो स्वर्ग में खलबली मच गई। नृत्य नाटिका के निर्देशक भरत मुनि ने उसे शाप दे दिया, तू जिसके प्रेम में है जा उसे ही वरण कर। वो प्रेम में थी तो उसे ये शाप भी वरदान ही लगा

0: उसने पुरुरवा के पास संदेश भेजा। पुरुरवा ने उसे धरती पर बुलवा लिया। गंधमादन की रमणीक पहाड़ी पर दोनों प्रेम में रहने लगे।
1: अच्छा, इस तरह तो प्रेम जीत गया नानी,
0: चंदा बोली। नानी ने कहा, सरल नहीं होती जिंदगी की राह बेटा, वो कई मोड़ मुड़ती है। हाँ, प्रेम को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अब आगे सुन। पुरुरवा उर्वशी के लिए फल लेने जा रहे थे कि जंगल में उसकी आंखें पल भर के लिए नदी से झुककर पानी भरती हुई एक युवती पर ठहर गई। पुरुरवा को बिना बताए उर्वशी भी थोड़ी दूर पर उनके पीछे चल रही थी। एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, पर अपनी उपेक्षा नहीं। वो डाह से भर उठी और वहीं एक बेल में बदल गई। पुरुरवा परेशान सब तरफ देखा ढूंढा, पर कहीं नहीं। पुरुरवा विरह से बहुत दुखी हुए। एक मुनि ने देखा तो दया से भरकर उन्होंने पुरुरवा को एक मणि दी, जिसके छूते ही उर्वशी फिर से स्त्री बन गई। वो बेल में नहीं बदली थी, शायद वो बेलों के पीछे अपने में ही छुप गई थी। नानी कहे जा रही थी, बहुत मनाने पर उर्वशी उसके साथ रहने को तैयार तो हो गई, पर उस बार उसने पुरुरवा के सामने शर्त रख दी।
1: कैसी शर्त नानी? प्रेम में शर्त? मना कैसे?
0: चंदा के माथे पर बल पड़ गए थे। नानी की कहानियां ऐसे ही कई मोड़ों से भरी होती हैं, उसकी अपनी जिंदगी की तरह। ऐसा लगता कि बस अब कहानी का सुखांत होता ही है और तभी कोई एक नया मोड़ आ जाता उसमें। सुनने वाला अचरज में पड़ जाता है। नानी कहती, अरे मोड़ नहीं तो कहानी क्या? नानी ने कहा, हाँ प्रेम में शर्त। ये उसकी प्रेयसी बनकर तभी तो उसके साथ गंधमादन पहाड़ पर रहेगी, जब तक कि उनमें से कोई एक दूसरे को निर्वस्त्र नहीं देख लेते। जिस दिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखा, उसी पल उर्वशी उससे संबंध तोड़कर वापस स्वर्ग चली जाएगी। तो क्या पुरुरवा ने शर्त मान ली? चंदा कहानी के भंवर में धंसती जा रही थी। नानी ने कहा, अरे वो क्या करता, वो तो उर्वशी के प्रेम में था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था शर्त मानने के सिवा। उसने शर्त मान ली। अब वे दोनों उजाले में सामने नहीं पड़ते, पर रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे में खोए रहते। दोनों सुख से रहने लगे। राजपाट का काम भी पुरुरवा वहीं से देखते थे। वे बरसों तक अपनी राजधानी ही नहीं लौटे।
1: फिर क्या हुआ नानी? क्या किसी ने उनके राज्य पर हमला कर दिया?
0: चंदा की बेचैनी अब चरम पर थी। नानी ने कहा, अरे नहीं रे, पुरुरवा जैसे प्रतापी राजा के राज्य पर हमला करने की हिम्मत भला कौन करता? दूसरी बात हुई। उर्वशी के चले आने से स्वर्ग में उदासी फैल गई थी। नृत्य और संगीत बिना अधूरे हो गए थे। वहां नृत्य में चपलता नहीं, संगीत में सुर नहीं, लय ताल आरोह अवरोह सब भूलने लगे। वहां और भी अप्सराएं थीं, लेकिन नृत्य और संगीत की आत्मा तो जैसे उर्वशी में ही बसती थी। इंद्र के साथ बाकी देवता भी चिंता में पड़ गए। गंधर्व तो बिना आत्मा के शरीर की तरह हो गए थे। तभी उन्हें कहीं से उर्वशी की शर्त के बारे में पता लगा। उन्होंने एक खेल रचा, छल किया पुरुरवा से। नानी ने एक ठंडी सांस भरी। एक पल को अंधेरे में कुछ सोचती रही, फिर कहानी में लौट आई, जैसे वो भी अपने अतीत से लौट रही हूं। नानी ने कहा, उर्वशी ने बहुत ही सुंदर सफेद फर वाले दो मेमने पाले थे। उर्वशी उनका बहुत ध्यान रखती, उन्हें हमेशा अपने साथ रखती थी। एक रात जब वो पुरुरवा के अंक में आराम कर रही थी, तभी गंधर्व ने छल से एक मेमना चुरा लिया। चोरी करते हुए उन्होंने जानबूझकर कुछ खटर पटर किया, जिससे उर्वशी की नींद उछट गई।
1: उसने पुरुरवा को उठाया कि कोई उसका मेमना चुरा कर ले जा रहा है। वे नींद से नहीं जागे तो उर्वशी उन्हें भला बुरा कहने लगी। छल की योजना पूरी होते न देखकर उन्होंने दूसरा मेमना चुराने का साहस किया। फिर उर्वशी ने उन्हें उठाया। इस बार पुरुरवा अपने आप को रोक नहीं सके और बिस्तर से खड़े हो गए। तभी देवताओं ने बिना मौसम की आसमानी बिजली चमका दी। पल भर को उर्वशी ने पुरुरवा को और पुरुरवा ने उर्वशी को निर्वस्त्र देख लिया। शर्त टूट गई थी। उर्वशी को फिर स्वर्ग लौट जाना पड़ा। पुरुरवा अकेला रह गया, अनमना और उदास। वो बिछोह की आग में जल रहा था और उर्वशी भी जल रही थी बिछोह में।

पुरुरवा का राजकाज में मन नहीं लगता था। रह रहकर उर्वशी की याद सताती। कई महीनों बाद उर्वशी एक बार फिर पुरुरवा को किसी निर्जन झरने में स्नान करते हुए दिखी। देर तक दोनों एक दूसरे को विछोह की कहानियां सुनाते रहे। पुरुरवा के प्रेम में उर्वशी को पिघलना ही पड़ा। उसने कहा, वो स्वर्ग के नियम से बंधी है, लेकिन हर साल के आखिरी दिन उससे मिलने धरती पर जरूर आएगी, और वो आती रही हर साल इसी तरह एक रात के लिए। चंदा ने फिर हुंकारा भरा, अच्छा फिर क्या हुआ नानी? नानी ने आगे कहा, एक बार देव और दानों का जोरदार युद्ध हुआ, बहुत बड़ा। देवता जितनी भी कोशिश करते, दानों फिर उन्हें पीछा कर देते। ऐसे समय उन्हें धरती पर रहने वाले पुरुरवा की याद आई। पुरुरवा ने युद्ध में देवताओं की मदद की। इंद्र ने लौटते समय उर्वशी को भी उनके साथ भेजा। उर्वशी स्वर्ग से मुक्त होकर हमेशा के लिए धरती पर आ गई। फिर जिंदगी भर दोनों हमेशा साथ साथ रहे। उनके कई पुत्र हुए, फिर प्रेम की जीत हुई। स्वर्ग और धरती का मिलन हुआ हमेशा के लिए गंधमादन की पहाड़ियों पर।

नानी की कहानी तो पूरी हो गई थी, पर चंदा के भीतर बवंडर घुमड़ रहा था। वो सोच रही थी कि दुनिया की खिलाफत, नफरत और छल के बाद भी प्रेम किसी भी समय खत्म नहीं हुआ। कोई तो बात है कि हजारों साल के बाद भी प्रेम बार बार बचा रह जाता है। उसे लगा कि प्रेम उस अमर पंछी की तरह है जिसके बारे में उसे आकाश ने बताया था, सुनहरी पूंछ वाला रंग बिरंगा फिनिक्स पक्षी।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, हम हाजिर हैं लेकर युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

युवावाणी सुनने वाले सभी दोस्तों को बंटी का प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों आपके फेवरेट रेडियो शो युवावाणी में। उम्मीद है दोस्तों आपने ट्यून कर लिया होगा हमें अपने रेडियो सेट या फिर अपने स्मार्टफोन पे। जरिया जो कोई भी हो दोस्तों, आपका लगाव, आपका जुड़ाव बहुत मायने रखता है हमारे लिए। तो आइए हर शाम की तरह इस शाम को भी खास बनाते हैं युवावाणी के साथ। दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए आपको बताते चलें कि क्या कुछ सहेज कर लाए हैं हम आज के युवावाणी के पिटारे में। दोस्तों वन महोत्सव सप्ताह भी चल रहा है, तो हम सबसे पहले आपसे बातें करेंगे वन महोत्सव सप्ताह के ही बारे में। इसके बाद ले चलेंगे एक पूर्व प्रसारित वार्ता की तरफ। इसके बाद खेल समाचार होगा आपके लिए और अंत में हर रोज की तरह समसामयिक गतिविधियों पर डालेंगे एक नज़र और फिर लेंगे आपसे विदा। तो बेहद खास होने वाला है आज का शो, यूं ही बने रहिएगा हमारे साथ। आइए इस शो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म धुरंधर से और गायक कलाकार हैं अरिजीत सिंह।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: दस लाख की लॉटरी मुझे,
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों अभी वन महोत्सव सप्ताह का दौर चल रहा है और वृक्षारोपण इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके साथ ही इसका उद्देश्य है कि नागरिकों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जाए, पर्यावरण को संरक्षित करने और वनों के प्रति लोगों के मन में संवेदना भी जागृत की जाए, ताकि हमारा पर्यावरण बहुत ही सुंदर और हरा भरा हो सके। इस सप्ताह के शुरुआत की बात करें दोस्तों, तो 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी और आगे चलकर इसे हम हर वर्ष बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। दोस्तों बारिश की शुरुआत के साथ ही वन महोत्सव की भी शुरुआत हो जाती है और जैसा कि हमने बताया भी कि इस सप्ताह को मनाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो वनों की कटाई को रोकना, वृक्षारोपण को और आगे बढ़ाना, अपने घर के बाग बगीचों को हरा भरा रखना, आसपास होने वाले वृक्षारोपण के अभियानों को सहारा देना, संबल प्रदान करना, ये सब हमारा उद्देश्य होता है। और इस दिन आयोजन भी बहुत सारे किए जाते हैं। इस सप्ताह के दौरान राज्य सरकारों, वन विभागों, स्कूलों और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जगह जगह पर वृक्षारोपण अभियान चलाए जाते हैं। तो आज इस सप्ताह के दौरान हम भी ये संकल्प लें दोस्तों कि एक वृक्ष हम अवश्य लगाएं और अपने पर्यावरण को खुशहाल, हरियाल, हरा भरा रखने के इस मुहिम में अपना एक छोटा सा सहयोग अवश्य दें। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ दोस्तों आज की बातें यहीं तक। अब वक्त है एक पूर्व प्रसारित वार्ता का। इस वार्ता का विषय है दोस्तों महिलाओं का सशक्तिकरण। वार्ताकार हैं नेहा परवीन।
7: भारतीय समाज में वैदिक काल में नारी का स्थान बहुत सम्मानजनक था और अखंड भारत विदुषी नारियों के लिए जाना जाता था। कालांतर में नारियों का सामाजिक स्थिति में ह्रास हुआ और मध्यकाल तक आते आते यह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। जिस समाज में नारी का स्थान सम्मानजनक होता है वह समाज उतना ही प्रगतिशील और विकसित होता है। परिवार और समाज के निर्माण में नारी का स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। नारी की महत्ता को दर्शाते हुए ही धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब समाज सशक्त और विकसित होता है तब राष्ट्र भी मजबूत होता है। इस तरह राष्ट्र निर्माण में भी नारी केंद्रीय भूमिका निभाती है। तभी तो किसी विद्वान ने कहा है, एक अच्छी माता 100 शिक्षकों के बराबर होती है, इसलिए उनका हर हाल में सम्मान करना चाहिए।

0: महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक राजनीतिक शारीरिक सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार समुदाय एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वतंत्रता। इस कसौटी पर हम 100% भले ही खड़े नहीं उतरते लेकिन स्थिति में बदलाव साफ दिखने लगा है। तभी तो आज एक ओर जहां BSF में लड़कियां भी भर्ती हो रही हैं वहीं दूसरी ओर वे फाइटर पायलट बनकर भी अपनी क्षमता को दर्शा रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कामकाजी बनकर वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी हैं। हमेशा से ही यातना और शोषण का शिकार रही महिलाओं के उत्थान के लिए विश्व स्तर पर पहली बार संगठित प्रयास 1903 में अमेरिका में वुमेन ट्रेड यूनियन के गठन के लिए शुरू हुआ। 1910 में अमेरिका में महिला दिवस मनाए जाने का मुद्दा उठाया गया। शुरू में विभिन्न देशों में अलग अलग तिथियों में महिला दिवस मनाया जाता था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाद में इसके लिए 8 मार्च की तिथि घोषित की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण में इस दिवस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लेकिन महिला दिवस का आयोजन करना तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक महिलाओं के प्रति सामाजिक सोच एवं सांस्कृतिक में सकारात्मक परिवर्तन ना लाया जाए। भारतीय समाज में भी अन्य प्रगतिशील समाजों की तरह महिलाओं की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए कई प्रभावकारी कदम उठाए गए। इसी कड़ी में बिहार समेत कई राज्यों में पंचायती राज्य व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई। ऐसी व्यवस्था महिलाओं के प्रति सामाजिक सोच में बदलाव की दिशा में एक नया कदम माना गया। पुरुष प्रधान मानसिकता ने समाज स्त्रियों को एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि पश्चिमी समाज में भी स्त्रियों को लगभग 1920 तक व्यक्ति की श्रेणी में शामिल ही नहीं किया गया। वहाँ व्यक्तियों से तात्पर्य सिर्फ पुरुष से था। इंग्लैंड में सन 1918 तक और अमेरिका में सन 1920 तक स्त्रियाँ वोट देने के अधिकार से वंचित रहीं। बचपन से ही लड़कियों के मन में यह बात बैठा दी जाती है कि वो स्त्री है इसलिए आमुक गतिविधियां नहीं करनी चाहिए। यही कारण है कि एक 20 वर्ष की वयस्क लड़की के साथ शाम के समय घर से बाहर जाते समय उसका 10 वर्ष का भाई भी साथ जाता है उसकी रक्षा हेतु। इस तरह की गतिविधियां सिर्फ मानसिकता का प्रदर्शन मात्र है। स्त्री मुक्ति आंदोलन का नारीवाद इस तरह की मानसिकता का विरोध करता है। महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाला महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश किया गया है। इस विधेयक में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। वैसे कुछ प्रावधान किए गए हैं जिससे महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में अच्छा कदम माना जा रहा है। 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया जो महिलाओं के संवैधानिक तथा कानूनी सुरक्षा के अधिकार को ठीक से लागू करता है। नारी को सशक्त बनाने के लिए ही नारी उत्थान नीति 2001 बनाई गई जिससे देश में महिलाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्थान के लिए आधारभूत सुविधाएं निर्धारित किया जाना संभव हो सके। इसके अलावा भी नारियों को सशक्त बनाने के लिए कई सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयास चल रहे हैं लेकिन सामाजिक सोच में पूरी तरह से बदलाव नहीं होने के कारण महिलाओं का अपेक्षित विकास संभव नहीं हो पा रहा है। अभी भी समाज में लड़कियों के जन्म पर लोग उदास हो जाते हैं लेकिन इन सबके बीच कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां लड़कियों के जन्म पर लोग उत्सव मनाते हैं। भागलपुर जिले के धरहरा गाँव में लड़कियों के जन्म पर वृक्षारोपण की परम्परा पूरे देश में चर्चित है। एक सच्चाई यह है कि महिलाएं पहले से अधिक सशक्त हुई हैं वहीं दूसरी ओर उन्हें कमजोर करने का काम समाज के लोग कर रहे हैं। इनमें पुरुष के साथ साथ कमोवेश महिलाएं भी शामिल हैं। तभी तो तमाम प्रयासों के बावजूद कन्या भ्रूण हत्या पर रोक संभव नहीं हो पा रही है। इसे विडंबना ही कहा जा सकता है कि जिस नारी को लोग सिद्धांत रूप में देवी की संज्ञा देते हैं उसकी ही हत्या माता की कोख में कर दी जाती है। कन्या भ्रूण हत्या पर पूरी तरह से रोक तभी लग पाएगी जब इसके विरोध में पूरा महिला समाज अधिक शक्ति के साथ उठ खड़ा होगा। खेल के क्षेत्र में हाल के कुछ वर्षों में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने जबरदस्त क्षमता का प्रदर्शन किया है। इसमें सानिया मिर्जा का नाम अग्रणीय है जिन्होंने टेनिस के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। इसके अलावा मुक्केबाजी में MC मैरी कॉम, तीरअंदाजी में दीपिका कुमारी आदि महिला खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा से सबको परिचित कराया। फिल्म जगत में भी नवोदित अभिनेत्रियों गायिकों ने अपनी कला के माध्यम से जहां समाज को संदेश देने का काम किया, वहीं युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बने। अभिनेत्रियों में सोनम कपूर, प्रियंका चोपड़ा, सोनाक्षी सिन्हा आदि ने कुछ चुनिंदा फिल्मों में अपने अभिनय का सिक्का मनवाया। इन सबके ऊपर अपने देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने देश के शीर्ष पदों पर पहुंचकर निश्चित रूप से महिला शक्ति का परिचय दिया। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि लक्ष्य अभी भी बहुत दूर है। सुदूर ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्र अभी भी महिला सशक्तिकरण के बयार से अलग है। इसके लिए और भी कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक चलाना होगा। महिलाओं को अधिक सशक्त बनाने के लिए कई कानूनी प्रावधान किए गए, लेकिन ये सभी प्रावधान तब तक प्रभावी रूप से लागू नहीं हो सकेगा जब तक कि समाज के सभी वर्ग के लोगों का इसमें पूरा सहयोग नहीं मिलेगा। हमें देश की एक एक नारी को शिक्षित बनाना होगा, बल्कि उन्हें सम्मानजनक स्थिति तक लाना है, तभी भारत विकासशील राष्ट्र की श्रेणी से निकलकर विकसित देश की श्रेणी में खड़ा हो सकेगा।
1: महिला सशक्तिकरण, युवा साथी अभी सुन रहे थे ये पूर्व प्रसारित वार्ता। वार्ताकार थी नेहा परवीन। आइए दोस्तों, अब चलते हैं अपने वीकली सेगमेंट खेल समाचार की तरफ। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रनों से शिकस्त दी है। इस मैच में शबनीम इस्माइल ने इंग्लैंड के खिलाफ 50 विकेट पूरे करने का बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। फुटबॉल की तरफ चलें दोस्तों, तो फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत पुर्तगाल की टीम ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। और इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए के मैच में साई सुदर्शन ने भारत के लिए शानदार अर्धशतकीय पारी खेली है। तो दोस्तों, आज के लिए खेल समाचार में बस इतना ही। आइए एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं इस कार्यक्रम में, फहीम अब्दुल्ला की आवाज़ में, जिसे चुना है हमने फिल्म सैयारा से।

इस बेहतरीन नगमे के बाद एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों युववाणी में अब वक्त है करेंट अफेयर्स पर एक नज़र डाल लेने का। 2026 की वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत रूस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक देश बन गया है। भारतीय सेना ने अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बाज बटालियन का गठन किया है। सोमनाथ घोष को मलेशिया में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है और RBI ने शंकर को अपने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो आज के लिए दोस्तों करंट अफेयर्स सेगमेंट में बस इतना ही। उम्मीद है यह आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होता है। आइए दोस्तों कार्यक्रम में एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं फिल्म ओ रोमियो से, जिसे अपनी आवाज़ दी है अरिजीत सिंह ने।

तो ये था दोस्तों आज के युवावाणी का सफ़र, उम्मीद है आपने ज़रूर पसंद किया होगा। स्टूडियो की घड़ी भी अब कर रही है इशारा दोस्तों, अब इस शो को यहीं पर रैप अप करना होगा। हंसते मुस्कुराते रहिए, गाते गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए युवाओं की वाणी। युवावाणी मिलेंगे फिर इसी वक्त इसी प्रोग्राम इसी फ्रीक्वेंसी पर। तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त बंटी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: भारतीय समाज।
1: युवावाणी कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत। पहला गाना हमने फिल्म अंदाज से लिया है। अलका याग्निक एवं बाबुल सुप्रियो ने इसे गाया है। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत तैयार किया है नदीम श्रवण ने।

कुमार सानू एवं आशा भोसले का गाया एक गीत आपको सुनवाते हैं। गीत के बोल समीर के हैं, संगीतकार नदीम श्रवण, फिल्म का नाम है दिल का क्या कसूर।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: क्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर एवं पंकज उधास का गाया फिल्म घायल का एक गीत। गीत के बोल अनजान के हैं और संगीत तैयार किया है बप्पी लाहड़ी ने।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। स्थानीय सूचनाएं एवं कार्यक्रम विवरण, आइए डालते हैं एक नज़र हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज की शेष तथा कल के कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं उनके प्रसारण समयों पर। अब से थोड़ी देर बाद शाम 6 बजे ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित आप हमारा दैनिक कार्यक्रम सुनते हैं ग्राम जगत खेती गृहस्थी। शाम 7:10 पर हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर कुमार रत्नेश से की गई भेंटवार्ता, विषय होगा आंतों की बीमारियां। आपसे बातचीत करेंगे सचिन कुमार। 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में आज गायक कलाकार होंगे सुरेंद्र कुमार राय। 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीकंथा। रात्रि 9:30 साहित्यिक रेडियो पत्रिका कार्यक्रम होगा शतदल। प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे केदारनाथ मिश्र का ख्याल गायन राग पुरिया में। और रात 10:30 हम आपके लिए लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आप।

ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब कुछ जानकारियां कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होगी 5:48 पर। 5:55 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में किसान श्रोता सुनते हैं सामयिक कृषि वार्ता। 6:05 पर दैनिक चिंतन मनन कार्यक्रम होता है। 6:10 पर होता है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। 6:35 पर कल स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर सुरेश प्रसाद की वार्ता, विषय होगा आँखों की सुरक्षा। 6:40 पर रामचरित मानस गान की क्रमिक कड़ी सुनवाई जाएगी। प्रातः 7:00 से 7:55 तक आप सुनते हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसमें प्रातः 7:00 सुगम संगीत के कार्यक्रम रसरंग में कल गायक कलाकार होंगे अरविंद कुमार यादव।

7:20 पर कार्यक्रम कानून की बातें अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता, विषय होगा गिरफ्तारी, वार्ताकार होंगी सुप्रीता कुमारी। 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 9:06 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा नगमे नए पुराने। 9:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल गायक कलाकार होंगे गोपाल कृष्ण मिश्र। 10:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा पुरानी फिल्मों से। 10:30 पर लोकगीतों के कार्यक्रम में गायक कलाकार होंगी सुमित्रा देवी। 11:00 फोन इन फरमाइश का कार्यक्रम होगा फोन इन आपकी पसंद, प्रस्तुतकर्ता होंगे सौरभ कुमार। 12:00 महिला श्रोता सुनती हैं अपना कार्यक्रम नारी लोक। 12:30 पर सुर संगम कार्यक्रम में आप सुनेंगे संगीत कुमार नाहर का शास्त्रीय गायन राग मुल्तानी में। दिन के 1:00 लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग में गायक कलाकार होंगे रणबीर प्रसाद सिंह। 1:30 संताली कार्यक्रम होगा जीवन झरना। 2:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट से। 3:00 प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे। 3:20 पर आप सुनेंगे समूह स्वर में देशभक्ति गीत और 3:25 से विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा का अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। शाम 5:00 हम आपकी सेवा में एक बार फिर उपस्थित होंगे लेकर युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी। शाम 5:30 पर होगा फिल्म संगीत। शाम 6:00 ग्रामीण श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम होता है ग्राम जगत खेती गृहस्थी। शाम 7:10 पर लोकगीतों के कार्यक्रम में कल गायक कलाकार होंगे जय नारायण शर्मा। शाम 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में कल गायिका होंगी प्रतिभा सिन्हा। 8:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। रात्रि 9:30 कार्यक्रम साहित्य भारती और रात्रि 10:00 से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र के माध्यम से रिले करेंगे। कार्यक्रम विवरण में अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज की शेष तथा कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं उनके प्रसारण समयों की जानकारियां प्राप्त कर रहे थे। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। शाम के 6:00 हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी।

0: ग्राम जगत के सभी श्रोता भाई बहनों को कमली का हार्दिक नमस्कार।
1: सभी श्रोता भाई बहन का दीपा के भी नमस्कार। आप लोगों का नमस्कार कमली बहन।
0: अरे नमस्कार नमस्कार दीपा बहन, क्या हाल समाचार? बहुत दिनों बाद आज आपके साथ सही लोगों का मिलना हुआ।
1: एकदम एकदम
0: बहुत दिनों के बाद मिल लिए,
1: बहुत अच्छा लगी रहलो
0: जी जी। और दीपा बहन, रिमझिम फुहारों का भींगा भींगा मौसम भी आ गया है।
1: हाँ, टिपी टिपी तो पड़ी रहलो छे, लेकिन आज को बारे में कहना गलत होते कमली बहन, कहना की आज तो इतना कड़ा धूप छले।
0: हाँ।
1: सब हम असनी परेशान
0: और कड़ी धूप के साथ साथ दीपा बहन, अभी उमस का जो मौसम है उसके कारण आर्द्रता जो होती है और एक घुटन सी महसूस होती
1: एकदम,
0: है
1: एकदम एकदम।
0: और इस कारण जो है हम लोगों को इससे बच के रहना बहुत ही जरूरी
1: लेकिन
0: है।
1: की छे ना, जेकरा काम छे वो तो निकलबे करते।
0: नहीं नहीं, निकलना तो जरूरी है, हम लोगों को थोड़ी सतर्कता रखनी होगी।
1: हाँ, तो छाता रखो, पहनीला जूता पहनीला, पानी साथ में रखो।
0: और साथ साथ एक बात और है दीपा, इस समय हमें हमेशा ताजा भोजन करना चाहिए, क्योंकि अभी दीपा बहन जानती हैं कोई भी चीज नमी के कारण जल्दी खराब होती है। और उसमें महक वगैरह, खाद्य पदार्थ अगर उसमें महक आने लगे, खट्टा लगने लगे और कई देर का बनाया हुआ हो,
1: एकदम नहीं खाना चाहिए
0: उसको, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, है ना। और ये कोशिश होनी चाहिए हमारी कि खाने से ज्यादा हम लोग जल का सेवन करें, पानी ज्यादा से ज्यादा पीते रहे, ताकि हमारे शरीर में जो पसीना निकल रहा है और उसके साथ घुटन सी महसूस हो रही है, उससे हमारा तन मन शीतल रहेगा, अच्छा महसूस होगा।
1: अब बाजार में देखो कि कटलो कटलो फल से नहीं रखे,
0: नहीं नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल
1: नहीं, आदमी से खाए ले।
0: जानती हैं जब भी सलाद वगैरह

0: रबी,
1: हाँ
0: तुरंत हमें उसे काटकर तुरंत प्रयोग लाना चाहिए। फल
1: हाँ
0: वगैरह में भी ऐसा ही है, फल जो हमारे बाजार में कटे हुए मिलते हैं उनका
1: हाँ
0: प्रयोग हितकर नहीं होता
1: तवा
0: है।
1: ओकरा से
0: तो
1: बढ़िया से घरे आनी का खा लेते आदमी
0: हाँ,
1: काटी
0: घर
1: का
0: आकर बढ़िया से धुल कर,
1: तवा।
0: क्योंकि उसको अच्छी तरह धोकर ताकि कीटाणु मुक्त हो जाए और फिर उसे प्रयोग में
1: अरे
0: लाना
1: हमारा जैसे
0: चाहिए।
1: भूख लगी जेता होता है, सोचता है कि अच्छा चल खा
0: तो
1: ले
0: उससे अच्छा है
1: चीज।
0: कि साबुत फल ले लिया जाए, खीरा ले
1: हाँ
0: लिया
1: तवा
0: जाए, है ना,
1: थोड़ा सा
0: सेव
1: हल्का
0: ले लिया जाए,
1: हाँ
0: साबुत ले ली जाए और उसे फिर हम खाएं तो
1: करा
0: फिर
1: सके
0: अच्छा
1: छे
0: होगा।
1: आदमी,
0: और
1: लेकिन
0: साथ ही साथ दीपा बहन एक बात
1: हाँ
0: और भी ध्यान रखनी है कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि बाहर की शीतल पेय का प्रयोग करते हैं, ठंडा लगा, और बच्चे लोग क्या कोल्ड ड्रिंक्स आजकल बहुत प्रचलन में है,
1: हाँ एकदम
0: तो ये जो
1: एकदम।
0: है तुरंत तो थोड़ी ठंडक देता है दीपा बहन,
1: ए थोड़ा देर तो खूब मन लगे छे पिए माय।
0: लेकिन जो है बहुत ही नुकसानदेह, और खास
1: हाँ
0: करके अभी इस
1: सही
0: मौसम
1: बोलो।
0: में तुरंत गर्म मौसम में अगर ठंडा शीतल पेय पीते हैं
1: हाँ
0: तो गले में जकड़न जैसी महसूस
1: एकदम
0: होती
1: एकदम।
0: है, गला बैठ जाना, और वो वैसे भी उसमें बहुत ज्यादा चीनी की मात्रा होती
1: हाँ
0: है,
1: चीनी सुनै छे बहुत होइ छे ओकरा में
0: हाँ, तो पेट के लिए बहुत नुकसानदेह
1: तवा।
0: है दीपा बहन। तो बहुत ही जरूरी है कि उन सब से थोड़ा बचा जाए
1: एकदम
0: और हमारे घरेलू जो शीतल पेय हैं उनका प्रयोग किया जाए।
1: हाँ। घरों में बनाए का दही का मट्ठा पीते आदमी की दिक्कत छे।
0: और दीपा बहन
1: हाँ
0: एक बात देखिए, वर्षा का सीजन आ गया
1: हाँ
0: है, तो
1: हाँ
0: ये जो वर्षा का आना हम गृहस्थ किसान भाई बहनों के लिए तो निश्चय ही समृद्धि के आगमन का संकेत होता है,
1: एकदम।
0: और आम जनों के लिए भी वर्षा की बूंदें जो है अमृत की तरह लगती
1: हाँ
0: है।
1: इन्हों गर्मी उमस के बाद अगर इन्हों पानी पड़ा लगते
0: हाँ
1: कितना बढ़िया
0: हाँ
1: लगे छे।
0: जी, और आपको तो पता ही होगा दीपा बहन कि
1: हाँ
0: वर्षा ऋतु के आगमन में पूरे भारत में प्रतिवर्ष
1: अच्छा
0: 1 जुलाई से 7 जुलाई के
1: हाँ
0: बीच
1: सही बोलो।
0: वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता
1: हाँ
0: है ना,
1: ठीक।
0: क्योंकि अभी देखिए ये दीपा बहन, ये जो अभी का मौसम होता है ना, ये मौसम होता है प्रकृति के अंकुरण का। इस समय अगर किसी भी चीज में आप देखिएगा, कोई भी पौधा अगर उपजाना है, किसी भी
1: हाँ
0: मिट्टी में बीज डालना है, तो उस ये
1: बहुत
0: मौसम में
1: जल्दी।
0: अनुकूलन होता है, बहुत जल्दी उनमें अंकुरण होता है और वो अच्छी बढ़त को भी
1: तुरंत
0: प्राप्त होते
1: वह
0: हैं।
1: लहलहाई
0: तो
1: जाए छे।
0: इसलिए जो है ये सप्ताह मनाया जाता है राष्ट्रीय वृक्षारोपण और पर्यावरण
1: हाँ
0: संरक्षण के लिए, ये एक मुख्य अभियान है, और इसका उद्देश्य लोगों में पेड़ों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, वनों के कटाव को रोकना और देश भर में हरियाली को लाना भी
1: सही बोलो।
0: है ना। और वन महोत्सव मनाने की शुरुआत 1950 ईस्वी में उस समय के केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री श्री
1: हाँ
0: मानिक लाल मुंशी द्वारा की गई
1: कर लो
0: थी।
1: प्रश्न। हाँ
0: और दीपा बहन, इस पहल का उद्देश्य यही है कि भारत में हरियाली बढ़े, लोगों को हरियाली, वृक्षों और पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके, है
1: सही
0: ना।
1: हाँ
0: अगर हरा भरा हमारा माहौल होगा और हरी भरी सभी तरफ होगी, तो किसको ये चीज अच्छी नहीं लगती
1: एकदम
0: है
1: एकदम
0: ना। और साथ ही साथ दीपा बहन,
1: हाँ
0: कि पेड़ पौधे अगर आसपास हों तो पृथ्वी का तापमान भी नियंत्रित रखता है,
1: हाँ
0: और साथ ही साथ बादलों को भी ये पेड़ पौधे आकर्षित करते हैं,
1: एकदम।
0: वर्षा भी होती है। आप देखेंगे कि जहां भी पेड़ पौधे बहुत
1: वहां
0: सघन
1: ज्यादा
0: मात्रा
1: पानी
0: में
1: पड़ा
0: होते
1: लगे
0: हैं,
1: छे। हाँ
0: हाँ, वहां पानी भी जल्दी बरसता है और
1: हाँ
0: साथ ही साथ वहां का तापमान भी नियंत्रित
1: थोड़ा
0: रहता है,
1: हाँ ठंडापन वहां पे रहे
0: ठंडापन
1: छे।
0: रहता है। आप
1: हाँ
0: देखिए अभी कहीं भी सड़क पे भी जाएंगे,
1: हाँ
0: आसपास अगर पेड़ों की कतारें होंगी तो आपको
1: तो वहां थोड़ा
0: गर्मी
1: हाँ
0: महसूस कम
1: कम
0: होगी,
1: होइ छे।
0: है ना।
1: हाँ
0: और जहां एकदम मतलब पेड़ पौधे नहीं है तो
1: एकदम नहीं
0: लगता
1: होइ छे। हाँ
0: घुटन जैसी
1: एकदम
0: महसूस
1: सही
0: होगी। तो
1: सही
0: पेड़ पौधे जो है हमारे लिए सच्चे मित्र की तरह होते हैं,
1: हाँ
0: है ना। तो हमें इन्हें जो है, हमें जरूर ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारी हरी भरी धरती जो है पेड़ पौधों के साथ साथ लहलहाती रहे, मुस्कुराती रहे, और हमारे मित्र जो है हमारे अपनी मित्रता हमारे साथ निभाते रहे, है ना। और अभी जो मानसून का मौसम है, तो कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि सभी लोग इस वृक्षारोपण में सहयोग करें। और इस समय कई सारे अभी कई तरह के कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं दीपा बहन,
1: हाँ
0: जैसे कि पूरे राज्य में, देश भर में राज्य सरकारें, स्वयंसेवी संस्थाएं, स्कूल में, कॉलेज में बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया जाता
1: चलाए
0: है
1: छे। हाँ
0: ना। और इसमें प्रधानमंत्री हमारे जो है श्री नरेंद्र मोदी,
1: हाँ
0: उन्होंने भी एक अभियान भी चलाया है, ये एक
1: एक
0: पेड़
1: दिन
0: माँ के
1: माँ के
0: नाम,
1: नाम।
0: है ना। तो ये अगर सच में हम लोग अपने माँ को समर्पित करते हुए एक पेड़ अगर अपने माँ के नाम पे
1: वो बहुत
0: लगाएं,
1: बड़ा बात हो
0: बहुत
1: जाते
0: बढ़िया।
1: सही
0: एक
1: कि
0: एक
1: नहीं।
0: बच्चा, एक
1: हाँ
0: देखिए उससे ये भी होगा कि हर बच्चा एक पेड़ पौधारोपण के प्रति संवेदनशील बन बनेगा और उसे लगे किस प्रक्रिया से पौधों को हम लोग रोपते हैं उसके प्रति वो थोड़ा सा समय
1: रुचि बढ़ते
0: हैं, पानी देगा, उसको बढ़ते हुए देखेगा और फिर थोड़ा बढ़ता है तो वो पौधा, तो वो उसको लगता है कि मैंने इसे रोपा है। ये जो
1: देखो हमरो सनिक अच्छा लगे छे, कोई अगर कोई चीज तो रोपला छो बढ़ता बढ़ता जाता हूं तो हमरा सनिक बहुत अच्छा लगता है। बच्चा सनिक का कहना ना अच्छा लगता
0: है, कैसे नहीं अच्छा लगेगा, है ना। एक पौधा कोई भी हम अगर करेले की बेल भी रोपते हैं और उससे पौधा अगर होता है करेले लगते तो बड़ी खुशी होती है कि ये हमने रोपा है, हमारा लगाया
1: है, फल निकली है।
0: तो अभी इस सप्ताह के दौरान दीपा बहन लोगों को मुफ्त में पौधे वितरित भी किए जाते हैं, जहाँ पे भी सरकारी जगह है वहां से आप चाहें तो मुफ्त में अच्छे अच्छे पेड़ पौधे मिल सकते हैं, जिन्हें आप चाहें कच्ची जमीन है वहां आप रोप सकते हैं और आसपास हरियाली बढ़ाने में मदद भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अभी कई सारे कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं दीपा बहन, जैसे कि चित्रकला, निबंध प्रतियोगिताएं और कई तरह की गोष्ठियां भी आयोजित की जाती है
1: स्कूल कॉलेज से।
0: तो पेड़ पौधों की हम करेंगे रखवाली तभी आएगी सुंदर हरियाली। और एक पौधा लगाएं धरती को हरा भरा बनाए, क्यों दीपा बहन?
1: एकदम एकदम।
0: और दीपा बहन ऐसे देखा जाए तो हम लोग भी इस अभियान में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। देखिए अगर हमारे पास, अगर हम लोग रसोई घर में कुछ जैसे सब्जियां हैं, छिलके हैं, जो आप समझिए कि फेंकने की चीजें हैं हमारी, हम उन्हें कचरे में ना फेंके और किसी कच्ची जमीन में अगर डाल देते हैं दीपा बहन, तो आप देखेंगे कई सारे पौधे अपने आप जड़ पकड़ के
1: उगने लगे।
0: जैसे कि आप देखिएगा कि करेले की बेल तो बहुत आसानी से, पपीते के पौधे हमारे आसपास में कच्ची जमीन है मैं फेंक दिया करती हूँ दीपा बहन, और उसमें कई सारे पौधे निकल आया करते हैं बहुत आराम से। और जो पौधे अपने आप उगते हैं ना दीपा बहन, उनमें जो है एक तरह से आप देखा जाए तो बढ़ने की क्षमता ज्यादा होती है बजाय कि अगर आप रोपते हैं तो।
1: मेहनत करी अगर रोपे, लेकिन बात यह है ना कि मौसम भी होना चाहिए, ये भी जरूरी।
0: तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उन्हें कचरे में न फेंके, हम उन्हें आसपास किसी कच्ची जमीन में डाल दें तो उससे कई सारे पौधे जो बहुत आसानी से लग जाते हैं वो लग जाएंगे। और साथ ही साथ दीपा बहन एक और भी होती है, जैसे कि हमें गुठली वगैरह जो होती है, आम की गुठली भी है, हम उन्हें अपनी छत पर सुखा ले कुछ गुठलियों को, जैसे जामुन की गुठलियां हैं उन्हें हम सुखा ले और फिर थोड़ा सा प्रयास करके थोड़ी सी मिट्टी में उनकी गोली बना ले, और फिर अगर हम कहीं जा रहे हैं रास्ते में वहां पे खेत है, कच्ची जमीन है, जैसे मान लीजिए सरकारी जमीन है, ऐसी बहुत सारी खेतीहर जमीन टाइप की होती है, वहां पर हम फेंक दें तो इस मौसम में वे स्वतः अंकुरित होकर एक विशाल पेड़ बन जाएंगे कुछ समय बाद।
1: तो बहुत अच्छा बात बताई लोगों
0: ने दीपा बहन, और इस तरह से हमारा थोड़ा सा प्रयास हमारी धरती को हरा भरा बनाने में निश्चित तौर पर सहयोग करेगा। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए दीपा बहन, हम करेंगे और निश्चित तौर पर जो है फायदा पहुंचेगा ही। और दीपा बहन आज एक और दिवस भी है, महत्वपूर्ण दिवस है वो भी, और साथ ही साथ इससे जुड़ा हुआ भी है, आज है विश्व प्लास्टिक निषेध दिवस, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है दीपा बहन, आप एक चीज देख रहे हैं कि अगर हमारी पृथ्वी को उसके संरक्षण करने में कुछ अगर बाधक है तो प्लास्टिक कचरा,
1: एकदम एकदम,
0: है ना। तो ये हमें चाहिए कि आज विश्व प्लास्टिक निषेध दिवस पर हम भी ये प्रण लें कि प्लास्टिक पर अपनी निर्भरता कम से कम करें,
1: थोड़ा कम करें, ज्यादा नहीं कर सके थोड़ा
0: कोशिश
1: सा
0: करेंगे कि हम कम करें, क्योंकि जो है अगर प्लास्टिक कचरा हम कम कर पाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारी पृथ्वी जो है
1: बहुत बड़ा इंसान की तरफ से एक जीत होती
0: है पृथ्वी वास्ता निश्चित तौर पे। तो हम ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम घर के बने हुए कपड़े के थैले का प्रयोग करें, या फिर हम जो है एक किसी भी तरह की जो है ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक को ना फैलाएं, उन्हें अगर कहीं रखना भी है तो पृथ्वी पर यत्र तत्र न डालें, नदियों में ना बहाएं, ये प्रयास तो हमारी तरफ से हो ही सकता है दीपा बहन। दीपा बहन तो बातें हमारी आगे बहुत सारी है,
1: एकदम एकदम।
0: पहले थोड़ा रुकते हैं, संदेशों को सुनते हैं और फिर सुनते हैं एक मधुर शिव भजन
1: जरूर।
2: सुनो ना,
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
3: तो रोका किसने है, हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: जी दीपा बहन,
1: कितना बढ़िया लग रहा है,
0: बहुत ही अच्छा सा लगा। और दीपा बहन, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी पृथ्वी कैसे हरी भरी हो। और एक बात जानती है दीपा बहन कि जैसे हरियाली वगैरह भी और तभी अच्छी लगती है जब हमारे आसपास साफ सफाई हो, स्वच्छता हो।
1: सही बोल,
0: किसी भी चीज को हमें समय समय पे साफ करते रहना, स्वच्छ करते रहना
1: बहुत जरूरी
0: जरूरी है। और ये भी एक बात है दीपा बहन की, स्वच्छता में ही देवत्व का निवास होता है। जहाँ साफ सफाई होती है कहते हैं वही भगवती माई भी निवास करती है।
1: आदमियों ने जाना पसंद करे छे कचरा कूड़ा में
0: नहीं, इसीलिए जो है कहीं भी देखिए आप, एक चीज ये भी देखिए कि हम जब कोई त्योहार मनाते हैं, कुछ भी मनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग साफ सफाई करते हैं।
1: और हमें सुनने का कितना अच्छा लगे,
0: अच्छा लगता
1: की सफाई हो गई।
0: और ये भी एक शोध से पता चलता है कि जहाँ पर सफाई होती है वहाँ लोग कम बीमार पड़ते हैं, है ना, बजाय कि जहाँ पर की गंदगी होती है, गंदगी वाले माहौल में बच्चे लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता
1: मच्छर
0: कमजोर
1: भी प्रकार के, कीड़ा मकोड़ा।
0: तो इतने अच्छे विषय पर आइए ना दीपा बहन, एक पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से थोड़ा विस्तार से जानते हैं।
1: हाँ जरूर।
2: पानी, पेड़ और शुद्ध हवा, जीवन की अनमोल दवा। जी हाँ, स्वच्छता शारीरिक हो या मानसिक, वातावरण को निर्मल बनाती है। सामान्य तौर पर स्वच्छता भरा माहौल किसी भी व्यक्ति के अंदर खुशहाली, आत्मविश्वास एवं सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर एक पहचान दिलाता है। स्वच्छता का स्वास्थ्य, गरीबी, खुशहाली, कुपोषण जनित बीमारी, कार्य क्षमता, उत्पादन क्षमता, कार्य गुणवत्ता, मृत्यु दर, महिलाओं की प्रजनन क्षमता आदि से सीधा संबंध है। हमारे देश में सफाई का उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा इससे प्रति जनमानस में जागरूकता पैदा करना एवं इससे जुड़े आर्थिक एवं सामाजिक पहलुओं को समझाना है। मानव सभ्यता और संस्कृति आरंभ से ही सफाई, सच्चाई एवं पवित्रता पर जोर देती रही है। स्वच्छ हवा, पानी एवं जमीन मानव सभ्यता की मूल आधारभूत आवश्यकताएं हैं। मानव सभ्यता हमेशा इन मूलभूत आवश्यकताओं की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकती रही है। दुनिया की तमाम मानव सभ्यताएं वहीं बसी और पनपी जहां ये तीनों मूलभूत तत्व शुद्ध तौर पर उपलब्ध रही। लेकिन जहां इन मूलभूत तत्वों में से किसी एक तत्व का भी अभाव रहा, वहां की सभ्यता या तो खत्म हो गई या फिर उजड़ गई। भारतीय मानव सभ्यता एवं संस्कृति में पवित्रता एवं शुद्धता को विशेष स्थान प्राप्त है, जिसका अस्तित्व स्वच्छता से जुड़ा है। मगर जिस नदी, तालाब आदि जलाशयों के किनारे हम श्राद्ध जैसी कई अन्य धार्मिक क्रियाएं करते हैं, जिन जलाशयों के जल से हम आचमन करते हैं और अपने आप को पवित्र करने के विचार से नहाते हैं, आज हम उसी जलाशयों को गंदा करने से तनिक भी हिचकिचाते नहीं। हम इन्हीं जलाशयों में गांव, शहर के नाले का गंदा पानी, कल कारखानों आदि का गंदा पानी बहाने से तनिक भी बाज नहीं आ रहे। अतः ऐसे उद्योग धंधे जो गंदगी फैलाता हो उसे या तो बंद करवा देना चाहिए या फिर ऐसे उद्योग धंधे करने वालों से सफाई की लागत वसूल कर समुचित सफाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। हमारा समाज जितना व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक व गंभीर दिखता है, उतना जागरूक व गंभीर सामाजिक स्वच्छता के प्रति नहीं दिख रहा। हम यह बात भूल रहे हैं कि स्वच्छता का जितना गहरा संबंध व्यक्तिगत है, उतना ही गहरा संबंध सामाजिक भी है। यदि हमारा घर स्वच्छ हो और समाज स्वच्छ ना हो, तो भी हमें अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जल, थल एवं हवा के स्वच्छ रहने से ही मानव जीवन सुखी एवं शांत रहता है। अगर हमारा परिवेश गंदा व दूषित होगा तो हम निश्चित तौर पर बीमार एवं परेशान रहेंगे। अतः हमें यह समझना जरूरी है कि जितनी साफ सफाई घर के भीतर जरूरी है, उतनी ही सफाई घर के बाहर भी जरूरी है। घर के आसपास के गड्ढों में पानी जमने, नाले की सफाई नहीं होने, खुले में शौच करने, मुर्गी पालन ऐसी उद्योग धंधे जो वायु प्रदूषण एवं मच्छर उत्पन्न होने की संभावना को बढ़ाती है, और डायरिया, हैजा, कोलरा, मलेरिया, चेचक जैसी घातक जानलेवा बीमारियों को उत्पन्न करता है। हमें ऐसे चीज़ों से बचने का उपाय ढूंढना चाहिए। हमें अपने सामाजिक परिवेश को स्वच्छ रखने में अपने क्रियाकलापों एवं आवश्यकताओं के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा। कई लोग तो स्वच्छता एवं निर्धनता का सीधा संबंध बताते हैं, पर यदि हम गहराई से सोचें तो ऐसी बात नहीं है। स्वच्छता का संबंध तो हमारी आदत एवं सोच से है, अतः हमें अपनी सोच व आदत को बदलने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें विद्यालय स्तर पर भी स्वच्छता का अभियान चलाकर स्वच्छता के महत्व की शिक्षा बच्चों में दी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, लोग आमतौर पर सड़क, बाग बगीचे, सार्वजनिक स्थलों आदि जगहों पर फास्ट फूड के पॉलीथीन के पैकेट, प्लास्टिक के बोतल, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाकर जहाँ तहाँ थूकते फेंकते शानपूर्वक नजर आते हैं। प्रायः सार्वजनिक स्थानों पर तो कूड़ा का ढेर सा नजर आता है, पर लोग अपने घर का कूड़ा कचरा अपने ही घर के सामने सड़क पर फेंकते भी बाज नहीं आते। इससे न केवल पशु पक्षी बल्कि जनमानस प्रभावित हो रहे हैं। हमारी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी अतिरिक्त भार बढ़ता जा रहा है। इससे व्यक्ति की उत्पादन क्षमता एवं देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। जिस धनराशि का उपयोग देश के विकास के लिए होना चाहिए था, उस धनराशि का उपयोग ना कहकर मैं कहूँ कि ये खर्च और बर्बादी गंभीर बीमारियों और अन्य समस्याओं के पीछे हो रही है। दुनिया भर में खुले शौच करने वालों की 60% आबादी हमारे देश में बसती है, जो बड़ी ही शर्मसार करने वाली बात है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि शौचालय निर्माण के बावजूद भी हमारे देश की एक बड़ी आबादी अब भी खुले में शौच करना पसंद करती है, जिसके दुष्परिणाम के बारे में हमें उन्हें आगाह करना होगा और शौचालय इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना होगा, तभी हमारा सार्वजनिक स्थल स्वच्छ रह सकता है। हमारे सार्वजनिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के गंदगी से भरे होने के कारण हमारा पर्यटन उद्योग भी काफ़ी प्रभावित हो रहा है। हमारे देश में हर वर्ष लाखों सैलानी हमारे देश के ऐतिहासिक स्थलों को देखने और घूमने आते हैं, पर वो यहाँ के ऐतिहासिक धरोहर की याद के साथ यहाँ के गंदगी की यादों को भी साथ लेकर जा रहे हैं। हम ऐसे सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने या करने की कोशिश अपनी ओर से बिल्कुल नहीं करते। हम ऐसा मानते हैं कि इन जगहों की साफ सफाई की जिम्मेदारी तो सरकार की है। आज हमारा देश शहरीकरण अर्थव्यवस्था में तेजी से विकसित हो रहा है। गांव कस्बों में, कस्बे नगरों में और नगर महानगरों में तेजी से तब्दील हो रहे हैं। शहरों में झुग्गी झोपड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे शौच, पेयजल एवं स्वच्छता की एक बड़ी गंभीर समस्या उभर कर हमारे सामने आ रही है। इन समस्याओं से निपटने के लिए खासकर हमारे गांव एवं शहरों के नवयुवकों को सामने आना होगा, जो स्वच्छता के महत्व के बारे में घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर सके। जो लोग कूड़ा, कचरा, गोबर या अन्य घरेलू गंदगी इधर उधर फेंकते हैं, उसे एक गड्ढे में एकत्रित कर खाद के रूप में परिवर्तित करने की सलाह एवं जानकारी दी जानी चाहिए। हालांकि गंदगी से दूर रहने की उपयुक्त विधि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हमें बहुत पहले ही सुझाया है, पर हमने उनकी बातों पर आज तक कोई विशेष अमल नहीं किया। लेकिन अब देर करने का वक्त नहीं, हमें अतिशीघ्र गांधी जी के विचारों को अमल करना चाहिए, तभी हम अनेकों बीमारी व प्रदूषण से मुक्त हो सकते हैं। साथ ही हमारे खेत को स्वतः बिल्कुल मुफ्त उपजाऊ खाद मिल सकेगा और हमारा कृषि उत्पादन भी अच्छी खासी वृद्धि हो जाएगी। अंततः मैं कहना चाहूँगा कि हम में से प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता के महत्व को गहराई से समझना होगा और प्रण करना होगा कि ना तो वह स्वयं गंदगी को फैलाएगा और ना ही दूसरे को फैलाने देगा, तभी हमारा देश एक स्वच्छ एवं समृद्धशाली देश की श्रेणी में खड़ा हो।
0: जी देखिए दीपा बहन, कितनी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई कि ये हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है,
1: सबकी जिम्मेदारी है, हाँ।
0: साफ रहे, स्वच्छ रहे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करे,
1: एकदम
0: है ना। सभी मिलकर अगर सोचेंगे तो निश्चित तौर पे जो सफाई है एक मूल मंत्र की तरह हम जीवन में धारण करेंगे और हमारा जीवन जो है सुखमय रहेगा, स्वस्थ रहेगा। चलिए दीपा बहन, आगे बढ़ते हैं, एक बढ़िया सा गोदना गीत सुनते हैं।
1: हाँ जरूर।

0: जी दीपा बहन,
1: बहुत बढ़िया लगले।
0: बहुत बढ़िया लगा। और आइए अब थोड़ा मौसम संबंधी जानकारी
1: जरूरी छे।
0: तो मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में 1 से 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है।
1: अच्छा।
0: बांका, गया, रोहतास और कैमूर में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: अच्छा।
0: अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है।
1: अच्छा।
0: सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है।
1: अच्छा।
0: और इस अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलने की संभावना है। और अभी मॉनसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसानों को यह सलाह दी जाती है।
1: अच्छा।
0: कि जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्म का बिचड़ा गिरा दें।
1: अच्छा।
0: और बीज स्थल में नमी बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार जीवन रक्षक सिंचाई करें।
1: अच्छा।
0: धान की किस्मों जैसे कि सबोर मोती धान, सबोर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। और मोटे अन्नों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़ुआ RU 8, RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 किस्मों की बुआई कर सकते हैं।
1: अच्छा। कुछ फसल के सलाह छे कि खरीफ मक्का के बुआई आसमान साफ रहला पर ही करना छे।
0: जी।
1: आ खेत के जुताई में 10 से 15 टन गोबर के सरलो खाद प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करना छे।
0: जी।
1: बुआई के समय प्रति हेक्टेयर

0: हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फूर आरु 50 किलो पोटास के व्यवहार करना छे। अनुशंसित मक्का के किस्म जेना कि सुवान, देवकी, शक्तिमान एक, शक्तिमान दो, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11, 6।
1: और उचास जमीन में अरहर की बुआई के लिए खेत की तैयारी आसमान साफ रहने पर ही करें। बहार पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2 किस्मों की बुआई 60 और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर है। और मूंग की तैयार फलियां जो है दीपा बहन, उसकी तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। और जो कि सब्जियां हैं भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ, लौकी, इनकी फसलों में निराई गुड़ाई करते रहें, खरपतवार नियंत्रण करें और पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें। और अगर प्रकोप हो जाए तो डाइमेथो 8-30 सीसी का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें आसमान साफ रहने पर। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी तैयारी करें आसमान साफ रहने पर। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए N53 एग्रीफाउन डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर किस्में अनुशंसित हैं। प्याज की बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने से पहले बीजोपचार कर लें। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर है। है ना। और दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों पर रखें और पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ और ताजा पेयजल उपलब्ध कराएं, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है दीपा बहन। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीका कराने की भी जरूरत है। और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। अब आगे बढ़ते हैं दीपा बहन और सुनते हैं एक अच्छा सा कृषि गीत।
0: हाँ जरूर।

0: जी दीपा बहन, कितने अच्छा कृषि
1: सुना, बढ़िया लग ले
0: बहुत ही अच्छा। और दीपा बहन हाँ? अभी देखिए एक अभी पानी और इसका मौसम है बूंदी का
1: हाँ?
0: तो एक बात हम लोग अक्सर देखते हैं कि बिजली
1: हाँ?
0: बहुत चमकती है
1: हाँ?
0: है ना, और जब बिजली चमकती है दीपा बहन तो सच बताएं कि हम लोग
1: ज्यादा डर लगे,
0: क्योंकि जब बहुत तेज बिजली गिरती है चमकती है और कहीं गिर जाती है तो वो बहुत एक
1: हम तो घर में बैठलो बैठलो डरे छे। आदमी सिनी खेत में काम करी रहलो छे वहाँ गाय गोरु सुनी छे तो उकरो की हालत होता
0: बहुत होते। तो जरूरी है कि देखिए उस समय कई सतर्कता रखने की जरूरत
1: हाँ।
0: है। और ये जरूरी तो आपने कहा अच्छी बात कही, ये जब हमारे किसान भाई बहन हम लोग काम करते हैं
1: हाँ,
0: खेतों
1: हाँ।
0: में और अगर वहाँ पानी हो, जैसे धान रोप रहे हैं या हाँ। धान बो रहे हैं, पानी है खेत में, तो तुरंत हमें वहां से निकल कर किसी सुरक्षित जगह पे जाना जरूरी है।
1: ये हो नहीं कि पेड़ के नीचे जाकर खड़ा,
0: नहीं नहीं
1: हो नहीं,
0: पेड़ों के अगर पेड़ बहुत ऊंचा है तो कतई नहीं, और पेड़ अगर जर्जर है तो उसके नीचे बिल्कुल भी नहीं हमें चाहिए। ये हमें सावधान,
1: ज्यादातर आदमी से नहीं वही काम करी रहे,
0: नहीं नहीं नहीं ये बहुत ही खतरे की बात हो सकती
1: हाँ।
0: है और हो सकता है कि पेड़ पर बिजली गिर जाए, तो वहां वैसे जगह पे नहीं, किसी अच्छे पक्के मकान के नीचे शरण लेनी चाहिए और पानी से तो तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि पता है दीपा बहन
1: हाँ, हाँ।
0: पानी भी जो बिजली का अच्छा सुचालक होता है, तो जहाँ पानी पर भी बिजली गिर सकती है और हमें वो जो स्पर्श घाट तो जो कहते हैं ना वो भी इससे लग सकता है, करंट लग सकता है। और साथ ही साथ दीपा बहन जो हमारे पशु हैं जो कि मूक है उनका भी वज्रपात से नुकसान हो सकता है, तो उनको भी बचाओ
1: हाँ।
0: जैसे हम लोग ठनका कहते हैं
1: हाँ, हाँ,
0: बोलचाल की भाषा में, तो ठनका से हमारे पशु भी बचे इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए
1: हाँ।
0: तो इसके लिए जैसे कि जो भी कुछ बिजली के जैसे कि होते खंबे वगैरह या कई यंत्र वगैरह होते हैं
1: हाँ।
0: हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जब पानी बरस रहा है, बिजली चमक रही है, उस समय हमारे पशुओं को हम उनसे थोड़ा दूर बांधें, उनके पास में न रहें। और साथ ही साथ दीपा बहन
1: हाँ।
0: जैसे कि होता है नाद है धातु की बनी हुई
1: अच्छा।
0: और उसमें पशु खा रहे हैं
1: हाँ।
0: तो वैसा भी नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ दीपा बहन कई बार क्या करते हैं कि कृषक भाई बहन हमारे किसी बिजली के खंबे से गाय बैल को
1: बांध ही दे
0: है ना,
1: सही है
0: तो
1: बोल
0: वो बहुत ही नुकसानदेह हो सकते हैं। धातु के जैसे खंबे से तो नहीं ही, बिजली के खंबे, टेलीफोन के खंबे, कभी भी इन पशुओं को हमें इनसे बांधना नहीं चाहिए। जब बिजली चमक रही हो तो ये बहुत घातक हो सकता है,
1: आदमी से जाने जो हल्के में ले लीजिए
0: नहीं। और साथ ही साथ दीपा बहन
1: हाँ।
0: किसी ऊंचे पेड़ पर
1: हाँ।
0: उससे भी नहीं बांधना चाहिए, जैसे ताड़ का पेड़ है

0: उससे बांध दिए, तो नहीं ये घातक हो सकता है, बिजली गिर सकती है, तो हमारे पशुधन जो है उनका भी नुकसान होगा। तो जरूरी है कि हम उनसे ना बांधे। और साथ ही साथ दीपा बहन, अगर पानी का समय है, पानी बरस रहा है और हमारी भैंस जैसे तालाब के अंदर है,
1: अच्छा।
0: तो हमें चाहिए कि हम, जैसे हमारे लिए खतरा है,
1: हाँ।
0: हमारे पशुओं को भी खतरा है,
1: एकदम।
0: तो हम तालाब से अपने पशुओं को निकाल
1: तुरंत निकाल
0: तुरंत निकाल कर सुरक्षित कोई सेड जैसे जहाँ पे हम रखते हैं उनको, वहां पहुंचा देंगे। और ये जरूरी है कि अगर अगर भगवान न करे, लेकिन हमारे पशु अगर कहीं बिजली से कहीं झटके उनको लग गए हैं, घायल हो गए हैं, तो हमें कोशिश होनी चाहिए कि हम तुरंत जो पशु चिकित्सालय है वहां हम जाएं और पशुओं की देखरेख जहां वहां होती है वहां पर चिकित्सक से संपर्क करें,
1: एकदम,
0: है ना। अगर हम सुरक्षित, खुद के लिए भी सुरक्षा हमारे लिए जरूरी है, साथ ही साथ हमारे जो पशुधन
1: पशु,
0: है वो भी सुरक्षित रहे, ये भी हमारी जिम्मेदारी है बहन। क्योंकि हम सुरक्षित रहेंगे तो हम अपने परिवार के लिए भी सब कुछ है सुरक्षित है, और हमारे पशु जो है हमारी संपत्ति है, और हमारे उनका सुरक्षित रहना हमारे लिए तो
1: बहुत जरूरी है। हाँ।
0: तो दीपा बहन, इन बातों का हम सबको बहुत ही जरूरी ध्यान रखना चाहिए, खास करके इस बूंदी पानी वाले दिन में, है ना।
1: हाँ।
0: तो ध्यान रखेंगे हम इन बातों का। और बात जब चलिए पशुधन की,
1: हाँ।
0: तो हमारे पशुओं को देखिए टीका लगवाना भी बहुत जरूरी है, है ना। कई सारी घातक बीमारियों से हम उन्हें बचा सकते हैं दीपा बहन।
1: हाँ।
0: तो आइए इसी विषय पर एक बढ़िया से जानकारी वाली वार्ता हम सुनते हैं।
2: हमारा देश भारतवर्ष हमेशा से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ की अधिकांश आबादी का जीवन यापन कृषि और पशुपालन पर आधारित है। आज भी पशुपालन न केवल कृषि का अभिन्न हिस्सा है, बल्कि देशवासियों के लिए खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से पोषक आहार उपलब्ध कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसान बंधुओं के द्वारा दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य को बनाए रखना पशुओं के साथ साथ इंसान के लिए भी अति आवश्यक है। दुधारू पशुओं के सफल प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि पशुपालकों को पशु के स्वास्थ्य, रोग, लक्षण, टीकाकरण और बचाव के हर पहलू की समुचित जानकारी हो। दुधारू पशु को अगर उचित आवास के अंतर्गत समुचित आहार व्यवस्था के साथ समय से टीकाकरण और कृमिनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाए तो स्वस्थ दूध उत्पादन के साथ साथ किसानों के आय में काफ़ी वृद्धि होगी। सर्वप्रथम हम यह जान लें कि टीका और टीकाकरण किसे कहते हैं। टीका वह पदार्थ है जिसमें हम रोग करने वाले जीवाणु, विषाणु एवं प्रोटोजोआ को असक्रिय अवस्था में पशु के शरीर में डालते हैं, और यह शरीर में जाने के बाद रोग प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करता है जो पशुओं को रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, एवं पशु में टीका लगाने की विधि को टीकाकरण कहते हैं। बीमारी की प्रत्याशा में सुरक्षा प्रदान करने के लिए टीकाकरण किसी रोग विशेष से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह पशुओं के फार्म पर अच्छी साफ सफाई और स्वच्छता का विकल्प नहीं हो सकता। हर संभव रोगों के प्रसार को यह रोकता है। दुधारू पशु में टीकाकरण के साथ साथ कृमिनाशक दवाओं का प्रयोग भी अत्यंत आवश्यक है। सामान्यतः टीकाकरण से दो से तीन सप्ताह पहले पशु में कृमिनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। प्रत्येक किसान को अपने जानवरों के उत्पादन और अधिकतम लाभ बनाए रखने के लिए कीड़े से मुक्त रखना चाहिए। युवा जानवरों को हर महीने डिवर्मिंग किया जा सकता है, वहीं वयस्क जानवरों को 4 से 6 महीने के अंतराल पर डिवर्मिंग किया जा सकता है। बच्चा देने के 15 से 20 दिन बाद गाय और बछड़ा दोनों को कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। एक खेत के सभी जानवरों को टीकाकरण से 21 दिन पहले ऑक्सीक्लोजानाइड और लिवामिजोल से डिवर्मिंग किया जाना अच्छा होता है। मवेशी या अन्य पशुधन के बीमार हो जाने पर इनका इलाज कराने में किसान बंधुओं को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए पशुधन को हमेशा तंदुरुस्त बनाए रखने का इंतजाम करना ज़्यादा अच्छा है। कहावत भी प्रसिद्ध है, समय से पहले चेते किसान और बचाव हमेशा इलाज से बेहतर है। मवेशियों के कई तरह के रोग फैलते हैं। मोटे तौर पर इन्हें निम्नलिखित श्रेणी में बाँटा जा सकता है। पहला रोग है संक्रामक रोग या छूतही बीमारी, दूसरा है सामान्य रोग या आम बीमारी, और तीसरा है परजीवी जन्य रोग। संक्रामक रोग संसर्ग या छुआछूत से एक मवेशी से अनेक मवेशियों में फैल जाते हैं। ये छूतही बीमारी आमतौर पर महामारी का रूप ले लेता है। संक्रामक रोग प्रायः विषाणुओं, जीवाणुओं या प्रोटोजोआ के द्वारा फैलाया जाता है, लेकिन अलग अलग रोग में इनके प्रसार के रास्ते अलग अलग होते हैं। दुधारू पशुओं में जिन प्रमुख रोगों को देखा जाता है, जिनके लिए टीकाकरण आवश्यक है, वो रोग इस तरह से हैं। सबसे जरूरी है कि हम एक

विषाणु जनित रोग, खुरहा और मुखपका जो कि सामान्य रूप से देखा जाता है, ठंडी के दिनों में तेजी से फैलता है। यह विषाणु जनित रोग है और यह यदि पशु को प्रभावित कर देता है तो उसका इलाज मुश्किल होता है। इसलिए 4 महीना से ऊपर के सभी पशु में प्रतिवर्ष यह टीका लगवाना चाहिए। दूसरी बीमारी है गलघोटू, जिसे हेमराजिक सेप्टिसीमिया भी कहते हैं। इसका इन्फेक्शन जीवाणु के द्वारा पशुओं के गले में हो जाता है, ट्रेकिया में, जिसके चलते खाना खाने में दिक्कत होती है और पशु भूखा रहने लगता है, तेज बुखार रहता है और अंत में मृत्यु हो सकती है। इसलिए 6 महीने से ऊपर प्रत्येक पशु को प्रतिवर्ष यह टीका लगवाना चाहिए। उसके बाद एक बीमारी है जिसे जहरवाद या ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता है। इसे लंगड़ी बीमारी भी कहते हैं। यह जीवाणु क्लॉस्ट्रिडियम चौभाई के द्वारा फैलाया जाता है, जिसमें सामान्यतः जवान पशु बहुत प्रभावित होते हैं। उनके पैरों में मांस सड़ने लगता है और वह मांस काला पड़ जाता है, इसलिए ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता है। समय से इलाज किया जाए तो पशु बच सकता है, पर यह बड़े पैमाने पर फैलता है। इसीलिए 6 महीने से ऊपर सभी पशु को प्रतिवर्ष यह टीका लगवाना चाहिए। उसके बाद एक बीमारी है जिसे ब्रुसेलोसिस के नाम से जाना जाता है। इसे संक्रामक गर्भपात भी कहते हैं। यह सभी पशुओं को प्रभावित करता है। उसके साथ साथ यह पशुओं से मनुष्यों में भी फैल सकता है और आदमी में जब इसका इन्फेक्शन होता है तो उसे माल्टा फीवर या अंडुलेंट फीवर के नाम से जाना जाता है। इसलिए 4 से 8 महीने की आयु के जितने भी बाछी होती है उसको जीवन में एक बार जरूर इसका टीका लगवाना चाहिए। उसके बाद है एक बीमारी, प्रोटोजोन बीमारी है, थाइलेरियोसिस। यह एनीमिया करता है पशु में, जिसके चलते पशु कमज़ोर पड़ जाता है। यह क्रॉस ब्रीड नस्ल में बहुत देखने को मिलता है, इसलिए 3 महीने से ऊपर के सभी पशु में यह इस रोग का टीकाकरण जरूर लगना चाहिए। उसके बाद एक बीमारी जिसे गिल्टी रोग या एंथ्रैक्स रोग कहते हैं। यह बीमारी भी पशुओं से आदमियों में फैल सकता है, इसलिए प्रत्येक पशु में 4 महीने से ऊपर के उम्र में यह प्रतिवर्ष एक टीका लगवाना चाहिए। उसके बाद है एक इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रेकियाइटिस। इस रोग का प्रकोप अधिकतर विदेशी नस्ल की या क्रॉस ब्रीड में देखने को मिलता है। इसका भी टीकाकरण प्रति 6 माह में एक बार करना आवश्यक होता है। एक और बीमारी जो हम लोग सभी जानते हैं, यह कुत्ते के काटने से फैलता है। संदिग्ध कुत्ता या रोगी कुत्ता जिसमें रेबीज का इन्फेक्शन हो अगर किसी पशु को काट लेता है तो काट लेने के तुरंत बाद उसी दिन एक इंजेक्शन पड़ता है। उसके बाद 4थे दिन, 7वें दिन, 15वें दिन, 27वें दिन और 90वें दिन पर इंजेक्शन पड़ने से पशु को बचाया जा सकता है। दुधारू पशु की श्रेणी में आने वाले अन्य पशु जैसे बकरी, भेड़, उनके लिए भी कुछ अन्य टीका और जरूरी है, जिसे PPR या पेस्टिस रूमिनेंट्स रोग के नाम से जाना जाता है। ठंडी के समय में देखा जाता है कि बकरी में तेज़ी से निमोनिया होता है, नाक से पानी गिरता है और पतला पैखाना होता है और स्किन से हेयर का लॉस होने लगता है। ऐसे में बकरी को बचाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए 3 महीने से ऊपर प्रत्येक बकरी को प्रति 3 साल में एक बार टीका जरूर लगवाना चाहिए। उसके बाद एक और बीमारी है इंट्रोटॉक्सीमिया, ET बीमारी कहते हैं। यह पेट में जहर प्रोड्यूस करता है, जिसके चलते एक स्वस्थ पशु की भी मृत्यु हो जाती है। इसका प्रकोप बरसात के दिनों में अधिकतर देखने को मिलता है, इसलिए 4 महीने से ऊपर के सभी भेड़ बकरियों में मानसूनी समय से पहले मई जून में इसका टीकाकरण जरूर लगवाना चाहिए। एक और बीमारी बकरियों में अधिकतर देखने को मिलती है, जिसका नाम है कैप्राइन प्लूरोनिमोनिया। इस बीमारी में भी पशुओं की मृत्यु होती है और इसलिए इसको 3 महीना से अधिक उम्र के सभी पशुओं को टीका लगवाना चाहिए। पशुओं में टीकाकरण के दौरान निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि टीकाकरण के समय पशु अच्छे स्वास्थ्य में होना चाहिए, निर्धारित किए गए टीकों की शीत श्रृंखला जहाँ तक हो बनाए रखनी चाहिए, महामारी की स्थिति में पशुओं के आवागमन पर समुचित नियंत्रण और रोकथाम होना चाहिए, टीकाकरण और खुराक पर निर्माता के निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, बीमारी के संभावित होने से कम 1 महीना में टीकाकरण किया जाना चाहिए। उन्नत गर्भावस्था में जानवरों के टीकाकरण से बचा जा सकता है, हालांकि ज़्यादातर मामले में कुछ भी अप्रिय नहीं देखा जाता है। यदि किसान के बथान पर या आस पड़ोस में बीमारी फैल चुका हो तो टीकाकरण नहीं कराना चाहिए। सतर्क रहकर पशुधन की देखभाल करने वाले पशुपालक बीमार पशु को झुंड से अलग करके अन्य पशुओं को बीमार होने से बचा सकते हैं। रोगों का प्रकोप कमजोर मवेशियों पर ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी खुराक ठीक रखने पर उनके भीतर रोगों से बचाव करने का ताकत पैदा हो जाता है।
बथान की साफ सफाई, परजीवी से फैलने वाले रोगों तथा छुती बीमारियों से मवेशियों की

0: रक्षा करता है। पशुधन के लिए साफ सुथरा और हवादार बथान, संतुलित खान पान, उचित देखभाल का इंतजाम करने पर उनके रोगग्रस्त होने का खतरा कम हो जाता है। बथान की नियमित सफाई, समय समय पर रोगनाशक दवाएं जैसे फिनाइल, लाइम, ब्लीचिंग पाउडर आदि से के घोल से पशु के आवास की धुलाई करनी चाहिए। मवेशियों में फैलने वाले अधिकतर संक्रामक रोग यानी स्थानिक रोग होते हैं। ये बीमारी एक बार जिस स्थान पर जिस समय फैलती है उसी स्थान पर उसी समय बार बार फैला करती है, इसलिए समय से पहले ही मवेशियों को टीका लगवाने का इंतजाम करना जरूरी है। और अंत में सबसे आवश्यक बात है कि बिहार सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा हर वर्ष निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है, इसलिए सभी किसान बंधुओं से कहना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के तहत निश्चित रूप से अपने पशुओं को टीका लगवाएँ।
1: जी दीपावन, कितनी अच्छी जानकारी हमें मिली। तो हमें सारे अपने जितने पशु हैं समय समय पे उनका टीकाकरण जरूर कराते रहना। हाँ, और साथ ही साथ दीपावन, इसके साथ कार्यक्रम का समय भी समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे ढेर सारी बातों और जानकारियों के साथ। विदा दे सबों को कमली का नमस्कार,
2: सभी का दीपा के भी नमस्कार।

ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में 2,64,00,000 वोटरों की जांच के लिए घर घर पहुंच रहे बीएलओ। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, फॉर्म में गड़बड़ी होने पर घबराए नहीं मतदाता। नई दिल्ली में आयोजित 16वें वित्त आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल हुई मंत्री दीपिका पांडे सिंह, झारखंड को मिलेगा 14,231 करोड़ रुपए का अनुदान। राज्य की कानून व्यवस्था पर भाजपा हमलावार, अमर बाउरी ने जमशेदपुर बंद की सफलता को बताया सरकार के खिलाफ जन आक्रोश। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने रांची में किया साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन। सांसद महुआ माझी ने केंद्र से की कड़े कानून बनाने की मांग। और राज्य में मानसून सक्रिय, अगले 5 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। 6 जुलाई को रांची और हजारीबाग में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में 30 जून से 29 जुलाई तक मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान चल रहा है, जिसके तहत बीएलओ घर घर जाकर 2,64,00,000 वोटरों की जांच कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने लोगों से अपील की है कि QR कोड वाले प्रपत्र को सावधानी से भरें और हस्ताक्षर कर रसीद लें।
1: एक एक वोटर के लिए अलग अलग गणना प्रपत्र रहती है, उसके QR कोड के साथ उनका फोटो के साथ में सही रहती है। एप्लीकेंट बनने के समय कुछ गलती हो गया तो उसका वहाँ पर BLO उसका भी सुधार करने के। फिर भी उसका कोई वोटर का डरने के लिए आवश्यक नहीं है। आप फॉर्म में कोई गलती है नोटिस एंड हियरिंग पीरियड में भी उस सुधार कर सकते हैं। आप सिग्नेचर करके BLO के पास जमा करने के बाद BLO से दूसरा कॉपी से एक रिसिप्ट ले लीजिए, आपका ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक रोल में आपका नाम आएगा।
0: केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की गई। कार्यशाला में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी शामिल हुईं। उन्होंने बताया कि झारखंड को वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच लगभग 14,231 करोड़ रुपए की अनुदान राशि मिलेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर बाउरी ने जमशेदपुर हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। रांची में प्रेसवार्ता आयोजित कर उन्होंने कहा कि इस घटना ने कानून व्यवस्था

0: समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNewsRanchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के पुराना विधानसभा परिसर में आज विधायकों के लिए साइबर एवं डिजिटल सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद महुआ माजी और विधायक सीपी सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। विधानसभा अध्यक्ष और सांसद महुआ माजी ने साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से कानून को और अधिक सख्त बनाने की मांग की।
1: बहुत ही चिंता का विषय है, इन दिनों जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है और शायद ही कोई ऐसा घर है जहां के लोग इससे त्रस्त ना हो, तो इसके लेकर मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो लोग इस तरह का फर्जीवाड़ा करते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो धाराओं को इस तरह से लगाना होगा कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।
0: पलामू जिला प्रशासन के जन समाधान कार्यक्रम के तहत मेदिनी नगर की पूजा कुमारी की 30 साल पुरानी जमीन विवाद की समस्या का महज 24 घंटे में समाधान कर दिया गया। पूजा ने बताया कि उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के निर्देश पर 1996 से लंबित ऑफलाइन जमीन रसीद को तत्काल ऑनलाइन जारी किया गया, जिससे अब उन्हें प्रमाण पत्र और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।
2: 30 साल से जो मेरे जमीन थे उनका रसीद नहीं कट रहा था, बहुत टाइम से मैं परेशान थी, तो मैंने डीसी सर से आकर के मिला और उन्होंने फिर फॉरवर्ड किया एसी सर को, तो मेरा काम हो गया। काफी परेशानी हुई थी, जैसे मुझे जमीन से ही कुछ काम करवाने हो तो उसमें रसीद क्लियर चाहिए, या फिर मुझे ओबीसी बनवाना हो तो उसमें भी रसीद क्लियर चाहिए।
0: पत्र सूचना कार्यालय रांची द्वारा जमशेदपुर में वार्तालाप 2026 मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में लगभग 70 पत्रकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे किसान सम्मान निधि, ड्रोन दीदी और मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर विस्तृत चर्चा की। इसके साथ ही विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका और पत्रकार कल्याण योजनाओं पर भी विचार साझा किए गए। दुमका के उपायुक्त श्रावणी मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बसुकीनाथ धाम का निरीक्षण किया। उन्होंने रूट लाइन, शिवगंगा और टेंट सिटी सहित प्रमुख स्थलों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने और श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा तथा मूलभूत सुविधाएं देने का निर्देश दिया। राज्य में मानसून सक्रिय होने से मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया। आज गुमला और लातेहार समेत कई जिलों में भारी वर्षा हुई। 5 जुलाई को पलामू प्रभाग और 6 जुलाई को रांची तथा हजारीबाग सहित मध्य भागों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच मौसम विभाग ने रांची, बोकारो और गुमला सहित राज्य के 10 जिलों में अगले 3 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 2,64,00,000 वोटरों की जांच के लिए घर घर पहुंच रहे BLO। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, फॉर्म में गड़बड़ी होने से घबराए नहीं मतदाता। नई दिल्ली में आयोजित 16वें वित्त आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल हुई मंत्री दीपिका पांडे से, झारखंड को मिलेगा 14,231 करोड़ रुपए का अनुदान। राज्य की कानून व्यवस्था पर भाजपा हमलावार, अमर बाउरी ने जमशेदपुर बंद की सफलता को बताया सरकार के खिलाफ जनाक्रोश। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने रांची में किया साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन। सांसद महुआ माजी ने केंद्र से की कड़े कानून बनाने की मांग। और राज्य में मॉनसून सक्रिय, अगले 5 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट, 6 जुलाई को रांची और हजारीबाग में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7:11 हुए हैं। हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं आंत के विभिन्न रोग विषय पर की गई भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर कुमार रत्नेश एवं आपसे बातचीत कर रहे हैं सचिन कुमार। यह एक पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता है।
2: श्रोताओं नमस्कार, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज जो हम विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो है हमारे आंत की विभिन्न प्रकार के रोग, उनके कारण, लक्षण और उनके निदान के बारे में। और इस विषय पर हमने जानकारी लेने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शहर के जाने माने पेट एवं आंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार रत्नेश को। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
3: आपने इस स्टूडियो में हमें आमंत्रण करके बहुत सम्मान दिया है और आंत से संबंधित स्वास्थ्य परिचर्चा के लिए जो आज हम लोग बातें करेंगे वो समाज के लिए, लोगों के लिए बड़ा लाभकारी सिद्ध होगा, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
2: जी निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, और इस कार्यक्रम को शुरू करते हुए हम आपसे ये सबसे पहले आंत की बीमारियों को जानें, उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो आंत है, छोटी आंत बड़े आंत जो हम सुनते हैं, उनका क्या महत्व है या उनका क्या योगदान होता है हमारे पाचन तंत्र में?
3: हमारे शरीर में आंत का होना बहुत आवश्यक है क्योंकि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो अंततः छोटी आंत होते हुए बड़ी आंत में जाती है और इसी बीच में जो पाचन क्रिया होती है जिससे भोजन का पूर्ण रूप से लाभ मिलता है और शरीर को स्वस्थ रखने में और स्वास्थ्य को मेंटेन करने में जो हम लोगों का आवश्यक तत्व है वो इस भोजन के माध्यम से मिलता है। लेकिन इसके लिए छोटी आंत और बड़ी आंत का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे पूरे शरीर में भोजन में जो आवश्यक तत्व है या जो उससे जो ऊर्जा मिलने वाली होती है वो इसी माध्यम से होकर जाती है।
2: तो काफ़ी महत्व है, काफ़ी बड़ा योगदान होता है आंत का हमारे शरीर में। तो जब इसमें बीमारियां आ जाए तो वो कितनी भयावह हो सकती है यह हम सोच सकते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितने प्रकार के रोग हो सकते हैं या कौन कौन से रोग हो सकते हैं हमारे आंतों में?
3: बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे छोटी आंत को, बड़ी आंत को, दोनों को संपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं। हमारे देश में या हमारे जगह पर इस क्षेत्र में ज़्यादातर बीमारियां जो होती हैं वो पानी के माध्यम से होती है, दूषित खाने के माध्यम से होती है, दूषित पानी के माध्यम से होती है। और आंत शोध जिसको कहा जाता है, डायरिया हुआ, डिसेंट्री हुआ, या जो म्यादी बुखार या एंटेरिक फीवर हम लोग उसको बोलते हैं वो हुआ, बहुत लोगों को टीबी हो जाती है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, बहुत लोगों को छोटी आंत बड़ी आंत में बहुत बड़ा घाव या अल्सर जिसको बोलते हैं, रक्त स्राव हो जाता है और कभी कभी वो आते इतनी लंबी होती हैं कि आपस में उलझ भी जाती हैं जिसको ऑब्स्ट्रक्शन हम लोग बोलते हैं। और बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं कभी कभी असाध्य हो जाती है जो आप अच्छी तरह जानते हैं जिसको हम लोग कैंसर का रूप देते हैं। ये छोटी आंत बड़ी आंत में किसी भी रूप में बराबर से उसको प्रभावित कर सकती है।
2: तो डॉक्टर साहब, बारी बारी से हम कुछ रोगों पर आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि आंत में टीबी भी हो सकती है, तो इसका क्या कारण है?
3: आंत में टीबी होने का सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है, अगर हम किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, उसके द्वारा जो भोजन लिया गया है, उसके द्वारा जो पानी लिया गया है वो अगर उससे दूषित हो गया है और या कभी उसके खखार में या उसके खांसने पर कभी कभी कुछ ऐसे तत्व निकलते हैं जो हम सीधे उसको श्वास नली और भोजन के नली के माध्यम से अपने पेट में पहुंचाते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत में जो ग्रंथियां होती हैं वहां जाकर के उसके कीटाणु बस जाते हैं और घर अपना बना लेते हैं जो बीच बीच में अपने बीमारियों को वो उत्पन्न कराती हैं, जैसे ग्रंथि की टीबी हो गई, जैसे अल्सर हो गया, घाव हो गया, बहुत सारा छोटी आंत में सूजन की एरिया हो जाती है जहां पर कि बराबर उसको तकलीफ होती है, बुखार आने लगता है और कभी कभी उसमें गांठें पड़ने लगती है और बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो दिखती नहीं है लेकिन वो आंत के दीवालों में वो कीटाणु बस जाते हैं और समय समय पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। जब जब स्वास्थ्य कमज़ोर होता है वो अपना प्रभाव दिखाने लगती है।
2: तो जब आंत में टीबी हो, चूँकि वो तो अंदरूनी बात है, तो क्या कोई लक्षण ऐसे महसूस होते हैं जिससे हम यह समझ जाएं?
3: बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जैसे बार बार बुखार आना, बार बार पेचिस होना, बार बार पेट में दर्द होना, वजन का घटना, खून की कमी होना, भूख नहीं लगना, जो भी खाना खाते हैं जो मरीज हैं वो उनको पूर्ण रूप से उसका लाभ नहीं मिलता है, बार बार दस्त होना, बार बार उल्टी होना, और कभी कभी ऐसे लक्षण होते हैं जो ये नहीं समझ में आता है कि वो आंत से रिलेटेड है, लेकिन कभी कभी रक्तस्राव भी होता है जो काले पैखाने के रूप में भी होता है, और बहुत बड़ा घाव हो जाने पर कभी कभी आंत में एक छेद हो जाती है जिसको हम लोग परफोरेशन बोलते हैं, जिससे सारा जो गंदगी है आंत का या जो भोजन का मात्रा है वो सारे पूरे पेट में फैल करके और मरीज काफ़ी गंभीर हो जाता है उस अवस्था में।
2: जी, तो इस अवस्था में आने के बाद अगर इन लक्षणों का पता चले तो क्या इसका उपचार किया जा सकता है?
3: ये बिल्कुल उपचार जनित है और पहले के दौर में इसकी जब समुचित दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी, समुचित जांच नहीं था, तो बहुत सारे लोग इलाज के अभाव में मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, लेकिन अभी इसका इतना अच्छा अच्छा दवाई निकल चुका है, इतनी अच्छी जांचें निकल चुकी हैं कि जिससे रोग का प्रारंभिक दौर में ही पता चल जाता है और उसका समुचित इलाज करने से, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो 6 महीने से साल भर तक उसको चलाई जाती है और किसी किसी व्यक्ति विशेष में 2 साल तक चलाया जाता है, और वो सारी दवाइयां इतनी सुटेबल है, इतनी सार्थक हैं टीबी के मरीजों के लिए, क्योंकि लगभग वो पूर्णतया रूप से ठीक हो जाते हैं।
2: जी डॉक्टर साहब, आपने तो आंतों की टीबी के बारे में काफ़ी विस्तार से प्रकाश डाला। हम अब आपसे जो मियादी बुखार की भी आपने चर्चा की उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि ये क्यों हो जाता है?
3: जब किसी को आंत में वो संक्रमण हो जाता है मियादी बुखार की, तो उसमें जो ग्रंथियां रहती है वो काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, पेट में दर्द महसूस होने लगता है, बार बार पेचिस होने लगता है, कभी कभी मरीज उल्टी भी करने लगता है और खाना सही से पचता नहीं है, और जब भी इस तरह का कोई बात होता है तो उसको बहुत ज़्यादा बुखार आने लगता है और उस बुखार की डिग्री 103, 104, 105 तक प्राप्त होने लगती है, और जब उसका जांच कराया जाता है तो जो रक्त का जो सेल्स है या जिसको कोशिकाएं कहते हैं, जो वो काफ़ी कम हो जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी कम हो जाती है, और धीरे धीरे कभी कभी ऐसी परिस्थिति में आंत का फटना बहुत यहाँ पर कॉमन लक्षण हो जाता है और ये पता नहीं चलता है कि किस वजह से फटा, लेकिन लोग बीमारी को सोचते हैं कि वो बुखार है, सिर्फ सिंपल बुखार है, तो वो उसकी दवा करते हैं, लेकिन वो आंतों को ग्रसित कर चुका रहता है, और उसकी लक्षण जितनी जल्दी पता चल जाए, अपने चिकित्सक से मिल करके जाँच करवा के पता लगा लें कि कहीं हमें मियादी बुखार तो नहीं है, क्योंकि इसका जो परेशानियां होती हैं कभी कभी आदमी को शल्यक्रिया भी करवाना पड़ता है।
2: जी, तो समय रहते ही हमें चिकित्सक से परामर्श लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नज़रअंदाज करना घातक हो सकता है।
3: जी
2: जी, तो डॉक्टर साहब, एक और बीमारी के बारे में आपने कहा कि आंतों में सूजन हो जाती है, तो इसका क्या कारण है?
3: बहुत सारे ऐसे कीटाणु हैं, विषाणु हैं जो नहीं दिखते हैं, लेकिन दूषित पानी और दूषित भोजन को लेने से बहुत सारी बीमारियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया है, कीटाणु हैं, विषाणु हैं, जो पूरे आंत को सूजन पैदा कर देते हैं। जब आंत में पूरा सूजन हो जाता है तो कोई भी भोजन आसानी से पच नहीं पाता है और इतने सारे उसमें स्राव होते हैं कि जो भोजन है वो पचने के बजाय वो पूरा का पूरा भोजन पानी जैसा बंद करके पदार्थ जिसको डायरिया बोलते हैं या डिसेंट्री बोलते हैं, जिसमें कभी कभी रक्त भी आने लगता है, वैसी परिस्थिति पैदा हो जाती है और काफ़ी पानी की नमक की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, व्यक्ति काफ़ी कमज़ोर महसूस होने लगता है और कभी कभी रक्त का जो जमाव है, रक्तचाप काफ़ी नीचे हो जाता है और व्यक्ति बहुत कमज़ोर फील करने लगता है, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है।
2: जी डॉक्टर साहब, इसके उपचार के लिए हमें क्या करना चाहिए?
3: सर्वप्रथम अपने जो निकटतम चिकित्सक हैं उनसे मिल करके अगर इस तरह का बार बार परेशानी, उल्टी हो रहा हो या बार बार पतला पैखाना हो रहा हो जिससे सिर्फ पानी जैसा आ रहा हो, तो उसमें तुरंत जाकर के अपने चिकित्सक से उपचार भी कराने के साथ साथ बहुत सारी दवाइयों को पानी के रूप में नस में चढ़ाया जाता है, जिससे तुरंत उसका जो हानि हुआ है पानी का और जो खनिज लवण है वो तुरंत शरीर को मिलता है, और जिससे क्या है कि जो ब्रेन है या जो हृदय है या जो किडनी है वो सारे में उसकी कमी को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाता है। अदरवाइज उसमें बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं जो कि फिर से उसको पलटा नहीं जा सकता है और एक मरीज गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि तुरंत निकटतम अस्पताल में, निकटतम चिकित्सक के जा करके आप अपना उसका समुचित इलाज करावें।
2: डॉक्टर साहब, आपने एक बीमारी का भी जिक्र किया था, आंतों का कैंसर, इससे हम क्या समझें और इसके क्या लक्षण होते हैं?
3: देखिए, ये अत्यंत ही गंभीर रोग है, समय से इसको जांच करके नहीं पकड़ा जाएगा तो धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होता चला जाता है, खाना उसका नहीं पचता है, बार बार उसको कमजोरी आती है, खून की कमी होने लगती है, भूख का लगना धीरे धीरे कम होता चला जाता है, भूख से अरुचि होती जाती है, और कैंसर एक ऐसा बीमारी है जिसमें असाध्य रूप में अगर इसको देखा जाए तो वो पूरी तरह आंत को, पूरी उसके दीवालों को, उसके रक्त के प्रवाह को, वहाँ जो ग्रंथियाँ हैं उन सारे को ग्रसित करने लगता है और धीरे धीरे अवरोध पैदा करने लगता है, जिससे कि भोजन समुचित रूप से उसके माध्यम से निकल नहीं पाता है और वो अवरोध पैदा करते करते एक ऐसा परिस्थिति में पहुंचा देता है मरीज को जहां की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब रुकावट हो जाता है। अब रुकावट होने के साथ साथ उसका पेट फूलने लगता है, पेट में पानी का अंश हो जाता है, रक्त का स्राव होने लगता है, गांठें पड़ने लगती हैं, जगह जगह उसका सूजन आने लगता है। अगर उसको समय से नहीं उपचार किया जाए तो अंततगत्वा जो है मरीज को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
2: जी, तो जिन रोगों के बारे में हमने अभी चर्चा की, सब के बारे में जो आपसे जानकारी मिली उससे यही पता चलता है कि कभी भी हमें आंतों की बीमारियों को, हालांकि किसी भी बीमारी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, लक्षण उपस्थित हो तो तुरंत कुशल चिकित्सक से हमें परामर्श लेना चाहिए और उपचार करवाना चाहिए।
3: इसके लिए सबसे बड़ा आवश्यक चीज़ है कि अगर किसी को परिवार में ऐसा कभी समस्या आ गया हो तो अपने आप को भी बीच बीच में प्राकृतिक रूप से और चिकित्सक के यहाँ जा कर के चेकअप करवाना या परीक्षण करवाना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी कुछ बीमारियाँ ऐसी है जो परिवारों में चलती है, अगर माता पिता को हुआ तो बच्चों को भी होना स्वाभाविक हो जाता है, तो भाई बहनों को हो जाता है। इसलिए अगर ऐसा कुछ परिस्थितियाँ डेवलप करती हैं परिवार में तो अपने आप को भी साल दो साल पर चिकित्सक के यहाँ जा कर के आंतों का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कहीं उनको तो वो चीज़ नहीं डेवलप कर रहा है जिनसे उनके माता पिता ग्रसित हो।
2: जी, तो परहेज़ और जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमें कौन कौन से बचाव के कार्य ऐसे करने चाहिए जिससे कि हम, जैसे खान पान में या रहन सहन में किस प्रकार के बदलाव लाने चाहिए जिससे कि हमारे आँत स्वस्थ हों और हमारा पाचन प्रक्रिया भी स्वस्थ रह सके।
3: इसके लिए बड़ा आवश्यक है कि हम शरीर को ऊर्जा देने के लिए और उसको स्वस्थ रखने के लिए समुचित और संतुलित आहार लेते रहें, ये नियम से समय से लेते रहें और कभी भी ऐसा नहीं करें कि बहुत लंबे समय तक भूखे रहें और अचानक से कुछ मिला खाने को तो खा लिया। संतुलित आहार और संतुलित भोजन का बड़ा ही महत्व है जीवन के और आंत के स्वास्थ्य में, और उसको समय समय पर लेते रहें, समय पर नाश्ता करें, समय पर खाना खाएं, समय पर रात का भोजन लें, पानी का सेवन खूब करें, पानी भी आंत को शुद्ध करता है वो लें, योगासन योगाभ्यास करें, हल्का व्यायाम नित्य रूप से करें, क्योंकि क्या होता है कि जब आप ऐसी दवाओं का सेवन करते हैं तो वो
2: निदान पर भी और इसके बचाव पर भी काफ़ी प्रकाश डाला और अपना महत्वपूर्ण समय भी हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आंतों की बीमारियां, डॉक्टर कुमार रत्नेश से की गई ये पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता आप सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रहे थे सचिन कुमार। कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, इसे हम अपने पटना केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर हुई चर्चा। राज्य में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग और हडको के बीच समझौता। 1,00,000 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के MOU पर हुए हस्ताक्षर। प्रदेश में 29 औद्योगिक परियोजनाओं को मिली स्वीकृति। 6,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। और राज्य सरकार पर्यटन स्थलों पर जीविका समूहों और किसानों के उत्पादों की बिक्री के लिए आधुनिक हाट बाजार विकसित करेगी। अब समाचार विस्तार से। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। कार्यशाला में 18 राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों ने भाग लिया। मंत्रालय ने बताया कि 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं। उन्होंने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत 2,76,000 ग्रामीण स्थानीय निकाय शामिल हैं। श्री सिंह ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य राज्यों को आयोग की सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू करने और उन्हें प्रदर्शन आधारित अनुदानों का अधिकतम लाभ उठाने में सक्षम बनाना था। राज्य में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हडको के बीच 1,00,000 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक वित्त पोषण का समझौता हुआ है। पटना के संकल्प सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के शहरी विकास के इतिहास में ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित होने वाला कदम बताया। उन्होंने बताया कि लगभग 3,00,000 एकड़ क्षेत्र में टाउनशिप विकसित किए जाएंगे और किसानों को लैंड पुलिंग के माध्यम से इस परियोजना का भागीदार बनाया जाएगा। वहीं मुआवजे के लिए आवेदन करने वाले किसानों को 30 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैटेलाइट टाउनशिप में आधुनिक सड़क नेटवर्क, पेयजल, हरित क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएगी, जिससे लोगों को बेहतर आवास और विश्व स्तरीय शहरी जीवन उपलब्ध होगा। राज्य में औद्योगिक निवेश को

0: संभावना है। दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड में 385 एकड़ भूमि पर नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इस परियोजना के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। मद्य निषेध मंत्री मदन सहनी ने दरभंगा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से निवेश को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। दरभंगा के रैयाम चीनी मिल को फिर से चालू करने के लिए जिलाधिकारी कौशल कुमार ने उच्च स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया है। इस कमेटी में केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, एक पदाधिकारी और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को सदस्य बनाया गया है। यह समिति चीनी मिल को फिर से चालू कराने के उपायों का आकलन करेगी। राज्य सरकार पर्यटन स्थलों पर जीविका समूहों और किसानों के उत्पादों की बिक्री के लिए आधुनिक हाट बाजार विकसित करेगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नाबार्ड और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों पर हाट विकसित होने से ग्रामीण उत्पादों को बेहतर बाजार मिलेगा, जिससे जीविका दीदियों और किसानों की आय बढ़ेगी तथा अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मंत्री ने अगले 5 वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक हाट विकसित करने, उन्हें डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ने तथा महिलाओं को रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। राज्य सरकार 20 जुलाई से 1100 श्रद्धालुओं के लिए सोमनाथ यात्रा का आयोजन करेगी। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय के कार्यक्रम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत इस यात्रा का आयोजन किया गया है। यात्रा का शुभारंभ पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन से होगा। श्रद्धालु सोमनाथ धाम के दर्शन के बाद 26 जुलाई को पटना लौटेंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। श्रद्धालु लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यह यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने हावड़ा और नटेसर के बीच श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि यह ट्रेन 5 जुलाई से 30 सितंबर तक सप्ताह में 3 दिन चलेगी। यह ट्रेन आसनसोल, जसीडी, झाझा, किहुल, शेखपुरा, अस्थावा, बिहार शरीफ, नालंदा और राजगीर के रास्ते चलाई जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने कल राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान राज्य के उत्तर और दक्षिणी हिस्सों में कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान मुंगेर सदर में सबसे अधिक 20.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी। भारतीय विशिष्ट

0: पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। यह सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। केंद्र सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। सीतामढ़ी पुलिस ने रीगा थाना क्षेत्र में ग्राहक सेवा केंद्र से हुई लूटकांड का खुलासा करते हुए 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान एक अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देशी कट्टे, 1 देशी पिस्तौल, 2 कारतूस और लूट में प्रयुक्त 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। उधर समस्तीपुर और वैशाली जिले की सीमा पर स्थित पंगरा थाना क्षेत्र के बलेगांव के पास पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात अमन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। वैशाली के पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने बताया कि पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई, जिसमें अमन कुमार को पैर में गोली लगी है। उन्होंने बताया कि मौके से एक अन्य अपराधी की गिरफ्तारी की गई है। कोसी प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक कुमार आशीष ने सहरसा जिले के सलखुआ थाना में पदस्थापित 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इन सभी पुलिसकर्मियों पर दलालों के माध्यम से केस प्रभावित करने का आरोप है। पुलिस उप महानिरीक्षक ने बताया कि मौके से एक दलाल को भी गिरफ्तार किया गया।
1: ये व्यक्ति सतीश कुमार जो है बहुअरवा गांव का रहने वाला है, जो इसके लैपटॉप पर विभिन्न केसों की फाइल मिली है। ये डायरी लिखने का भी काम करता है और डायरी दूसरे लोगों को बेचने का भी काम करता है। इस प्रकार से पुलिस की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा था, जिसको तत्काल गिरफ्तार किया गया है। भारतीय न्याय संहिता के तहत इस पर केस दर्ज कर करके इसको जेल भेजा जा रहा है। इसके साथ इसके सांठगांठ में काम करने वाले 10 ऐसे आईओ जिनकी फाइल मिली है, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर करके लाइन हाजिर किया गया है। उन पर विभागीय कार्रवाई चलेगी और उनको कठोरतम सजा हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे।
0: भागलपुर जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 31 पर एक बालू लदा हाइवा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियों पर पलट गया। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज भेजा गया है। इधर कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के भिट्ठी गांव के पास ई रिक्शा पलटने से रिक्शा चालक और एक बच्ची की मौत हो गई। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर स्थित बिहार पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में 265 प्रशिक्षु महिला सिपाहियों की पासिंग आउट परेड गरिमापूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। परेड के दौरान प्रशिक्षु महिला सिपाहियों ने आकर्षक मार्च पास्ट, अनुशासित कदम ताल और उत्कृष्ट ड्रिल का प्रदर्शन किया। समारोह में पुलिस उप महानिरीक्षक हरकिशोर राय और पश्चिम चंपारण के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। भोजपुर जिले के जवनिया गांव में गंगा के कटाव से प्रभावित 57 परिवारों को बिलौटी गांव के पास 3-3 डिसमिल भूमि का आवंटन किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से अब तक कुल 127 गंगा कटाव पीड़ित परिवारों को पुनर्वास के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है। इसके साथ ही 40 पात्र परिवारों को आवास निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त भी उपलब्ध करा दी गई है। अररिया जिले के चौकीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत सिसौना गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 105 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक और भारी मात्रा में शराब के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर मंडल कारा में बंद एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में कैदी द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात सामने आ रही है। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीनिया गांव में भूमि विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। समस्तीपुर जिले के तलसिंहसराय थाना क्षेत्र के चकलोमान गांव से पुलिस ने लूट के मामले में 7 साल से फरार चल रहे एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। दरभंगा में पिछले दिनों एक आभूषण दुकान से लूट के मामले में एसटीएफ की टीम ने मधुबनी जिले के पंडोल से एक अभियुक्त को

0: गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक 14 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लखीसराय जिला आज अपना 33वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर हुई चर्चा। राज्य में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग और हडको के बीच समझौता। 1,00,000 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के MOU पर हुए हस्ताक्षर। प्रदेश में 29 औद्योगिक परियोजनाओं को मिली स्वीकृति। 6,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। और राज्य सरकार पर्यटन स्थलों पर जीविका समूहों और किसानों के उत्पादों की बिक्री के लिए आधुनिक हाट बाजार विकसित करेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कटिहार जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार मुकेश चौधरी।
2: पूर्ण टीकाकरण अभियान में कटिहार जिले ने विशेष उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य विभाग की HMIS रिपोर्ट के अनुसार जिले ने 87% टीकाकरण कवरेज के साथ राज्य के शीर्ष 10 जिलों में स्थान बनाया है। जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि मनसाही प्रखंड ने 126% उपलब्धि के साथ जिला में पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि बारसोई ने 102 और आजमनगर ने 101% उपलब्धि दर्ज की है।
3: कटिहार जिले ने टीकाकरण में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें से जो 3 ब्लॉक है मनसाही, बारसोई और आजमनगर, उन लोगों ने विशेष अच्छा प्रदर्शन किया है। जो अपने लक्ष्य जो ELA होता है उससे भी ज्यादा लोगों का इन्होंने टीकाकरण किया है, तो हम लोग आगे भी इसी तरीके से प्रयास करते रहेंगे और जो स्वास्थ्य सुविधाएं ही लोगों को समुचित तरीके से मिले, यही हम लोग का प्रयास है।
2: जिले के PM श्री विद्यालयों में पढ़ रहे दिव्यांग बालिकाओं को अब केंद्र प्रायोजित योजना के तहत विशेष छात्रवृत्ति मिलेगी। जिले के 23 PM श्री विद्यालयों में नामांकित छात्राओं को 2,000 रुपए प्रतिमाह की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।
4: कटिहार जिला अंतर्गत 23 PM श्री विद्यालय हैं, जिनमें अध्ययनरत दिव्यांग छात्र छात्राओं को विशेष भत्ता देने का इस शैक्षिक सत्र से प्रावधान किया गया है। इसके लिए हम लोगों ने PM श्री विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूची बनाने का निर्देश दिया है।
2: जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चंद्र चौधरी ने बताया कि 40% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त छात्राएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी। मनिहारी प्रखंड के धुरियाही मरगाहा में गंगा किनारे कराए गए कटावरोधी कार्य का हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के मामले में जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल ने कार्य को मानकों के अनुरूप बताते हुए कहा कि क्षतिग्रस्त एप्रोन का पुनर्स्थापन करा दिया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं।
3: विभाग स्तर से एक विशेष टीम गठित करवा रहे हैं, जो सारे बिंदुओं पर, चाहे वो टेक्निकल इश्यूज हो चाहे जैसे इश्यूज हो, विभाग स्तर की एक टीम, उच्च स्तरीय टीम आकर के इसकी जाँच करेगी और उसमें जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: कटिहार के जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत 450 से अधिक सरकारी कर्मियों का स्थानांतरण किया है। इनमें समाहरणालय, विकास भवन, अनुमंडल एवं प्रखंड कार्यालयों के अलावा स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, ICDS और पंचायती राज विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि स्थानांतरण निर्धारित मानकों और कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया है।
3: लगभग 450 के आसपास कर्मियों का हम लोगों ने ट्रांसफर किया है, और जिसमें स्वास्थ्य विभाग के, ICDS के, पंचायत के लोगों का किया गया है ट्रांसफर, और इसमें जिला स्तर पे अलग अलग की रैंकिंग कराई और उसके बाद उस रैंकिंग के आधार पर उनसे प्रेफरेंस लेकर ट्रांसफर किया गया है और इसमें पूरी पारदर्शिता बरती गई है।
2: कटिहार बारसोई रेलखंड के अंतर्गत कटिहार सोनौली और कटिहार क्वेटा के बीच लगभग 30 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण का पहला चरण पूरा हो गया है। रेलवे संरक्षा आयुक्त द्वारा सफल हाई स्पीड निरीक्षण के बाद इस रेलखंड पर तेज गति से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। मंडल रेल प्रबंधक किरेंद्र नारा ने बताया कि परियोजना के दूसरे चरण का कार्य दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है।
5: ये एक्चुअली प्रोजेक्ट जो है, दो प्रोजेक्ट है, टोटल 64 किलोमीटर का है और इसका कंप्लीशन टारगेट रखा हुआ है कि इसी साल का दिसंबर तक, हो सकता है थोड़ा बहुत मतलब एक्सटेंड होगा, लेकिन टारगेट जो है वो मतलब इस साल का ही है। अभी कुल 30 किलोमीटर 50% हो गया है।
2: राज्य सरकार के निर्देश पर गरवेली पंचायत सरकार भवन में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिले के प्रभारी मंत्री एवं कला एवं संस्कृति और खान एवं भूतत्व मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने किया। उन्होंने कहा कि महिला हितैषी ग्राम पंचायत थीम के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण और पंचायत स्तर पर जन समस्याओं के त्वरित समाधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई और नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे कटिहार जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता कुमार मुकेश चौधरी।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आइए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम।

0: ये आवाज है शुभ्रा चटर्जी की, इनसे सुन रहे हैं भजन।
1: जन्म गवाए रे।
2: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.74 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर शाम के 7:52 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। गायक कलाकार हैं सुरेंद्र कुमार राय। आरंभ में इनके स्वर में सुनते हैं ब्रह्मानंद की ये भक्ति रचना।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: सुरेंद्र कुमार राय के स्वर में अब आइए सुनते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये गीत रचना।

और इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी अब यहीं संपन्न होता है। आज गायक कलाकार थे सुरेंद्र कुमार राय। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 8 बजे हैं, पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। पहला गाना हमने फिल्म आखिरी खत से लिया है, लता मंगेशकर ने इसे गाया है। गीत के बोल कैफी आजमी के हैं और संगीत तैयार किया है खय्याम ने।

आशा भोसले, अमित कुमार एवं किशोर कुमार की मिलीजुली आवाज़ों में आपको सुनवाते हैं फिल्म कश्मीर वादे का एक गीत। गीतकार गुलशन बाबरा, संगीतकार हैं राहुल देव वर्मन।

मोहम्मद रफ़ी एवं साथियों को अब आइए सुनते हैं फिल्म लाट साहब में। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में आवाज़ ये सुनते हैं फिल्म मेरे महबूब का एक नगमा। गीत के बोल शकील बदायूनी के हैं और संगीत तैयार किया है नौशाद ने।

0: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
1: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
2: बख्शी जगबंधु तो
1: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह।

0: 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। लता मंगेशकर को अब आइए सुनते हैं फिल्म जूली में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राजेश रोशन।

मोहम्मद रफी एवं सुमन कल्याणपुर का गाया फिल्म जिगरी दोस्त का एक गीत सुनते हैं। आनंद बख्शी के लिखे गीत को सुर में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं आशा भोसले एवं एसपी बाला सुब्रमण्यम के युगल स्वर में फिल्म सागर का ये गीत। गीत के बोल जावेद अख्तर के हैं और संगीत तैयार किया है राहुल देववर्मन ने।

रजनीगंधा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, इवनिंग न्यूज और फिर उर्दू खबरें। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोडमैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
1: तीस्ता इश्यू।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा

0: चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
2: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सके, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की एक कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालूतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और

0: लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: तीस्ता नदी के जामे बंदोबस्त और बहाली के मंसूबे पर जनाब जसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में मंसूबों के लिए भारत की तरक्याती इमदाद बाहमी तौर पर मुत्तफ़िका रोडमैप पर मबनी है, जिसका बाकायदगी के साथ जायजा लिया जाता है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की बरामदात के हदफ को हासिल करने की तरफ गामजन है। सालाना बरामदात की 15% बरामदात पहली सहमाही में ही दर्ज की जा चुकी है। आज नई दिल्ली में तिजारती बोर्ड की मीटिंग में खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि इसके लिए अशिया की बरामदात को $440 बिलियन से तकरीबन $530 बिलियन, जबकि खिदमात की बरामदात को तकरीबन $421 बिलियन से तकरीबन $470 बिलियन तक बढ़ाने की जरूरत है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत की बरामदात से मुतालिक हिकमत अमली मजबूत ज्यादा जामे नुक्ता नजर पर मबनी है, जिसमें हर रियासत जिला और तिजारती हलका को यकसा तौर पर अहमियत हासिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर के रूस से इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 रोजा दौरे पर होंगे। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा में मशरकी उमूर के सेक्रेटरी रुदेंद्र टंडन ने बताया कि जनाब मोदी इस महीने की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे और उनकी असल मसरूफियात जकार्ता में होंगी। अलबत्ता जनाब मोदी वहां के एक सकाफती और तारीखी शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। जनाब टंडन ने कहा कि दौरे के दूसरे मरहले में वो इस महीने की 8 से 10 तारीख तक ऑस्ट्रेलिया में होंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मेलबर्न पहुंचेंगे, जहां वो तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 3 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में जनाब मोदी इस महीने की 10 से 11 तारीख तक न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। मशरकी उमूर के सेक्रेटरी ने कहा कि न्यूजीलैंड का उनका दौरा 40 वर्षों में किसी भारतीय वजीर आजम का पहला दौरा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात का दौरा करेंगे। राजस्थान के दौरे में वजीर आजम जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे और नजर सानी शुदा उड़ान स्कीम का भी आगाज करेंगे। इसके बाद वो राजस्थान के बालोतरा जाएंगे, जहां वो तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपए की मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। कल गुजरात के दौरे के दौरान भारत के सेमी कंडक्टर मिशन के जिम्न में एक अहम इकदाम में वजीर आजम सनांद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर के कल पुर्जों की तरतीब और तजुर्बाती मरकज OSAT का इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोजेक्ट इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के तहत मंजूर शुदा इब्तदाई 4 प्रोजेक्टों में शामिल हैं, जिन पर 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी की गई है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने कहा है कि सहाफत को सच्चाई दयानतदारी और आला तरीन पेशावराना मेयारात के मुताबिक काम करना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर्स वीकली के 80वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि जमहूरियत उस वक्त परवान चढ़ती है जब प्रेस अपनी साख बरकरार रखते हुए अवाम को बाखबर रखने का काम करता है, सवाल उठाता है और बाशऊर अवामी मुबाहसे की हौसला अफजाई करता है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह और ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज एलनिनो की वजह से मुल्क के कुछ हिस्सों में मामूल से कम बारिश और इसके असरात का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत एलनिनो की वजह से मुल्क के बाज़ हिस्सों में मामूल से कम बारिश और मुमकिन खुश्क साली की सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रही है। उन्होंने वजारत ज़राअत और तमाम मुतालिका वजारतों को चौकस रहने और रियासती हुकूमत के साथ राब्ते में रहने के लिए कहा है, ताकि किसानों को मुनासिब फसलों के बारे में मशवरा दिया जा सके। दिफाई साजो सामान की हुसूलियाबी की कौंसिल DSE ने दिफाई अफवाज की जंग की तैयारी को बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए मालियत की कैपिटल हुसूलियाबी की तजावीज को मंजूरी दे दी है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में मंजूर शुदा तजावीज फौज बहरिया और फजाइया की हरबाबंदी की सलाहियतों में इजाफा करेगी। भारतीय फौज के लिए एंटी अनमैंड एरियल व्हीकल्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम आकाश तरंग की खरीदारी के लिए मंजूरी दी गई है, जो फौज की सफबंदियों को मौसर एंटी UAV तहफ्फुज़ फराहम करेगा। कौंसिल ने मैन पोर्टेबल टैंक मुखालिफ गाइडेड मिजाइल निजाम, दरमियानी दूरी तक जमीन से फजा में वार करने वाले मिजाइल हथियारों के निजाम, बहुत कम दूरी तक वार करने वाले फजाई दिफाई निजाम, टैंकों के लिए फ़ाल

0: Fest. This is Akashvani. In the weekly program,
1: Akashvani का ये भागलपुर केंद्र है. मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. रात्रि के 9:30 हुए हैं. प्रस्तुत है रेडियो साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शतदल. स्वर सहयोग सुप्रभात राय का है एवं प्रस्तुत करता है अतुल कुमार प्रियदर्शन.
2: श्रोता मित्रों नमस्कार. उपस्थित हैं हम शतदल के इस अंक के साथ. श्रोताओं, शतदल के हर अंक में हम अलग अलग विषयों पर आपसे बातें करते हैं. आज के शतदल में हम जिस विषय पर आपसे बात करने वाले हैं वो मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान, प्रेरणा और मानवीय संवेदनाओं को गहराई से समझने का सशक्त माध्यम है. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उपन्यास के विषय में. उपन्यास साहित्य की वह विस्तृत गद्य विधा है जो संपूर्ण मानव जीवन, समाज और मनोभावों को एक साथ चित्रित करती है. उपन्यास एक विस्तृत गद्य कथा जो सदियों से पाठकों को मोहित करती रही है. साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है. कहानी कहने की एक आधारशिला के रूप में उपन्यास हमें नई दुनिया में ले जाते हैं. अविस्मरणीय पात्रों से हमारा परिचय कराते हैं और मानवीय अनुभवों पर प्रकाश डालते हैं. तो इसी परिप्रेक्ष्य में आइए सुनते हैं एक पूर्व प्रसारित वार्ता, वर्तमान समय में उपन्यास का महत्व. वार्ताकार हैं कैलाश प्रसाद मिश्रा.
3: इस बात की स्वाभाविकता से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब जब समाज पर संकट के काले बादल मंडराने लगते हैं और चिरस्थायी मूल्यों का ह्रास होने लगता है, सामाजिक संरचना विघटित होती दिखाई पड़ने लगती है, तब तक साहित्यिक विधाओं की आवश्यकता महसूस होने लगती है जिससे समाज का सही रूप में रूपांतरण हो सके, समाज के हर वर्ग का एक संगठित ढांचा तैयार हो सके. आज सामाजिक व्यवस्था चरमरा सी गई है. समाज के हर वर्ग में एक असंतोष का भाव उत्पन्न हो गया है. दहेज प्रथा, विवाह की समस्या, कृषि की समस्या मुंह बाए खड़ी है. समाज के रस्म रिवाज में एक अजीब विकृति आ गई है. ऐसे समय में याद आती है साहित्य के उन विधाओं की जिनका मूल उद्देश्य समाज सुधार था. आलोच्य युगीन उपन्यासों में महत्वपूर्ण परंपरा जिसने आगे चलकर प्रेमचंद की रचना के लिए पृष्ठभूमि प्रस्तुत की, सामाजिक उपन्यासों की ही है. सामाजिक उपन्यासों का लक्ष्य समाज सुधार था. प्रेमचंद भी इसी उद्देश्य से प्रेरित थे. उनके प्रेम, रूठी रानी और सेवा सदन उपन्यास आलोच्य युग में प्रकाशित हुए. इन तीनों में समाज सुधार की प्रवृत्ति प्रधान है. मुंशी प्रेमचंद के शब्दों में, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ. मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है. सब आदमियों के चरित्रों में भी बहुत कुछ समानता होती हुई भी कुछ विभिन्नताएं होती हैं. यही चरित्र संबंधी समानता और विभिन्नता, अभिन्नत्व में भिन्नत्व और विभिन्नत्व में अभिन्नत्व दिखाना उपन्यास का मूल कर्तव्य है. उपन्यास उप और न्यास से मिलकर बना है. उप का अर्थ समीप और न्यास का अर्थ है रचना. अर्थात उपन्यास वह है जिसमें मानव जीवन के किसी तत्व को उक्ति उक्त के रूप में समन्वित कर रखा जाए. इसमें उपन्यासकार मानव जीवन से संबंधित सुखद एवं दुखद किंतु मर्म स्पर्शी घटनाओं को निश्चित तारतम्य के साथ चित्रित करता है. संस्कृत लक्षण ग्रंथों में उपन्यास का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है किंतु उपन्यास शब्द और आज के उपन्यास शब्द में भिन्नता है. संस्कृत साहित्य में एक स्थान पर कहा गया है, उपन्यास प्रसाधनम अर्थात प्रसन्नता प्रदान करने वाली कृति उपन्यास है. किंतु संस्कृत नाट्यशास्त्र में उपन्यास को प्रतिमुख संधि का एक अभेद माना गया है जिसकी व्याख्या में कहा गया है, उपपति वृतहत उपन्यास प्रकृतितः अर्थात किसी अर्थ को उसके उक्ति उक्त अर्थ में उपस्थित करने को उपन्यास कहा जाता है. किंतु आज उपन्यास शब्द के अंतर्गत गद्य द्वारा अभिव्यक्त संपूर्ण कल्पना प्रसूत कथा साहित्य में ग्रहण किया जाता है. इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त उपन्यास शब्द और आधुनिक उपन्यास शब्द में एक में जमीन आसमान का अंतर है. उपन्यास एक लोकप्रिय साहित्यिक विधा है जिसमें मानव जीवन का यथार्थ प्रतिबिंब कहा जा सकता है. वस्तुतः उपन्यास में ऐसी

0: अपनी कथाओं और आख्यायिकाओं की भौतिक कथा सूत्र का बहाना लेकर उपमाओं, रूपकों, दीपकों और श्लेषों की छटा और सरस पदों में गुम्फित पदावली की छटा दिखाने का कौशल भी नहीं है। यह आधुनिक वैयक्तिकतावादी दृष्टिकोण का परिणाम है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास उपन्यास को मानव के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा मानते हैं, किंतु मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं, मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मुख्य स्वर है। डॉक्टर जे बी क्रिस्टले लिखते हैं, उपन्यास जीवन का विशाल दर्पण है और इसका विस्तार साहित्य के किसी भी रूप से बड़ा है। विलियम हेनरी हेडसन के अनुसार मानव और मानवीय भावों से तथा क्रियाओं की विस्तृत चित्रावली ने नर एवं नारियों के सार्वकालिक सार्वदेशिक रुचि ही उपन्यास के अस्तित्व का कारण है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उपन्यास मानव जीवन की कथा है। उपन्यास और कहानी का कला रूप आधुनिक युग की उपज है। विद्वानों का ऐसा विचार है कि उपन्यास और कहानी संस्कृत की कथा आख्यायिकाओं की सीधी संतान नहीं है। कविता और नाटक के संदर्भ में यही बात नहीं कही जा सकती, अर्थात नाटक और कविता की तरह उपन्यास कहानी की परंपरा पुरानी नहीं है। उपन्यास का संबंध यथार्थवाद से बताया जाता है। पुरानी दुनिया यथार्थवादी थी। विश्व साहित्य में देखा गया कि सर्वप्रथम काव्य का ही जन्म हुआ, ठीक उसी प्रकार काव्य के पश्चात गद्य का जन्म हुआ। हिंदी साहित्य में भी बिल्कुल वही परंपरा दिखाई पड़ती है। हिंदी उपन्यास के संदर्भ में उसके उद्भव की दृष्टि से यह सवाल भी उठाया जाता रहा है कि भारतीय नवजागरण के दौर में विकसित अनेक दूसरी चीज़ों की तरह उपन्यास सीधे सीधे पश्चिम से आया या उसके उद्भव में भारतीय आख्यान परंपरा की भी कोई भूमिका रही है। साहित्य की प्रमुखता दो विधाएं मानी गई हैं, गद्य और पद्य। गद्य की कई विधाओं में एक विद्या उपन्यास है, विधा उपन्यास है। उपन्यास के लिए जिस संक्रांतिकालीन समाज की अनिवार्यता की ओर संकेत किया जा रहा है, जिसमें समाज और व्यक्ति के द्वंद्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, भारतीय नवजागरण कालीन समाज उस संक्रांति की देहरी पर खड़ा था। कहीं भी उपन्यास इसी मध्यम वर्गीय समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से जुड़ा साहित्य का रूप रहा है। इसमें लेखक अपना एक निश्चित मत प्रस्तुत करता है और कथानक को इस प्रकार से सजाता है कि पाठक उसके उद्देश्य को ग्रहण कर सके और उससे प्रभावित हो सके। उपन्यास एक ऐसी विधा है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और जीवन से संबंधित विचारों की अभिव्यक्ति पर्याप्त मात्रा में मिल सकती है। उपन्यास में जीवन विविध कठिनाइयों एवं विषमताओं के चित्रण के साथ ही साथ उनके समाधान का भी मार्ग खोजा जा सकता है, जिसके द्वारा जीवन की समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। उपन्यास एक यथार्थवादी साहित्यिक विधा है। एक अच्छा साहित्यकार संवेदना, गहराई और विस्तार के साथ जीवन का गहराई से निरीक्षण करता है और उससे फिर प्राप्त अनुभवों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। उपन्यास का मुख्य लक्ष्य मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और उसके माध्यम से मानव मन की व्याख्या करता है। उपन्यास की रचना समाज के किसी वर्ग विशेष की प्रवृत्तियों को प्रकाश में लाने, वातावरण की सृष्टि आदि अनेक प्रकार के लक्ष्य को समक्ष रखकर किया जाता है। जीवंत चरित्र चित्रण उपन्यास की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अतः उपन्यास साहित्य जीवन की सभी घटनाओं के यथार्थ से संबंधित विधा है। उपन्यास में जीवन की विविध कठिनाइयों एवं विषमताओं के चित्रण के साथ ही साथ उनके समाधान का भी मार्ग खोजा जा सकता है, जिसके द्वारा जीवन की समस्याएँ सुलझाई जा सकती हैं। जीवंत चरित्र चित्रण उपन्यास की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।
1: अभी हम कैलाश प्रसाद मिश्रा से पूर्व प्रसारित वार्ता वर्तमान समय में उपन्यास का महत्व सुन रहे थे। शतदल में अब आइए सुनते हैं एक पूर्व प्रसारित कहानी तहकीकात। रचनाकार हैं निशी रंजन ठाकुर।
2: उस रोबदार दारोगा के मुंह से अनायास ही गाली निकल गई, यह भी कोई जगह है आने की? रास्ते के नाम पर कच्ची पगडंडियां कीचड़ों से भरी, कहीं कहीं तो घुटनों तक कीचड़। कुसुम का घर मिल गया था, लेकिन तब तक दारोगा का मूड खराब हो चुका था। मिट्टी गारे से जोड़े गए ईंट और खपड़ेल मकान से एक अधेड़ उम्र का आदमी निकला। गांव देहात में किसी के यहाँ पुलिस का आ जाना अभी भी बड़ी बात होती है। एक कान दो कान अंदर ही अंदर बात चल रही है। श्याम दास की तो अब खैर नहीं, पुलिस तो किसी की होती नहीं है, पड़ गया अब चक्कर में। दारोगा ने लकड़ी की पुरानी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, तो आप चाचा हैं कुसुम के? श्याम दास ने गले में लपेटी गमछी को जोर से पकड़ा और बोला, जी देखिए आपको तो सब कुछ पता ही होगा, लेकिन क्या है कि पुलिस कानून की भी कोई जिम्मेवारी होती है। दारोगा का मूड तब तक शायद थोड़ा नरम हुआ था। आदतन अपनी मुँह चाटते हुए श्याम से पूछा, उस लड़की कुसुम के बारे में जरा डिटेल में बताइए।

रामदास भी तब तक थोड़ा सामान्य हो पाया था। भोला सर बेहद समझदार लड़की थी, बचपन से ही, उतनी ही भोली सूरत भी। कोई एक बार बात कर ले तो भूल नहीं सकती थी उसे। कागजों पर बेहद खूबसूरत चित्र उकेरती रहती थी, बोलती थी उसकी तस्वीरें साहब, उनकी तस्वीरों में सब कुछ होता था, आसपास का पेड़, बगल में बहती नदी और लोग। लोगों को सामने बैठा कर हूबहू उसका चित्र बना देती थी, बोलती थी और खूब बोलती थी, तरह तरह के सवाल पूछती थी, बेमतलब के बेहिसाब सवाल पूछती थी, अजनबी और जानने वाले किसी से भी सवाल पूछ बैठती थी। कई बार तो डांट कर चुप करना पड़ता था, आपका माथा पक जाता उसके सवाल कम नहीं होते। बच्ची थी साहब, इसलिए लोग उसके बचकाने सवालों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। दारोगा थोड़ा गंभीर हो गया था, उसने होठों को गोल कर लंबा हम की आवाज़ निकालते हुए पूछा, किस तरह के सवाल? श्याम ने कहा, जैसे सावन में नदी में पानी क्यों भर जाता है, जेठ में नदी सूखने क्यों लगती है, हमारे लगाए पेड़ एक दिन में बड़े क्यों नहीं हो जाते, लोग गरीब क्यों होते हैं, पैसे वालों के पास पैसा कहाँ से आता है, पढ़ाई क्यों जरूरी है। कोई ऐसा विषय नहीं था साहब जिस पर कुसुम के सवाल नहीं थे। दारोगा थोड़ा उबने लगा था, बोला, ठीक है, यहाँ से शहर क्यों चली गई और कब गई थी? श्यामदास के चेहरे पर एक उदासी तैर गई। बोला, मेरे भाई रामदास के पास 3 एकड़ जमीन है, गंगा के पेट में है। जब जमीन गंगा से निकलती है तो उपज ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार महीनों पानी टिक जाता है, ऐसे में खेती पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। कुछ ठीका बटैया भी था रामदास के पास, शायद उस साल तीसरी में पड़ रही थी कुसुमियाँ, पानी क्या आया था, जल प्रलय था उस साल, यहाँ की बात तो छोड़िए, ब्लॉक ऑफिस तक पहुँच गया था पानी, पानी उतरने में 2 महीना लगा था, सब कुछ बर्बाद हो गया था, कई के तो घर मकान तक गिर गए थे, रामदास भी बर्बाद हो गया था, उधार की खेती, ठिका बटैया का पैसा, लाखों का गिरानी हो गया, कहाँ से चुकाता कर्जा, कोई उपाय नहीं दिख रहा था। तो गांव के कुछ लोग दिल्ली जा रहे थे, रामलाल भी उन लोगों के साथ दिल्ली चला गया। एक किसान दिल्ली में मजदूरी कर कितना कमाएगा, ऊपर से 4 बच्चे, परेशानी खत्म नहीं हुई। 3-4 महीने बाद दिल्ली से लौटा तो रोगी होकर। इस बार तय हुआ कि वह अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ दिल्ली जाएगा, हमारी एक बहन शहर में रहती है, तो कुसुमिया को वहीं रखने का निर्णय हुआ, क्योंकि कुसुमिया थोड़ी बड़ी हो गई थी, बहन ने रखने के लिए हामी भर दी। अब उसकी किस्मत कहिए, संजोग से शहर के एक अच्छे स्कूल में उसका नाम भी लिखा गया, पढ़ाई में अच्छी थी। रामदास का एक और बच्चा दूसरे रिश्तेदार के पास रखा गया था। दारोगा को श्याम की बातों में बहुत मजा नहीं आ रहा था, उसने कहा, रामदास को सूचना दे दी गई है, वह अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से चल चुका है, कल तक शायद पहुंच जाए, तब तक तुम और गांव के लोग शहर आ जाओ, वहां की हालत अच्छी नहीं है, बेहतर है रामदास के आने तक तुम लोग अपनी बहन के घर पर शहर में रहो, वैसे अभी बहुत काम बाकी है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, कल तक शायद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगी। केस आसान नहीं था, एक कड़ी दूसरे से मिल नहीं रही थी, मामले का पैच ज्यादा ही जटिल दारोगा को लग रहा था। गांव से निकलते समय एक चुप्पी थी, साथ में चल रहे जमादार ने एक बार कुरेदा भी, सर जी क्या लगता है, मैं कहूँ ना सर जी, तो इस तरह के मामले में अक्सर प्यार सबका चक्कर होने की बात होती है। अब सर जी यह लड़की कोई बच्ची तो थी नहीं, 9वीं में पढ़ती थी। पहली जांच में जो पता चला वह यह कि एक दिन पहले वहां उसे मोहल्ले के एक लड़के के साथ देखा गया था, उस लड़की के साथ ही शायद पढ़ता था। रात में जब वह उस लड़के के घर से लौट रही थी तो मोहल्ले के कुछ लड़कों ने हल्ला मचाकर उसका पीछा भी किया था, वह भागकर किसी तरह अपने घर पहुंची थी और दूसरे दिन यह हादसा हो गया था। जांच की सुई जाकर कहीं न कहीं उस लड़के के पास टिक जाती थी। दारोगा ने कहा, आईटी सेल वालों को खबर कर दी गई है, कुसुम के मोबाइल कॉल के डिटेल भी निकाले जा रहे हैं। यह तो सच है कि उस लड़के के पास कई राज निकल सकते हैं। क्या नाम बताया था? रोहित। हाँ, तो कल उसका भी पता लगा लेंगे। शहर के ताजा ताजा बसे मोहल्ले में कुसुम की बुआ का घर था। उसी घर में कुसुम की लाश झूल रही थी छत की कड़ी से, 9वीं में पढ़ने वाली कुसुम की। शायद उस वक्त घर में कोई नहीं था। क्या उम्र रही होगी कुसुम की? बमुश्किल 15-16 वर्ष। कुसुम पढ़ाई में अव्वल थी, किसी से काफी जल्दी घुल मिल जाती थी, उसकी आंखों में सपने थे, वैसे ही सपने जो युवाओं के होते हैं, आगे बढ़ने के, हर ऊंचाई को छू लेने के। फिर उसकी मौत की क्या वजह हो सकती है? उसने आत्महत्या कर ली, या फिर सब कुछ आत्महत्या की तरह दिखाया जा रहा है? शहर में यह चर्चा का विषय है। मनोवैज्ञानिक किशोरों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति से चिंतित हैं, लेकिन कुसुम की मौत की सटीक वजह किसी के पास नहीं है। कुसुम के साथ हर कोई अपने एंगल से वजह खोज रहा है। कोई कह रहा है मुफलिसी वजह हो सकती है, कोई कह रहा है माँ बाप दूर, तो शायद बुआ के घर में कुसुम की बात समझने वाला कोई नहीं था। खुद के सवालों से परेशान थी वह,
कोई पूरे मामले को महिला सशक्तिकरण पर जोर देने की जरूरत से जोड़ रहा था। तहकीकात जारी थी। इस पूरे मामले के बाद रोहित गायब था, शायद पूछताछ के डर से, शायद पुलिस या पेंच के डर से। दो दिन से रोहित के यहाँ पुलिस दबिश दे रही थी। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी, गला दबने से मौत की पुष्टि हो गई थी। कुसुम के माँ पिता भी दिल्ली से आ गए थे, उनका बयान पुलिस ने दर्ज कर लिया था। कुसुम के पिता रामलाल का बयान था कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, किसी पर हत्या की आशंका भी नहीं जताई गई थी। हाँ, कॉल डिटेल में अंतिम बार कुसुम के रोहित से बात करने के प्रमाण मिले थे। मोहल्ले के लोग भी तरह तरह की बातें कर रहे थे। तो कुल मिलाकर सारी बात रोहित के पास जाकर अटक जाती थी, और रोहित भी 15-16 वर्ष का किशोर था, तो इस तरह की परिस्थिति देखकर गायब था। दारोगा पुराने ग्राहक थे, जानते थे इस तरह के मामलों को कैसे सुलझाना है। तो इस बार रोहित के पिता से बड़ी मुलायमियत के साथ बात की, कहा, देखिए हमें पता है इस पूरे मामले में आपका बेटा कहीं नहीं है, लेकिन नियम कानून की कुछ औपचारिकताएं होती हैं, पुलिस को पूरी करनी पड़ती हैं ये औपचारिकताएं। बस एक बार आप रोहित से बात करवा दीजिए, मेरी पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, भला इस मामले में कहाँ घसीटूंगा उसे, मेरा भी बेटा उसकी उम्र का है, हम लोग भी इंसान हैं, दर्द समझते हैं आपका, मेरा वादा रहा इस पूरे मामले में वह कहीं नहीं फंसेगा। अरे आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, इस परिस्थितिजन्य साक्ष्य को भी देख लें, गला दबकर मौत हुई है, पूरा मामला यूडी केस का बनता है, लड़की ने आत्महत्या की है। लेकिन क्या है कि एक बार पुख्ता आधार पर यूडी केस की फाइल बना दिया तो फिर कभी यह केस खुलेगा नहीं, इसमें रोहित का ही भला है, बस एक बार मेरी बात करवा दीजिए। इस लड़की के मरने से एक दिन पहले हुआ क्या था यह जानना जरूरी है, आप कहेंगे तो इसे ऑफ रिकॉर्ड भी रख सकते हैं, कहकर दारोगा ने रोहित के पिता का हाथ दबाया। दारोगा रात भर सो नहीं पाया था, दरअसल उस डायरी नुमा कापी ने उसकी नींद उड़ा दी थी। डायरी के एक एक पन्ने हथौड़ी की तरह उसके दिमाग पर चोट कर रहे थे। 15 साल की लड़की क्या सचमुच ऐसा लिख सकती थी, एक एक शब्द में जैसे ज्वालामुखी का लावा था। कहीं रोहित ने कुसुम की कॉपी कहकर कोई दूसरी कॉपी तो उसको नहीं पकड़ा दी थी, नहीं नहीं, हैंडराइटिंग तो बिल्कुल मिल रही है, उसने कुसुम की कई और कॉपियां भी जब्त की है। कॉपी में अलग अलग डेट में कुसुम ने मनोभाव लिखे थे। शब्दों में बड़ी ताकत होती है, शब्दों से निकली ध्वनियां मनोवृत्ति और मानसिकता पर तत्काल असर करती हैं। दिल दिमाग में एक तस्वीर सी उभरने लगती है, लेकिन हाल फिलहाल हो रहा है एक व्यक्तिगत अनुभव, लगता है जैसे कई शब्दों ने अपने अर्थ खो दिए हैं, या फिर शब्द दूसरे अर्थ देने लगे हैं, कई शब्द जैसे घिस गए हैं, बिल्कुल कमजोर से हो गए शब्द, कई नए शब्द गढ़े जा रहे हैं, कई शब्द बेहद सशक्त हो गए हैं, लेकिन कुछ शब्द तो बिल्कुल मुर्दा हो गए हैं, निष्प्राण। कुछ शब्दों व वाक्यों के प्रचलित अर्थों से बिल्कुल अलग सी तस्वीर जेहन में उभरने लगती है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको भी मेरे जैसा अनुभव हो रहा होगा, यह विशुद्ध रूप से मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, शायद कोई मनोविकार भी हो सकता है, हालांकि कई शब्दों के प्रयोग से मैं परहेज करने लगी हूँ। कुसुम की दूसरे दिन की डायरी का एक पन्ना, डर लगता है, बेहद डर लगता है, अब तसल्ली नहीं दे पाती हूँ मन की, अब तसल्ली नहीं दे पाती हूँ मन को, किस चेहरे के पीछे कौन सा खूंखार चेहरा छिपा है कौन बता सकता है। मैं जुमलों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बेटियां असुरक्षित हैं, जहां तक नजर जाती है कांप जाती हूँ, किस पर यकीन करें, पुलिस, समाज, पड़ोसी, परिवार, कहाँ महफूज हैं बेटियां, कई घटनाओं का तो पता ही नहीं चल पाता, काले कृत्य पर कई स्याह परतें जमी होती हैं, बेटियों की सिसकियां तक कहाँ बाहर आ पाती हैं। भ्रूण हत्या से शुरू होने वाला यह सिलसिला अपराध का नया अध्याय लिखने में लगा है, कई घटनाएं हैं, सभी का जिक्र नहीं कर सकती, शायद कभी कह पाऊं, एक बाल मन पर लगा जख्म कभी भर सकता है क्या, यह एक खौफनाक स्थिति है, ठोस, बेहद ठोस, कुछ तो करना ही होगा। अगले दिन की डायरी, जीवन के नफा नुकसान की कोई खाता बही मैंने कभी तैयार नहीं की, बस जीती चली गई, लेकिन जीवन जब जंग हो जाए तो क्या होता है, बस ऐसे ही उलू जुलूल सवाल मन में आते रहते हैं, मन में उठने वाले विचार भी अब कभी कभी ही लिखती हूँ। समय कितना बदल गया, समय किसी को नहीं मिलता, मुलाकातें नहीं होती, बैठक होती है बड़े बड़े मुद्दों को लेकर, मामूली चीज़ों के लिए समय का लोप हो गया है। इस समय मैं अपने मन की मामूली सी बात किससे कह सकती हूँ, कोई नहीं है सुनने वाला। अभी संस्कृत की किताब में एक श्लोक पढ़ा था, वीर भग्या वसुंधरा, कौन है वीर मैं जानना चाहती हूँ, मैं भी वीर बनना चाहती हूँ, मैं आश्वस्त होना चाहती हूँ कि यह वसुंधरा मेरे लिए भी है, मैं जीना चाहती हूँ, हर खूबसूरत लम्हों को जीना चाहती हूँ। रोहित ने दारोगा को बताया उस दिन क्या हुआ था। दरअसल रोहित और कुसुम मिलकर साइंस के छोटे से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। घर के पास उगी छोटी छोटी झाड़ियों से
छोटे सजावटी टुन्नी बल्ब

0: जलाने का प्रोजेक्ट। उन लोगों ने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था। रोहित ने दारोगा को बताया, उस दिन जैसे ही मेरे घर से वह निकली कुछ लफंगे पीछे पड़ गए, ये मोहल्ले के ही थे। काफ़ी हो हंगामा मच गया, उसने हेल्प के लिए मुझे पुकारा। किसी तरह से उसके घर तक उसे छोड़ा गया था, लेकिन घर के बाहर लफंगे घंटों हंगामा मचाते रहे, घटिया अश्लील बातें चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, कोई रोकने वाला नहीं था। ऐसी ऐसी बातें जो मैं आपको बता नहीं सकता। यह बर्बरता घंटों चली, दूसरे दिन यह घटना हो गई। रोहित बताते बताते बदहवास हो गया था। दारोगा ने बड़े साहब के पास केस की फाइल फुल डिटेल के साथ रख दी थी। बड़े साहब ने दारोगा को घूरा, फिर दारोगा के चेहरे पर नजर गड़ाकर बेहद सख्त लहजे में कहा, तो यह यूडी केस है, आत्महत्या का? यूडी मतलब अननेचुरल डेथ। दारोगा ने कहा, सर जो साक्ष्य मिले हैं उससे तो यही लगता है कि लड़की ने आत्महत्या कर ली। बड़े साहब ने अपनी दोनों आंखों को बंद कर आंखों के कोनों को हाथों से दबाते हुए कहा, इसे आप आत्महत्या कहते हैं? साक्ष्य, प्रमाण, नियम कानून तो इसलिए ना कि लोग चैन से जी सकें, यूडी केस की फाइल बनाने के लिए नहीं है यह सब। लेकिन आप भी सेफ जोन से क्यों निकलेंगे दरोगा जी? यूडी केस की फाइल बनेगी और सभी सेफ जोन में रहेंगे, वरना हम, आप और इस मामले को जानने वाले सभी लोग जानते हैं कि मर्डर और सुसाइड में क्या फर्क है। यह कहते हुए बड़े साहब ने फाइल पर अपना लंबा सा हस्ताक्षर कर दिया।
1: अभी हम निशी रंजन ठाकुर से पूर्व प्रसारित कहानी तहकीकात सुन रहे थे। श्रोताओं, अब आइए चलते हैं शतदल के आखिरी सोपान यानी काव्य पाठ की तरफ। इसमें आज हम प्रसून कुमार ठाकुर से पूर्व प्रसारित काव्य पाठ सुनेंगे।
2: मेरी पहली रचना, तुम बनो फूल या अंगारा। तुम बनो फूल या अंगारा, जग के कनकन से प्यार करो, यह प्यार सार है जीवन का, इसका ही तो विस्तार करो। तुम बनो फूल या अंगारा, देखो जाकर कानन बन में, उसमें बसंत आता रहता, पुष्पों के सौरभ दूर देश को पवन निरंतर ले जाता। देखो जाकर कानन बन में, उसमें बसंत आता रहता, पुष्पों के सौरभ दूर देश को पवन निरंतर ले जाता। ऐसे ही अपने जीवन में नित नित ऊर्जा संचार करो। तुम बनो फूल या अंगारा, जग के कनकन से प्यार करो। जो बाग भरा फूलों से है उसमें कांटे भी मिलते हैं, कांटों के कारण फूलों का सम्मान कभी तो बढ़ते हैं। जीवन का पथ भी ऐसा ही, जन जन से सद्व्यवहार करो। तुम बनो फूल या अंगारा, जग के कनकन से प्यार करो। यौवन धन पाया है सबने, हित साध जगत में हो अविरल, न भार बने कोई जीवन, न मिले किसी को कभी गरल। यौवन धन पाया है सबने, हित साध जगत में हो अविरल, न भार बने कोई जीवन, न मिले किसी को कभी गरल। यह प्यार ही ऐसा है औषध, इससे सबका उपचार करो। तुम बनो फूल या अंगारा, जग के कनकन से प्यार करो। ऋतुएं भी आती रहती हैं, सुख दुख भी आता जाता है, जो समझ लिया जीवन रस है वह रस का धार बहाता है। ऋतुएं भी आती रहती हैं, सुख दुख भी आता जाता है, जो समझ लिया जीवन रस है वह रस का धार बहाता है। यह धार बहे हर आंगन में, सबको मिल पाए विचार करो। तुम बनो फूल या अंगारा, जग के कनकन से प्यार करो। और अंतिम, संसार प्यार का है सागर, जीवन ना हो बरसात कभी। संसार प्यार का है सागर, जीवन ना हो बरसात कभी। खुशियां ही खुशियां मिले बटे, सुख बने न नागन रात कभी। खुद का होना अगर इस भव में, तब इसको ही साकार करो। तुम बनो फूल या अंगारा, जग के कनकन से प्यार। मेरी दूसरी रचना, कविता हूँ मैं सुरभि पुष्प के। कि कविता हूँ मैं सुरभि पुष्प के, भूनब में फैलाने दो, विघ्न रहित हर राह सुलभ हो, अविरत इसे बनाने दो। कविता हूँ मैं सुरभि पुष्प के, भूनब में फैलाने दो। लता गुल्म कानन अचला में रहकर गीत सुनाती हूँ, जिसका उरपाहन के जैसा उसको चिर पिघलाती हूँ। यही धर्म है जग में मेरा, अविरल इसे सुनाने दो। कविता हूँ मैं सुरभि पुष्प के, भूनब में फैलाने दो। जहाँ जटिल बाधा मिलती है वहीं गीतमय बन जाती, कोमल हृदय जहाँ मिलता है उसमें ही घर कर जाती। रोक नहीं सकता पर्वत भी, भावभूमि बढ़ जाने दो। कविता हूँ मैं सुरभि पुष्प के, भूनब में फैलाने दो। कविता हूँ नारी युवती हूँ, भार बहन करती हूँ मैं, ओले आंधी या बसंत पतझड़ सहन करती हूँ मैं। कविता हूँ मैं नारी युवती, भार बहन करती हूँ मैं, ओले आंधी या बसंत पतझड़ सहन करती हूँ मैं। रस है जीवन, रस है मुझ में, रस की धार बहाने दो। कविता हूँ मैं सुरभि पुष्प के, भूनब में फैलाने

0: ने दो कि सागर के लहरों पर चढ़कर नवनव गीत सुनाती हूँ, स्वर्णिम जीवन हो जन मन का यह मधु प्रीत लुटाती हूँ। सागर के लहरों पर चढ़कर नवनव गीत सुनाती हूँ, स्वर्णिम जीवन हो जन मन का यह मधु प्रीत लुटाती हूँ। भटक गए जो अपने पथ से उसको राह दिखाने दो, कविता हूँ मैं सुरभि पुष्प के भूनभ में फैलाने दो। कि सुनो जगत के स्वजन धरा के हित श्रृंगार कहाती हूँ, सुनो जगत के स्वजन धरा के हित श्रृंगार कहाती हूँ। अमन चैन हो जहाँ नहीं वहाँ खुद अंगार लगाती हूँ। एक हूँ मैं पर रूप अनेकों, एक हूँ मैं पर रूप अनेकों, यही सत्य दिखलाने दो। कविता हूँ मैं सुरभि पुष्प के भूनभ में फैलाने दो। कि अंबर में हूँ चांद सूर्य, धरती पर मैं हूँ दीप शिखा, तुम भी हो मेरे ही जैसा तब मैं दीपक त्वरित दिखा। अंबर में हूँ चांद सूर्य, धरती पर मैं हूँ दीप शिखा, तुम भी हो मेरे ही जैसा तम के दीपक त्वरित दिखा। वह घन भी हूँ अगजग में चिर सोम सुधा बरसाने दो, कविता हूँ मैं सुरभि पुष्प के भूनभ में फैलाने दो। और अंतिम कि मैं हूँ वह मकरंद की जिस पर काव्य हृदय भी मर मिटते, छंद युक्त या छंद मुग्ध कवि चित्त लगा कर रहें गढ़ते। मैं हूँ वह मकरंद की जिस पर काव्य हृदय भी मर मिटते, छंद युक्त या छंद मुग्ध कवि चित्त लगा कर रहें गढ़ते। अंतर मन या बाह्य जगत में मद मुझको मुरझाने दो, कविता हूँ मैं सुरभि पुष्प के भूनभ में फैलाने दो। मेरी तीसरी रचना जाग जाग अब तो जाग। कि जाग जाग अब तो जाग, जग में है करुण राग, चारों ओर अंधकार फैल गया बेसुमार, जाग जाग अब तो जाग। कि जीवन है जंगल है धरती पर दंगल है, अब तो वह सोम नहीं रक्षित है व्योम नहीं। जीवन है जंगल है धरती पर दंगल है, अब तो वह सोम नहीं रक्षित है व्योम नहीं। धरती का कनकन अब उगल रहा गरल आग, जाग जाग अब तो जाग। जग में है करुण राग, चारों ओर अंधकार फैल गया बेसुमार, जाग जाग अब तो जाग। कि जन जन जंजाल हुआ हर घर बेहाल हुआ, पल भर का डेरा है निश्चर का फेरा है, डसने को हर पथ पर बैठा विकराल नाग, जाग जाग अब तो जाग। जग में है करुण राग। कि देखो नर नारी को फूलों की क्यारी को, कंस और रावण है कुछ न मन भावन है। देखो नर नारी को फूलों की क्यारी को, कंस और रावण है कुछ न मन भावन है। सूरज की रश्मि में लूटा जिसने सुहाग, जाग जाग अब तो जाग। जग में है करुण राग, चारों ओर अंधकार फैल गया बेसुमार, जाग जाग अब तो जाग। छोड़ो इन बातों को घनी भूत रातों को, छोड़ो इन बातों को घनी भूत रातों को, पथ को बनाना है जग को सजाना है, ऐसा हो चेतन मन महके का पुष्प बाग, जाग जाग अब तो जाग। जग में है करुण राग। और अंतिम पंक्तियां कि धरती है पलने दो रोको मत बढ़ने दो, तम को अब जाने दो दिनकर को आने दो। धरती है पलने दो रोको मत बढ़ने दो, तम को अब जाने दो दिनकर को आने दो। विपदा है विप्लव है कानन में खगरव है, विपदा है विप्लव है कानन में खगरव है, दीपक जलाना है अस्मत बचाना है। कृष्ण की मुरली से निकले फिर प्रेम राग, कृष्ण की मुरली से निकले फिर प्रेम राग, जाग जाग अब तो जाग। जग में है करुण राग, चारों ओर अंधकार फैल गया बेसुमार, जाग जाग अब तो जाग।
1: अभी हम प्रसून कुमार ठाकुर से पूर्व प्रसारित काव्य पाठ सुन रहे थे। श्रोताओं, साहित्य अतीत वर्तमान और भविष्य की झलक दिखाता है। साहित्य अतीत की एक खिड़की खोलता है जिससे श्रोता ये देख पाते हैं कि वर्तमान की नींव कैसे टिकी है। साहित्य केवल शब्दों और कहानियों का संग्रह नहीं है, अपितु ये मानव जीवन, समाज और संस्कृति का जीवंत दर्पण है। इसी दर्पण में झांकने का प्रयास था ये आज का शतदल। आज के शतदल के प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन, स्वर सहयोग था सुप्रभात राय का। अपने सुझावों एवं प्रतिक्रियाओं से हमें जरूर अवगत कराएं। इसके लिए हमारा पता है कार्यक्रम आपके पत्र द्वारा केन निदेशक आकाशवाणी भागलपुर। हमारा पिन कोड है 812001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है phairbhagalpur@gmail.com। तो इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे रेडियो साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शतदल। स्वर सहयोग सुप्रभात राय का था।

एवं प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाते हैं केदारनाथ मिश्र का ख्याल गायन राग पुरिया में। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं ललन प्रसाद मिश्र एवं हारमोनियम पर हैं दूधनाथ मिश्र।

श्रोताओं, हमें खेद है कि किसी कारणवश हम आपको केदारनाथ मिश्र का ख्याल गायन नहीं सुनवा पा रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं विजी जोग का वायलिन वादन राग जन सम्मोहिनी में।

आप सुन रहे थे वीजी जोग का वायलिन वादन राग जन सम्मोहिनी में। शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 10:30 हो चुके हैं। हाजिर हैं हम लेकर आप श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों एवं ईमेल्स पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी।

सुनने वालों की खिदमत में विशाल आनंद का प्यार भरा नमस्कार। ये पहला गाना हमने लिया है फिल्म बेटा से। अनुराधा पौडवाल एवं उदित नारायण ने इसे गाया है। गीतकार समीर, संगीतकार हैं आनंद मिलिंद। और इस गीत को सुनवाने के लिए हमें ईमेल से अपने फरमाइश लिख भेजी है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया ने। इसी गीत को सुनवाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य से ये ईमेल हमें लिख भेजा है रामचंद मखीजा, काफिर भाई, सविता मखीजा, स्वाति मखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमारी, डोडवानी एवं पूरा मखीजा कुटुंब ने। मेरठ कैंट दिग्दर्शन से ये ईमेल आया है। लिखने वाले हैं कविता गौड़, ममता मार्कंडे, संजय मार्कंडे और बेबी किट्टू। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से ये ईमेल आया है। लिखने वाले हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जागेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। आप सबों की मिलीजुली फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म बेटा का ये गीत।

कंचन मनहर उदास एवं आनंद का गाया फिल्म कुर्बानी का एक गीत आपको सुनवाते हैं। गीतकार इंदिवर, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। और इस गीत को सुनवाने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है आप श्रोताओं ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। जबलपुर मध्य प्रदेश से ये पत्र आया है, लिखने वाले हैं मुकेश कुमार। मुंगेर से ये पत्र आया है, लिखने वाले हैं कुमार रामदेव पटेल। जेल रोड जालंधर से इस गीत को सुनवाने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है रोशन जहां, मन्नत जहां और इसरत जहां ने। बक्सर बिहार से ये पत्र है, लिखने वाले हैं सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरीत महेश साहू। डुमराव बिहार से ये पत्र है, लिखने वाले हैं बबलू अंसारी, सोनम अबीदा, दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से ये पत्र है, लिखने वाले हैं श्रद्धानंद आर्य और अभयानंद आर्य। और ये ईमेल आया है भागलपुर से, लिखने वाली हैं रिधिमा यदुवंशी। आप सबों की मिलीजुली फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

लता मंगेशकर को अब आइए सुनते हैं फिल्म रेशमा और शेरा में। गीतकार हैं बाल कवि बैरागी, संगीतकार जयदेव, और इस गीत को सुनवाने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है आप श्रोताओं ने। लुत्फ अली लेन, मोहल्ला काजवली चक से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं फौजैल नसीम, सोमेरा शहरीन, फैसल नसीम, सादान सिमरा, सिदरा, जोया और अनम। नाजिर मोमिन लेन, इस्लामपुर चंपा नगर से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं शब्बीर अहमद, खालिद अंसारी, जाहिद अनवर और तारिक अनवर। सुभानपुर कटोरिया बांका से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं शहादत अली, सालिक शहादत, सिदरा शहादत और शाहिना परवीन। भागलपुर भीखनपुर भट्टा रोड विशहरी स्थान से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं योगेंद्र प्रसाद राय, विभा राय, विप्लव, वैभव, यामिनी और यशा। मुंगेर से ये पत्र है। लिखने वाले हैं शिवम कुमार और इनके परिवार के सभी लोग। अली बख्श लेन, मोहल्ला नाथ नगर से इस गीत को लिखवाने के सुनवाने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है हिबा फौजैल, दानियल उमरा, मायरा उमर, उमर फारूक, मोहम्मद फौजैल, जुबैर अंसारी। ग्राम झिकोलिया जिला बांका से ये पत्र है। लिखने वाले हैं रमेश शाह और उनके परिवार के सभी सदस्य। ग्राम पोस्ट गोराडी से इस गीत को सुनवाने के लिए हमें अपनी फरमाइश लिख भेजी है डॉक्टर हेमंत कुमार, जीवेश नंदन और नीलेंश नंदन ने। लालूचक से ये पत्र है। लिखने वाले हैं आदित्य भार्गव और उनके परिवार के सभी लोग और मोहल्ला ततारपुर भागलपुर से इस गीत के लिए हमें पत्र लिख भेजा है अरशान अहमद, जरिस वाशी अहमद, साजिल शादाब अहमद, जयप्रकाश, आहिशा और इनके परिवार के सभी लोग। आप सबों की मिलीजुली फरमाइश पर अब आइए सुनते हैं ये गीत।

अंत में सुनते हैं लता मंगेशकर एवं शब्बीर कुमार का गाया फिल्म प्यार झुकता नहीं से। गीतकार SH बिहारी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और इस गीत को सुनवाने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है आप श्रोताओं ने। नीलकोठी मोहल्ला साहेबगंज भागलपुर से ये पत्र आए। लिखने वाले हैं छोटू, सृष्टि, मोहित राज, सोनम, डॉक्टर सुभट कुमार मंडल। बड़ी खंजरपुर भागलपुर से ये पत्र आए। लिखने वाले हैं भाई गुलफराज आलम, बेगम शमा आरा, दोस्त जमालुद्दीन नेपाली और इनके परिवार के सभी लोग। धुरैया गंगदोरी से ये पत्र है। लिखने वाले हैं रामविलास, रविकांत, नीरज, अमर, मारुति, सावित्री देवी, कावित्री, तनुजा और सानदेव हरि। मुंदीचक भागलपुर से ये पत्र है। लिखने वाले हैं विशाल कुमार, ऋतिक रोशन, डोलू और मोलू। बैजानी चौबे टोला से ये पत्र है। लिखने वाले हैं वर्षा, वंदना, कन्हैया, मेघा, शालू, सानू, निहाल, साक्षी, कुकू, चीकू, पवन, कल्लू, मल्लू, सोनू, नीतू, मीतू, ईशु, अन्नू और आया। बूढ़ानाथ रोड भागलपुर से ये पत्र है। लिखने वाले हैं गोपाल प्रसाद शाह और इनके परिवार के सभी सदस्य। ग्राम बात से ये पत्र है। लिखने वाले हैं राजू, शुभम, हिमांशु, छोटी बाबू, कंचन।

डब्लू बब्लू फुच्चन और मनीषी, लाल माता सुदामा नगर रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से ये ईमेल आया है। लिखने वाले हैं हर्षिता रामेश्वर कान्हा कपिल मीनाक्षी सत्यनारायण मनोहर भाई प्रभुलाल बागरी। आप सबों की मिलीजुली फरमाइश पर आइए सुने ये गीत।

और श्रोताओं, अगर आप भी अपने पसंद के गीत इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं तो हमें लिख भेजें इस पते पर, कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी आदमपुर भागलपुर। हमारा ईमेल आईडी है phairbhagalpur@gmail.com। तो आज के कार्यक्रम से अब दीजिए हमें विदा, नमस्कार।

0: ये था फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में, फिर 11:05 पर अंग्रेजी में। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
2: India's development assistance.
1: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है।

0: अदालत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।